103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की पांचवी तिथि, तदनुसार 25 मई सन 2026। इस समय सुबह के 5:58:30 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है। हमारी सभा में आप सभी सुनने वालों का हार्दिक अभिनंदन।

0: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने को है, थोड़ी देर में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहतनाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में 66 विशिष्ट लोगों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अलंकरण हैं। शेष पद्म पुरस्कार बाद में समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर है। कल नई दिल्ली में अमेरिका से 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में भावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमरीका रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
2: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है।

0: नई दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक समागम में गृहमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता से किसी भी जनजातीय अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजातीय कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है।
1: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं आज इस मंच से इस जनजाति महाकुंभ को कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फलता विधानसभा पुनर्चुनाव में रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज करने पर देबांशु पांडा को बधाई दी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन प्रति प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा है कि छात्रों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये फैसला किया गया है। आज उत्तर पुस्तिका की आखिरी स्कैन प्रति उपलब्ध करा दिए जाने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित हो जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस महीने की 28 तारीख को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की तिथि आगे बढ़ा दी है। एनटीए ने कहा है कि सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल अजहा बकरीद की तिथि में बदलाव को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। आईपीएल क्रिकेट में अंतिम मैच में कोलकाता में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ₹103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 6:05 हुए हैं। आइए सुने चिंतन।

चिंतन और चिंता इन दोनों में बहुत फर्क है। जहां चिंता व्यक्ति को कमजोर करती है, वही चिंतन से व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है। चिंतन की शक्ति से हमारा चित्त शांत और संयमित बनता है। जैसे जैसे मनुष्य अपना जीवन संयम पूर्वक व्यतीत करना शुरू करता है, वैसे वैसे उसके भीतर ज्ञान रूपी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है और मनुष्य मौन की ओर लगातार बढ़ने लगता है। जब हम लगातार चिंतन करते रहते हैं तो हमारा मन किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, बल्कि हम शांत मन से उसे स्वीकार करना शुरू कर लेते हैं।

श्रुति चिंतन के बाद आइए आरंभ करते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आज की वंदना कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं प्रथम पूजनीय श्री गणपति जी की इस वंदना के साथ। सभी मांगलिक कार्य को पूर्ण करने वाले गजानन गणपति जी सदा अपनी कृपा हम पर बनाए रखें।

त्रिशूलधारी बागंभर ओढ़े हाथों में डमरू वाले भोलेनाथ शिवशंकर जिनके वामांग में माँ गौरा विराजमान है, वो भोलेनाथ तीनों लोकों का कल्याण करने वाले हैं। वो सदा ही अपने भक्तों पर भक्तिभाव से प्रसन्न होकर उनका कल्याण करते हैं।

भक्त और भगवान का आपस में अटूट बंधन है। जिस प्रकार भक्त अपने भक्ति भाव से अपने ईश्वर की आराधना में अपना जीवन समर्पित करता है, ठीक उसी प्रकार भगवान भी अपने प्रिय भक्त की करुण पुकार पर उसके सभी कष्टों को दूर कर देते हैं।

0: राम नाम की महिमा अपरंपार है। राम नाम के सहारे ही तो अनेकों प्राणियों ने इस संसार रूपी भवसागर से खुद को पार उतारने का मार्ग तलाश किया है।
1: राम नाम,
0: तो आइए हम सब मिलकर भी राम नाम की महिमा का गुणगान करें।

श्रोता, इसी भक्ति रचना के साथ आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:40 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे रामचरितमानस से एक और भक्तिमय प्रस्तुति मानस गान।

राजा जनक के यज्ञ में धनुष भंग हो चुका है। परशुराम वहां का दृश्य देख क्रोधित हैं। उनके वचनानुसार जिसने शिव का यह धनुष तोड़ा है वो सहस्रबाहु के समान उनका दुश्मन है। परशुराम निरे मुनि और बाल ब्रह्मचारी ही नहीं अत्यंत क्रोधी हैं और विश्व भर में क्षत्रिय कुलनाशक के रूप में विख्यात हैं। अपने भुजबल से उन्होंने कई बार क्षत्रिय वंश का नाश करके पृथ्वी ब्राह्मणों को दे डाली है। क्रोध की चरम सीमा स्वरूप उन्होंने लक्ष्मण को अपना विश्व विख्यात फरसा दिखाया, किंतु लक्ष्मण कौतुकवश खेल ही खेल में मुनि के कुपित वचन सुनते जा रहे हैं। मुनि को भृगुवंशी समझ और यज्ञोपवीत देखकर सब कुछ सहते जा रहे हैं।

अभी आप सुन रहे थे मानस गान 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:50 होने को है। आइए अब आपको हम जानकारी दे देते हैं हमारे केंद्र से हमारी आज की प्रसारण सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा व उनके प्रसारण समय की।

7:10 पर आप सुनेंगे सुप्रभात कार्यक्रम और 7:40 पर आनंद लीजिएगा हिमाचली लोकगीतों के कार्यक्रम शुभ ब्याह का। देश और दुनिया का ताजा हाल समाचारों से आप जान सकते हैं। सुबह 8:00 समाचार प्रभात में 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज, दिन में 1:00, शाम 7:00, रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, रात 9:00 News@9 और सभा के अंत में रात्रि 11:00 हिंदी और अंग्रेजी समाचारों से। ये समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। प्रादेशिक समाचार हमारे केंद्र से सुने जा सकते हैं सुबह 9:20 पर, सुबह 11:00, दिन में 3:00, शाम 6:00 और 7:45 पर। ये प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किए जाएंगे। सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत और 8:45 पर हम आपको सुनवाएंगे कानून की बात कार्यक्रम। सुबह 9:00 सुनेगा गीतांजलि कार्यक्रम और 10:00 हम आपको सुनाएंगे फिल्म संगीत। 10:30 पर आप आनंद ले सकते हैं पहाड़ी लोक गीतों का और 11:05 पर हम आज आपको सुनाएंगे पंजाबी गीत। पर सुनिएगा एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग और दिन में 12:00 होगा सैनिकों के लिए कार्यक्रम। दिन में 12:30 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे घर परिवार कार्यक्रम। दोपहर 1:10 से लेकर शाम 5:00 तक सुनिएगा विविध भारती के कार्यक्रमों का प्रसारण। शाम 5:00

7:10 पर। विभिन्न गीत संगीत का कार्यक्रम सबरस आप सुनेंगे रात्रि 8 बजे और 8:30 पर हम आपको सुनवाएंगे कुछ देशभक्ति गीत। रात्रि 9:15 पर होगा एक ही कलाकार कार्यक्रम जिसमें बात होगी संगीतकार M.F. किरवानी की। 9:30 पर सुनिएगा हिमाचली लोक संगीत का कार्यक्रम। रात्रि 10 बजे सुनना ना भूलिएगा आपकी पसंद गीत हमारे कार्यक्रम।

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने को है। थोड़ी देर में संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। 7 आप सुनेंगे हिंदी समाचार और 7:05 पर आप सुन पाएंगे अंग्रेजी में समाचार। कीजिए बस कुछ पलों का इंतजार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अलंकरण हैं। शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजाति समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने का विशेष प्रबंध किया है। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों की पूरी तरह संरक्षण करना है। नई दिल्ली में जनजाति सांस्कृतिक समागम में प्रधान गृह मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है।
1: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं आज इस मंच से इस जनजाति महाकुंभ को कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फालता विधानसभा सीट 1,00,000 से अधिक वोट से जीत ली है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों से हराया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फालता में मतदान में धांधली के बाद निर्वाचन आयोग ने इस सीट पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालता विधानसभा चुनाव रिकॉर्ड अंतर से जीतने पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार देवांशु पांडा को बधाई दी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी है। NTA ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण ये निर्णय लिया गया। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना शीघ्र ही दी जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये निर्णय लिया गया। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख शीघ्र घोषित की जाएगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौतों को शीघ्र अंतिम रूप दिया जाएगा।
2: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर है। नई दिल्ली में कल अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर को फोन किया। श्री ट्रंप ने खुद को प्रधानमंत्री मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक बताया और कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर 100% भरोसा कर सकता है। IPL क्रिकेट में अंतिम मैच में कोलकाता में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। President Draupadi Murmu will present 66 Padma Awards at the first Civil Investiture Ceremony for 2026 to be held at Rashtrapati Bhavan today. During the ceremony to be attended by Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi and Union Home Minister Amit Shah, among others, the President will confer 2 Padma Bhushan, 6 Padma Bhushan and 58 Padma Shri Awards. For the year 2026, the President has approved conferment of 131 Padma Awards, including 5 Padma Bhushan, 13 Padma Bhushan and 113 Padma Shri Awards. The remaining Padma awardees will be conferred in the second round of the ceremony to be held later. Union Home Minister Amit Shah has said that the government has made special provisions to exclude all tribal communities from the ambit of the Uniform Civil Code, UCC, ensuring that their rights are fully protected. Addressing the Janjatiya Sanskritik Samagam in New Delhi, Mr. Shah said the UCC will not infringe upon any tribal rights. External Affairs Mr. Dr. S. Jaishankar has said that India and the United States have a strong interest in combating terrorism in all its forms and manifestations. Addressing the gathering at the 250th Independence Day celebrations of the United States in New Delhi yesterday, Dr. Jaishankar said that India and US must always be clear about zero tolerance for terrorism, and that is why the counter-terrorism cooperation is so important. He said that both nations have a common interest in de-risking the global economy and providing the world with more choices.
4: We must always be clear about zero tolerance for terrorism. And that is why our counter-terrorism cooperation is so important. The people-to-people connect has also been a very special characteristic of our relationship. It has helped build political understanding between our two nations and remains a living bridge.
3: Mentioning the visit of U.S. Secretary of State and NSA Marco Rubio, Dr. Jaishankar said, this visit highlights the significance of India-U.S. ties in contemporary times. He added that a year ago, Prime Minister Narendra Modi and U.S. President Donald Trump set out a pathway for the further development of both nations' enduring partnership. U.S. President Donald Trump dialed Secretary of State Marco Rubio during an event celebrating America's 250 years of independence at the Bharat Mandapam in New Delhi yesterday. U.S. President described Prime Minister Narendra Modi as a friend and stated that ties between the two nations had never been so closer. He even called himself a big fan of PM Modi. Mr. Trump said India can count on him 100%.
5: I just want to say hello to everybody. I love the Prime Minister. Modi is great. He's my friend. I just want to say a very big thank you to everybody that's born here and has been there. And I just want to say you're great. And we've never been closer to India.
3: U.S. President's remarks came amid Mr. Rubio's four-day visit to India. Mr. Rubio met Prime Minister Modi on Saturday, followed by his meetings with External Affairs Minister S. Jaishankar and National Security Advisor Ajit Doval yesterday. The National Testing Agency, NTA, has postponed the Common University Entrance Test undergraduate 2026 examinations, scheduled for the 28th of this month. NTA said that this decision was taken in view of the change in the date of the Eid ul-Zuha or Bakr Eid holiday as per the government notification. The agency informed that revised exam dates will be announced soon. The Central Board of Secondary Education, CBSE, has extended the last date for obtaining scanned photocopies of answer books for Class 12 examinations by one more day until today. CBSE said that the decision was taken to provide adequate time to students for submitting requests. In IPL cricket, Delhi Capitals defeated Kolkata Knight Riders by 40 runs at the Eden Gardens in Kolkata last night. Delhi Capitals set a target of 204 runs for Kolkata Knight Riders, KKR. In reply, KKR scored only 163 runs in 18.4 overs. Putting to bat, Delhi Capitals posted 203 runs for the loss of 5 wickets in the stipulated 20 overs. Early in the day, in another fixture, Rajasthan Royals defeated host Mumbai Indians by 30 runs at the Wankhede Stadium. And that is the end of this news bulletin.
6: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:10 हुए हैं। अब आप सुनेंगे सुप्रभात कार्यक्रम।

गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल श्रोताओं। ट्यून इन है आप इस वक्त 103.4 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी धर्मशाला पर, जहां हम हर रोज की तरह लेकर आ गए हैं जानकारी और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम सुप्रभात। तो चलिए आज की इस सुहानी सी खूबसूरत सुबह को और भी बेहतरीन बनाया जाए और जल्दी से आगाज करते हैं आज के सुप्रभात कार्यक्रम का इस सुविचार से। ये जिंदगी हंसी है, इसे प्यार करो। अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आप सभी को। रब पर रखो भरोसा और इस पर एतबार रखो। जी हाँ श्रोताओं, ये जीवन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और हमारी छोटी छोटी सी ख्वाहिशें, छोटी छोटी सी खुशियां इसे और भी सुंदर बना देती है। तो चलिए आज की सुबह को बेहतरीन बनाते हैं इस प्यारे से म्यूजिकल ट्रैक से।

जी हाँ श्रोताओं, ये जो लाइफ है ना, वो हर पल छोटी छोटी खुशियों से ही बनती है और हमें दिल से तरोताज़ा महसूस करवाती है, और इसीलिए हमें अपनी लाइफ को फुल एंजॉय करना चाहिए। वेल, प्रोग्राम में अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे आज विशेष की। जी हाँ लिसनर्स, हर दिन की कुछ खास कहानी रहती है, कुछ खास बातें रहती है जो इस दिन को और भी अधिक विशेष बना देती है। तो चलिए डालते हैं नजर ऐसी ही कुछ घटनाओं पर जो आज के दिन घटित हुई। 25 मई 1961 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने अमेरिकी अंतरिक्ष अभियान की शुरुआत करते हुए 1970 तक इंसान को चांद पर भेजने का ऐतिहासिक लक्ष्य घोषित किया। वही साल 1995 में अमेरिकी वैज्ञानिकों को पहली बार किसी जीवित बैक्टीरिया के पूरे डीएनए को डिकोड करने में सफलता मिली। साल 1998 में परमाणु परीक्षणों के बाद भारत पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध न लगाने के लिए यूरोपीय संघ के सभी 15 देश सहमत हुए थे।

चलिए बात करते हैं आज के दिन जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों की। तो आपको बता दें कि 25 मई 1831 को प्रसिद्ध उर्दू शायर दाग दहलवी का जन्म हुआ। वहीं 1886 में भारत के प्रख्यात वकील, शिक्षाविद और स्वतंत्रता सेनानी रास बिहारी बोस का जन्म भी आज ही के दिन हुआ। आपको बता दें कि महान स्वतंत्रता सेनानी रास बिहारी बोस की जयंती हर साल 25 मई के दिन मनाई जाती है और इनका जन्म पश्चिम बंगाल में वर्धमान जिले में हुआ था। इनके द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में जो है वो बढ़ चढ़ कर भाग लिया गया। आपको बता दें कि 1942 में जापान में इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की और आज़ाद हिंद फौज का गठन भी इनके द्वारा ही किया गया था। जी हाँ, सुप्रभात कार्यक्रम में हम आपको यूं ही तरोताज़ा महसूस करवाते रहेंगे और साथ में प्ले करते रहेंगे आपके लिए कुछ बेहतरीन से म्यूजिकल नंबर। इस सभी के लिए आपको जुड़े रहना होगा हमारे साथ 103.4 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी धर्मशाला पर। सुनते रहिए सुप्रभात कार्यक्रम।

जी हाँ लिसनर्स, ट्यून इन है आप आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र के साथ और इस वक्त आप सुन रहे हैं सुप्रभात कार्यक्रम। और कार्यक्रम में अब बात करने वाले हैं हम गंगा दशहरा उत्सव की। जी हाँ, ये हर वर्ष ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाने वाला एक 10 दिवसीय त्योहार है। ये पर्व माँ गंगा के स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण की स्मृति में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। लिसनर्स, आपको बता दें कि इस दिन पवित्र गंगा नदी में स्नान करने पर आपके शरीर, मन और वाणी के पाप धुल जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा भगीरथी की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा पर जो है वो धरती पर आज ही के दिन अवतरित हुई थी। और ये उत्सव भारत के प्रमुख गंगा तटीय शहरों पर बहुत ही भव्य रूप से आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विश्व फुटबॉल दिवस की। हलसस, हर वर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा 25 मई का दिन वर्ल्ड फुटबॉल डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को पहली बार 2024 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किया गया था, जो कि 1924 में पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट की 100वीं वर्षगांठ का प्रतीक माना गया है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य खेल शांति और सतत विकास को बढ़ावा देना है। वैश्विक स्तर पर फुटबॉल को संचालित करने वाली संस्था फीफा भी 21 मई से लेकर 25 मई तक फुटबॉल सप्ताह मना रही है। वेल, सुप्रभात कार्यक्रम में आप यूं ही जुड़े रहिए और यहां से आपको एंटरटेनमेंट करने के लिए हम बेहतरीन से गीत भी साथ साथ प्ले कर रहे हैं। बने रहिए सुप्रभात कार्यक्रम में, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

103.4 मेगाहर्ट्ज पर आप बने हुए हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र के साथ और इस वक्त सुन रहे हैं सुप्रभात कार्यक्रम। जी हाँ, पहुंच चुके हैं हम उस पड़ाव पर जहां हम आपको सैर करवाते हैं किसी खूबसूरत पर्यटन स्थल की, जहां तक पहुंचना हर किसी के लिए रोमांच से भरा रहता है। तो लिसनर्स, चलते हैं ऐसे ही खूबसूरत स्थल की सैर पर जहां आपको जाकर बहुत ही खुशनुमा सा महसूस होने वाला है। विलाज, हम आपको सैर करवाने वाले हैं हरी भरी वादियों के बीच बसे मनमोहक स्थल करसोग की, जो कि बसा है हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में, जो अपनी सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। ये स्थान सेब के बागों, देवदार के घने जंगलों और महाभारत काल से जुड़े ऐतिहासिक मंदिरों के लिए जाना जाता है। यहाँ का ममलेश्वर महादेव मंदिर महाभारत काल का एक प्राचीन मंदिर है, जिसके बारे में मान्यता है कि इसे पांडवों ने अपने वनवास के समय बनवाया था। वहीं कामाक्षा देवी मंदिर करसोग से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो स्थानीय लोगों की आस्था का एक पूजनीय स्थल है। आपको बता दें कि यहाँ का चिंडी माता मंदिर भी हरी भरी घाटियों के बीच में बसा एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। लिसनर्स, आपको बता दें कि करसोग शिमला से लगभग 108 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ तक आप सड़क मार्ग द्वारा HRTC की बसेस के माध्यम से या फिर टैक्सियों का इस्तेमाल करके भी यहाँ पहुँच सकते हैं। वहीं आपको यहाँ घूमने के लिए सबसे बेहतर समय मार्च से जून के बीच का रहता है, जब बसंत और गर्मियों के दिनों में यहाँ की खूबसूरती अपने चरम पर बनी रहती है। उस वक्त आप यहाँ घूमने के लिए निकल सकते हैं। वहीं आप चाहें तो सितंबर से नवंबर के दौरान यहाँ घूमने के लिए आ सकते हैं, क्योंकि इस दौरान मौसम बहुत ही सुहावना सा रहता है और पूरा क्षेत्र फूलों और सेब के बागों से हरा भरा दिखाई देता है। लिसनर्स, यहाँ पहुंचकर आप यहाँ की सुंदर घाटियाँ, लहलहाते खेत, कई छोटे बड़े झरने हर किसी को अपनी ओर खींच लेते हैं। जो कोई भी इस खूबसूरत जगह की ओर सैर करने के बारे में सोच रहा है, वो यकीन मानिए बार बार यहाँ आने की सोचेगा। तो अगर आप भी खुद को प्रकृति के नजदीक ले जाना चाहते हैं और खुद को बेहतर महसूस करवाना चाहते हैं, तो आप स्थान पर जाकर खुद के लिए सुकून के कुछ पलों को बिता सकते हैं।

जी हाँ, हमारे श्रोता जो है वो हसीन वादियों की सैर तो कर चुके हैं, अब पर्यावरण के अंतर्गत जल्दी से आपसे बात कर लेते हैं नीलकंठ पक्षी के बारे में। जी हाँ श्रोताओं, ये भारत और दक्षिण पश्चिमी एशिया का एक बेहद ही आकर्षक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण पक्षी है। इसे किसानों का दोस्त भी कहा जाता है क्योंकि ये फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े मकौड़ों को खाता है। इसके बारे में आप बता दें कि इसके पंख और पूंछ चमकीले नीले रंग के होते हैं, इसके शरीर का ऊपरी भाग भूरे रंग का होता है। श्रोताओं आपको बता दें कि इसे हिंदू धर्म में भगवान शिव का रूप माना जाता है और इसे सौभाग्य का प्रतीक भी कहा जाता है। आकाशवाणी धर्मशाला से इस वक्त आप सुन रहे हैं सुप्रभात कार्यक्रम और हमारी श्रोता सो है इस वक्त अपने घर के आंगन में या बालकनी में बैठकर अपनी चाय की चुस्कियों के साथ इस चढ़ते सूरज को देखकर ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं। और इसके साथ ही आपकी एनर्जी को दुगना करने के लिए हम हैं ना आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र पर आपका मनोरंजन करने के लिए।

जी हाँ श्रोताओं, इसी के साथ जो है वो घड़ी की सुइयां हमें इशारा दे रही है कि इस कार्यक्रम को अब यहीं पर संपन्न किया जाए, और कल इस कार्यक्रम को इसी वक्त आप सुनना ना भूलें।

103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:40 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं हिमाचली लोक गीतों का कार्यक्रम शुभ भ्याग।

हिमाचली लोक संस्कृति से रूबरू करवाते लोकगीतों को लेकर आए हैं हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र पर। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे कुसुम धीमान की आवाज में गाए इस लोकगीत के साथ।

इंस्पिरेशन बिल। आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं हिमाचली लोकगीतों का कार्यक्रम शुभ भ्याग। कार्यक्रम का अगला लोकगीत हम आपको सुनवा रहे हैं सीमा भारद्वाज की आवाज में।

शुभ कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम का अगला लोकगीत हम आपको सुनवा रहे हैं ज्वाला प्रसाद शर्मा और अक्षर सिंह परमार की आवाजों में।

0: अभी आप सुन रहे थे देशकान। हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने को है। देश और दुनिया का ताजा हाल समाचारों से जानने के लिए आइए अब आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली स्टूडियो समाचार प्रभात के लिए। और 8:15 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज। कीजिए बस कुछ पलों का इंतजार।
1: में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 28 मई को होने वाली CEUT स्नातक परीक्षा 2026 से स्थगित की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी स्वरूपों से लड़ने के लिए तत्पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत उन पर विश्वास कर सकता है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े प्रशंसक हैं। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 86 अलंकरण आज दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे।
4: इस वर्ष भारत सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं, जिसकी शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी और प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनकी घोषणा की जाती है। ये पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: आकाशवाणी से पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेता के जीवन और कृतित्व की जानकारी दी जाती है। कार्यक्रम सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में कल जनजातीय सांस्कृतिक समागम में कही।
5: नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, UCC की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। UCC से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है।
3: गृह मंत्री ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने संदेश दिया था कि वन भूमि पर जनजातीय समुदाय का स्वामित्व होना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजाति कल्याण के लिए बजट बढ़ाने का काम किया है।
5: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
3: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फालता विधानसभा सीट 1,00,000 से अधिक वोट से जीत ली है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोट से हराया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फालता में मतदान में धांधली के बाद निर्वाचन आयोग ने इस सीट पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालता विधानसभा चुनाव रिकॉर्ड अंतर से जीतने पर देवांशु पांडा को बधाई दी है। पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में ये पिछले 2 सप्ताह में चौथी वृद्धि है। अब दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी है। एनटीए ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण ये निर्णय लिया गया। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना शीघ्र ही दी जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये निर्णय लिया गया। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख शीघ्र घोषित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर हैं। नई दिल्ली में कल अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा।
8: भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमारी कतई बर्दाश्त ना करने की नीति रही है। ऐसा इसलिए कि आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग बहुत जरूरी है। हमारे संबंधों में आपसी सहयोग की बहुत बड़ी भूमिका है। ये हमारी राजनीतिक समझ को बनाने में सेतु का काम करता है।
3: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर को फोन किया। श्री ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक बताते हुए कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर शत प्रतिशत भरोसा कर सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को ईरान के

0: साथ किसी समझौते में जल्दबाजी नहीं करने को कहा है। 3 महीने से जारी संघर्ष में अमरीकी प्रशासन ने फिलहाल किसी बड़े समझौते की संभावना से इनकार किया है। श्री ट्रंप ने कहा कि उनके प्रशासन के अंतर्गत ईरान के साथ किसी भी संभावित समझौते में कोई वित्तीय छूट नहीं दी जाएगी।
1: मीडिया के अनुसार विचाराधीन समझौते में 60 दिन के लिए युद्ध विराम बढ़ाना, हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आगे की बातचीत शामिल है। हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर रिपब्लिकन पार्टी में भी मतभेद हैं। कुछ का कहना है कि प्रस्ताव ईरान के प्रति बहुत नरम रुख अपनाता है। सीनेटर ट्रेड क्रूज ने इसे एक बड़ी गलती बताया है, जबकि सीनेट सशस्त्र सेवा समिति के अध्यक्ष रोजर विकर ने कहा कि 60 दिन का युद्ध विराम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की उपलब्धियों को निरर्थक कर देगा। विदेश मामलों की समिति के प्रतिनिधि माइक लॉलर ने कहा कि अमेरिकी प्रशासन ईरान को बातचीत करने के लिए विवश करने में सफल रहा है। अमेरिका और इसराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर व्यापक हमले शुरू किए थे। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: 5 दिन की वार्षिक हज यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत सहित पूरे विश्व से मुस्लिम समुदाय के 10,60,000 से अधिक लोग मक्का से हज यात्रा शुरू करेंगे और सऊदी अरब के मीना में एकत्र होंगे। इस वर्ष हज में भारत से लगभग 1,75,000 जायरीन भाग ले रहे हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के कई भागों के लिए लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, तटवर्ती आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना में भी भीषण गर्मी का अनुमान है। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में गर्मी और उमस रहेगी। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप में गरज के साथ आंधी और वर्षा का अनुमान है। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कोलकाता में कल दिल्ली कैपिटल्स के 204 रन के लक्ष्य के जवाब में कोलकाता की टीम 163 रन पर सिमट गई। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। एक अन्य मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है। पहले क्वालिफायर मुकाबले में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी ढाकाटे परिचर्चा में भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुकेश। भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की बैठक पर हिंदुस्तान की सुर्खी है, हॉर्मुज सबके लिए खुला रहे। विदेश मंत्री जयशंकर और मार्को रूबियो ने बैठक के बाद जताई सहमति। पत्र के अनुसार ईरान बोला, नियंत्रण हमारा ही रहेगा। नवभारत टाइम्स के अनुसार कड़े वीजा नियम पर यूएस ने कहा, भारत टारगेट नहीं। जनसत्ता लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौता को जल्द अंतिम रूप मिलेगा। पंजाब केसरी ने डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से दिया है, 60 दिन के सीज फायर पर लगभग सहमति, हॉर्मुज जल डमरू मध्य खोला जाएगा। ईरान यूरेनियम प्रोग्राम छोड़ने को तैयार, फिजिशियन बोले, हम परमाणु हथियार नहीं चाहते। नवभारत टाइम्स ने सबसे बड़ी राहत शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मुज खोलने के लिए सैद्धांतिक सहमति बनना पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी राहत है। हालांकि ईरान के पास मौजूद एनरिच्ड यूरेनियम समेत कुछ संवेदनशील मुद्दों पर अभी सहमति नहीं बन पाई है, फिर भी संकेत बताते हैं कि दोनों पक्ष इस बार मामले को सुलझाने के लिए गंभीर हैं। लोकसत्ता ने ऐतिहासिक जीत शीर्षक से लिखा है, पश्चिम बंगाल में ममता का आखिरी किला ढहा, फालता में भाजपा की 1,00,000 वोटों से विजय। दैनिक जागरण ने घुसपैठियों की वापसी शीर्षक से लिखा है, ये अच्छा है कि पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार पहले दिन से ही राज्य के हालात सुधारने वाले ठोस फैसले लगातार ले रही है। ऐसे समय की मांग भी है क्योंकि ममता बनर्जी ने 15 साल के शासन में राज्य को पटरी से उतारने का काम किया था। देशबंधु की सुर्खी है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ट्रेन विस्फोट, 30 की मौत, 100 से अधिक घायल, प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन BLA ने ली हमले की जिम्मेदारी। राजस्थान पत्रिका ने विडंबना शीर्षक से लिखा है, फीस से ज्यादा स्कूल आने जाने और किताब यूनिफॉर्म का खर्च, कई राज्यों में स्कूल ट्रांसपोर्ट सबसे बड़ा बोझ, आंकड़े बता रहे हैं कहां है सुधार की जरूरत। दैनिक भास्कर ने CBSE द्वारा री एवल्यूशन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 25 मई करने की खबर मुख्य पृष्ठ पर दी है। पत्र के अनुसार स्कैन कॉपी आने के बाद 2 दिन और मिले।

0: अमर उजाला की सुर्खी है, नौतपा आज से शुरू, कई राज्यों में पारा 46 डिग्री के पार, शुक्रवार तक राहत नहीं, उत्तर प्रदेश में लू और आंधी की दोहरी मार, 46.8 डिग्री के साथ बांदा सबसे गर्म।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 28 मई को होने वाली CUET स्नातक परीक्षा 2026 स्थगित की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और अमरीका आतंकवाद के सभी स्वरूपों से मुकाबले के लिए तत्पर। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े प्रशंसक हैं और भारत उन पर पूरी तरह विश्वास कर सकता है। और IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. President Draupadi Murmu to present Padma Awards at Rashtrapati Bhavan in New Delhi today. Union Home Minister Amit Shah says government has excluded all tribal communities from ambit of Uniform Civil Code. Petrol price hike by 2.61 rupees per litre, while that of diesel by 2.71 rupees per litre. National Testing Agency postpones CUET UG 2026 examinations scheduled for the 28th of this month. External Affairs Minister S. Jayashankar says India and US have strong interest in combating terrorism in all its forms and manifestations. US President Donald Trump says India can trust on him, also says he's a big fan of Prime Minister Modi. And in IPL cricket, Delhi Capitals beat Kolkata Knight Riders by 40 runs at Eden Gardens in Kolkata. President Draupadi Murmu will present the Padma Awards at the first civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Padma Awards, one of the highest civilian awards of the country, are conferred in three categories: Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri. In the first civil investiture ceremony of 2026 today, the President will confer 66 Padma Awards, including 2 Padma Vibhushan, 6 Padma Bhushan and 58 Padma Shri. The remaining Padma Awards will be given in the second round of the civil investiture ceremony to be held later. We have a report.
3: This year, the government has announced a total of 131 Padma Awards. These include 5 Padma Vibhushan, 13 Padma Bhushan and 113 Padma Shri Awards. Among the awardees, 19 are women, while 16 individuals will be awarded posthumously. The Padma Awards, namely Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri, are amongst the highest civilian awards of the country. Instituted in the year 1954, these awards are announced on the occasion of Republic Day every year. The award seeks to recognize work of distinction and is given for distinguished and exceptional achievements in various fields and disciplines, including art, literature, education, sports, medicine, social work, science and engineering, public affairs and trade and industry. Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
2: News Services Division of Akashwani will broadcast special programs as part of a series People's Padma on Akashwani.
4: We launched an environmental protection movement, forest conservation, for about 6 years together. Because the importance of Darjeeling Hill Forest had hardly been known.
5: मेरा शोध विशेष रूप से इस क्षेत्र में रहा, जिसमें पत्ती के झुलसा और झोंका रोग के लिए रोगरोधी किस्मों का विकास मैंने किया।
6: फिर हम गुरुजी के पास आ गए, उन्होंने फिर हमें गांव में सत्संग करने के लिए लगा दिया कि नशे के खिलाफ हर गांव में जाइए, तो हम इस अभियान में जुट गए।
2: In these episodes, we provide listeners insights into the work and life of Padma awardees. To listen to the episodes, tune to 100.1 Akashwani Gold today from 9:10 a.m. onwards. It can also be heard on News on AIR app and News on AIR official YouTube channel. Union Home Minister Amit Shah has said that the government has made special provisions to exclude all tribal communities from the ambit of the Uniform Civil Code UCC, ensuring that their rights are fully protected. Addressing the Janjati Sanskritik Samagam in New Delhi, Mr. Shah said the UCC will not infringe upon any tribal rights.
7: नरेंद्र मोदी सरकार के गुरु

0: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: दीदी, नौकरी लग गई।
3: अरे वाह, बधाई हो।
4: तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
2: हाँ दी, नया मोबाइल।
3: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
2: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
3: पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो।
2: पर दीप,
3: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
2: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
3: अच्छा।
5: RBI कहता है,
6: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
7: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
8: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value. With its bold design and spacious comfort, it's built to impress every single day.
7: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.70 lakh.
8: Yes, Rs. 6.70 lakh. Valid till 31st May. Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
7: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
6: Nexa.
9: फिल्म संगीत इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र के साथ। श्रोताओ, आइए सुनते हैं अंदाज फिल्म का ये गीत, जो एक बार हमें फिर से बीते दौर पर ले जाने वाला है। जी हाँ, जितना सुरीला ये गीत है, उतना ही खूबसूरती से इस गीत को फिल्माया गया है।

श्रोता, फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में अभी बस इतना ही। इस समय सुबह के 8:45 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कानून की बात कार्यक्रम, जिसे आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: अतिरिक्त सचिव हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विक्रांत कौंडल से सपना ठाकुर की बातचीत। विषय है नालसा, मानव तस्करी एवं व्यावसायिक यौन शोषण अपराध योजना। श्रोताओं, हमारे ये प्रोग्राम हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र भी रिले करेंगे।
1: नमस्कार, कानून की बात कार्यक्रम के आज के संक में आप सभी का स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे नालसा द्वारा निर्मित मानव तस्करी एवं व्यावसायिक यौन शोषण अपराध योजना। इस विषय को लेकर आज आकाशवाणी के स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित हैं विक्रांत कौंडल जी। आप अतिरिक्त सचिव हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं मुख्य न्यायिक दंड अधिकारी हैं। विक्रांत कौंडल जी, स्टूडियो में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद
1: विक्रांत जी। जैसा कि आज का हमारा विषय है, तो इसी पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि नालसा क्राइम्स ऑफ ट्रैफिकिंग एंड कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन स्कीम का उद्देश्य क्या है।
2: जी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है जो नालसा द्वारा बनाई गई है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो मानव तस्करी एवं व्यावसायिक यौन शोषण के जो पीड़ित लोग हैं उनको निःशुल्क विधिक सहायता, उनके पुनर्वास में उनकी सहायता करना, उनका संरक्षण करना और उनको न्याय उपलब्ध करवाना है।
1: जी कौंडल जी, तो ये जो योजना है किन व्यक्तियों के लिए लागू है?
2: यह योजना मानव तस्करी, देह व्यापार, बाल तस्करी, जबरन श्रम, यौन शोषण और अन्य प्रकार के व्यावसायिक शोषण के पीड़ितों के लिए लागू है।
1: विक्रांत जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि मानव तस्करी क्या है।
2: मानव तस्करी को अगर हम समझना चाहें तो किसी व्यक्ति को धोखे से, लालच, दबाव, भय या बल प्रयोग द्वारा शोषण के उद्देश्य से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना मानव तस्करी कहलाता है।
1: और व्यावसायिक यौन शोषण की बात करें तो इससे क्या मतलब है?
2: जब भी किसी व्यक्ति, विशेषकर महिला या बच्चे का आर्थिक लाभ के लिए यौन शोषण किया जाता है तो उसे हम व्यावसायिक यौन शोषण कहते हैं।
1: जी, जैसे कि आज हम इस योजना की बात कर रहे हैं तो इस योजना के अंतर्गत पीड़ितों को कौन कौन सी सहायता प्रदान की जाती है?
2: इस योजना के अंतर्गत पीड़ितों को मल्टीफेरियस सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। जब उनका रेस्क्यू किया जाता है उस वक्त इन्वेस्टिगेशन के दौरान, ट्रायल के दौरान और ट्रायल होने के बाद भी उनकी सहायता की जाती है। इस सहायता में अगर हम बात करें तो निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना, परामर्श एवं मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करना, चिकित्सा सहायता प्रदान करना, आश्रय एवं पुनर्वास की सुविधा उनको देना, मुआवजा दिलाने में उनकी सहायता करना और कोर्ट में जो भी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उसमें उनको जो भी सहयोग चाहिए कानूनी रूप से वो उनको प्रदान करना, ये सब सहायता उनको दी जाती हैं।
1: जी बिल्कुल। विक्रांत कौंडल जी, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस योजना के कार्यान्वयन में कौन कौन सी संस्थाएं शामिल रहती हैं।
2: इस योजना को इम्प्लीमेंट करने में बहुत सारी संस्थाएं एक साथ मिलकर काम करती हैं। सबसे ऊपर का जो मार्गदर्शन रहता है वो नालसा का रहता है और उसके साथ स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी काम करती हैं, साथ में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ भी इसमें सहयोग देती हैं, पुलिस विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग और विशेष प्रकार से कई NGOs इसमें सहायता करते हैं।
1: जी, पीड़ित को निःशुल्क विधिक सहायता किस अधिनियम के अंतर्गत दी जाती है?
2: विधिक सहायता लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंतर्गत प्रोवाइड की जाती है।
1: इस योजना में बच्चों के लिए क्या कोई विशेष प्रावधान रहता है?
2: जी, बच्चों के लिए उनका जो वेलफेयर होता है वो सर्वोपरि माना जाता है। बाल अनुकूल वातावरण में उनके बयान दर्ज किए जाते हैं, शिक्षा, सुरक्षा एवं पुनर्वास पर विशेष ध्यान दिया जाता है और जो हमारा एक कानून है पॉक्सो एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, उसके जो प्रावधान हैं उनको लागू किया जाता है।
1: विक्रांत जी, जैसे कि हम मानव तस्करी की बात भी कर रहे हैं तो आपसे जानना चाहेंगे कि मानव तस्करी रोकने के लिए समाज की क्या भूमिका रहती है?
2: किसी भी अपराध को रोकने के लिए समाज की बहुत अहम भूमिका रहती है, क्योंकि जैसे जागरूकता फैलाना, संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देना, पीड़ितों के पुनर्वास में सहयोग करना और महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों का सम्मान करना, ये सब जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कहीं ना कहीं हर नागरिक की होती है।
1: जी, अब बात आती है कि पीड़ितों के पुनर्वास का क्या महत्व है।
2: पीड़ितों के पुनर्वास का बहुत अहम महत्व होता है। पुनर्वास से पीड़ित सामान्य जीवन में लौट पाते हैं तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्राप्त होता है।
1: इस योजना के अंतर्गत पैरालीगल वॉलंटियर्स की क्या भूमिका है?
2: पैरालीगल वॉलंटियर्स जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने अपॉइंट कर रखे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी स्कीम्स फील्ड में इम्प्लीमेंटेशन के लिए भेजी जाती हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन सही रूप से करना, लोगों तक जागरूकता फैलाना और उनकी सहायता करना।
1: विक्रांत जी, मानव तस्करी से संबंधित प्रमुख कानून कौन कौन से हैं?
2: मानव तस्करी को रोकने के लिए बहुत सारे कानून बनाए गए हैं। जो मुख्य कानून हैं वो हैं भारतीय न्याय संहिता, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 और बाउंडेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट।
1: जी विक्रांत जी, क्या पीड़ित की पहचान इसमें गोपनीय रखी जाती है?
2: जी, पीड़ित की पहचान एवं व्यक्तिगत जानकारी को गोपनीय रखा जाता है।
1: और अब बात आती है कि नालसा योजना का मुख्य संदेश क्या है?
2: मानव तस्करी एवं यौन शोषण के विरुद्ध जागरूकता, पीड़ितों की सुरक्षा, न्याय एवं सम्मानजनक पुनर्वास सुनिश्चित करना नालसा योजना का मुख्य संदेश है।
1: मानव तस्करी के सामान्य कारण क्या है?
2: मानव तस्करी के जो सामान्य कारण देखे गए हैं वो है गरीबी एवं बेरोजगारी, अशिक्षा, झूठे रोजगार के प्रलोभन, सामाजिक असमानता, घरेलू हिंसा एवं पारिवारिक समस्याएं।
1: अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि मानव तस्करी के प्रमुख उद्देश्य क्या होते हैं?
2: मानव तस्करी के जो प्रमुख उद्देश्य देखे गए हैं वो होते हैं जैसे यौन शोषण, जबरन मजदूरी, बाल श्रम, भीख मंगवाना, अवैध अंग व्यापार, घरेलू दास्ता आदि।
1: जी विक्रांत कौंडल जी, जैसे कि मानव तस्करी की हम बात कर रहे हैं तो मानव तस्करी के शिकार लोगों की पहचान कैसे की जा सकती है, कैसे जाना जा सकता है कि ये मानव तस्करी के शिकार हुए हैं?
2: ऐसे लोगों को अगर पहचानने की बात हो तो अगर किसी भी नागरिक को लगता है कि कोई इंसान बहुत भयभीत है या दबाव में रह रहा है, स्वतंत्र रूप से बात नहीं कर पाता है या शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न के संकेत दे रहा है या कोई उसके पास आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट नहीं है या वो अत्यधिक नियंत्रण में रह रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन हर नागरिक को कर लेनी चाहिए कि कहीं ये मानव तस्करी का शिकार व्यक्ति तो नहीं है।
1: जी बिल्कुल। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की क्या भूमिका रहती है?
2: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसको हम शॉर्ट में DLSA के नाम से जानते हैं, ये हर जिला में देश भर में स्थापित हैं और इनकी जो भूमिका है वो बहुत अहम होती है क्योंकि यह जो सारी स्कीम्स हैं इनकी इम्प्लीमेंटेशंस में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। DLSA पीड़ितों को निशुल्क कानूनी सहायता, परामर्श, पुनर्वास सहायता एवं ट्रायल के दौरान जो भी कानूनी सहायता चाहिए वो प्रदान करवाने में उनकी सहायता करते हैं।
1: अब बात आती है मुआवजे की, तो पीड़ित मुआवजा योजना क्या है ये जानना चाहेंगे हम आपसे।
2: यह एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत अपराध पीड़ितों को आर्थिक सहायता एवं

0: से ग्रसित है तो वो टेलीफोनिकली इनके 24/7 हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकती हैं, जो है 181, और उनको ये सब सहायता एकदम से प्रदान की जाती हैं।
1: जी विक्रांत जी, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट क्या है?
0: एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट पुलिस की एक विशेष इकाई है जो मानव तस्करी के मामलों की रोकथाम, जांच एवं बचाव कार्य में काम करती है।
1: इस योजना में एनजीओस की क्या भूमिका रहती है?
0: एनजीओस की बहुत विशेष भूमिका रहती है क्योंकि जो एनजीओस होती हैं वो पीड़ितों की पहचान करने में सहयोग करती हैं, सहायता देती हैं और बचाव, परामर्श, पुनर्वास एवं समाज में पुनः उनको स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
1: विक्रांत जी, व्यावसायिक यौन शोषण के दुष्प्रभाव क्या है?
0: इसके बहुत सारे दुष्प्रभाव हैं, मगर मुख्यतः मानसिक आघात, शारीरिक बीमारियां, सामाजिक बहिष्कार, आत्मविश्वास में कमी, आर्थिक एवं भावनात्मक शोषण इसके दुष्प्रभाव हैं।
1: जी, बाल तस्करी क्यों गंभीर अपराध माना जाता है?
0: बाल तस्करी एक सीरियस ऑफेंस की श्रेणी में इसलिए आता है क्योंकि इसे बच्चों की शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं सम्मान पूर्वक जीवन के अधिकार का उल्लंघन होता है।
1: विक्रांत जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि पीड़ितों के पुनर्वास में कौशल विकास का क्या महत्व है?
0: इसका भी बहुत महत्व रहता है। कौशल विकास से जो पीड़ित होते हैं वो आत्मनिर्भर बनते हैं और सम्मानपूर्वक जीवन जीने में सक्षम होते हैं।
1: और इस योजना के तहत कानूनी जागरूकता शिविरों का क्या उद्देश्य रहता है?
0: ये जो शिविर होते हैं ये लोगों को उनके अधिकारों के बारे में, कानूनों के बारे में एवं उपलब्ध सहायता सेवाओं के प्रति जागरूक करते हैं।
1: मानव तस्करी रोकने के लिए नागरिक क्या कर सकते हैं? ये एक अहम सवाल है।
0: जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया,
1: जी
0: नागरिकों का बहुत महत्व रहता है क्योंकि नागरिक होने के नाते देश के प्रति उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एक ऐसा समाज बनाएं जो कि अच्छा हो और देश के विकास में सहयोग करें। मानव तस्करी रोकने में भूमिका है वो ऐसी, अगर कहीं भी वो संदिग्ध गतिविधियां देखते हैं तो उसकी सूचना एकदम से पुलिस को दें। बच्चों एवं महिलाओं की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। जागरूकता अभियान में वो भी भाग लें। झूठे रोजगार प्रस्तावों से सावधान रहना चाहिए।
1: जी विक्रांत कौंडल जी, यदि कोई पीड़ित व्यक्ति अदालत से सहायता लेना चाहता है तो क्या अदालत में सहायता प्रदान की जाती है पीड़ित को?
0: जी हाँ, जब भी पीड़ित का कोई भी मैटर अदालत में चलता है या अदालत के समक्ष आता है तो वहाँ उसको कानूनी सलाह परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके लिए हमने पैनल ऑफ एडवोकेट्स बना रखे हैं जो उनको मुहैया करवाए जाते हैं, जो कि उनको कानूनी परामर्श भी देते हैं और आगे की कार्रवाई का रास्ता भी सुझाते हैं। तो इसी तरह से जो परामर्शदाता है या सहयोगी व्यक्ति है उसकी अपॉइंटमेंट भी करवाई जाती है ताकि ट्रायल के दौरान उनको किसी किस्म की कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े।
1: जी, अब बात आती है कि रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन से क्या अभिप्राय है?
0: पीड़ित को शोषण की स्थिति से सुरक्षित बाहर निकालना रेस्क्यू कहलाता है और रेस्क्यू होने के बाद जब उसको समाज में दोबारा स्थापित करना है तो उसके लिए जो भी कार्य किया जाता है उसको हम रिहैबिलिटेशन की श्रेणी में रखते हैं।
1: जी, महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा क्यों आवश्यक है?
0: यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि वे समाज के संवेदनशील वर्ग में आते हैं और उनके अधिकारों की रक्षा से सुरक्षित एवं न्यायपूर्ण समाज का निर्माण होता है।
1: जी विक्रांत जी, अब बात आती है कि नालसा स्कीम का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है?
0: अगर हम बात करें इस स्कीम की तो ये जो स्कीम होती है ये इस क्राइम के हर पहलू को नज़र में रखकर बनाई जाती है और यह योजना जो मानव तस्करी एवं शोषण के विरुद्ध जागरूकता है उसको बढ़ाती है, पीड़ितों को न्याय दिलाती है तथा समाज में सुरक्षा एवं समानता को प्रोत्साहित करती है। इस योजना को देखकर आगे का मार्गदर्शन मिलता है और किस तरह से जो विक्टिम्स हैं उनकी सहायता करनी है उसकी दिशा निर्धारित होती है।
1: विक्रांत कौंडल जी, आज हमने नालसा मानव तस्करी एवं व्यावसायिक यौन शोषण अपराध योजना के विषय पर आपसे जानकारी हासिल की। आप हमारे स्टूडियो में, आपका धन्यवाद। इसी के साथ कानून की बात कार्यक्रम का आज का ये अंक यहीं संपन्न होता है। अगले सप्ताह इसी दिन आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार। कानून की बात कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अतिरिक्त सचिव हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विक्रांत कौंडल से सपना ठाकुर की बातचीत। विषय था नालसा मानव तस्करी एवं व्यावसायिक यौन शोषण अपराध योजना। हमारा ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिमला के अलावा FM हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों पर भी प्रसारित

0: किया गया।
1: 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं।
2: प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना,
3: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी का मनोरंजन संसार छुए सबके दिल के तार,
0: सुबह से रात तक रहता है हमारे अंग संग, इसीलिए तो रंगे हैं हम इसके रंग।
5: मेरे

0: छूटे ना हर दिन कोई जानकारी, इसीलिए तो है हर किसी को प्यारी।
1: भक्ति संगीत के साथ करता है भाव विभोर, बांधे हुए है सबके दिल की डोर।
2: ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।
0: सदाबहार गीतों का संगम, थामे है हर दिल की धड़कन।
1: फिर आती युवाओं की बारी, मनोरंजन के साथ मिलती हर जानकारी।
0: किसानों का तो नाता जुड़ा इससे, सुनते जानकारियां और नए नए किस्से।
1: महिलाओं का भी अपना संसार, लेकर आती हैं घर परिवार।

जी हाँ, जुड़े हुए हैं आप आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र के साथ और इस वक्त जो है स्टूडियो की घड़ी में ठीक 9:02 हो चुके हैं। यहाँ पर आगाज हो चुका है आप सभी के पसंदीदा प्रोग्राम गीतांजलि का। आज के ये प्रोग्राम आप एंजॉय करने वाले हैं अपनी रेडियो दोस्त नीमा शर्मा के साथ अब से लेकर ठीक 10 बजे तक। तो थोड़ी सी मस्ती थोड़े से धमाल के लिए आप यूं ही जुड़े रहिए आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र पर और प्रोग्राम चल रहा है गीतांजलि। आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं दिलवाले फिल्म के इस गीत के साथ, आवाजें अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा की। इस फिल्म में अपना प्यारा सा संगीत दिया है प्रीतम ने।

जी हाँ, आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं गीतांजलि कार्यक्रम। और आज के इस कार्यक्रम में हम आपसे बात करने वाले हैं कि आप अपनी लाइफ में किन बातों को नज़रअंदाज कर सकते हैं, आपको किन बातों को नज़रअंदाज करना चाहिए और किन बातों को तवज्जो देनी चाहिए। वैसे श्रोताओं, मेरा मानना है कि हमें या हर उस शख्स को उन सब बातों को नज़रअंदाज करना चाहिए जो आपकी खुशियों को कम कर दे और आपके मुस्कुराते हुए चेहरे पर उदासी की लकीरों को लेकर आ जाए। वैसे घबराने की जरा भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको बिल्कुल भी उदास होने नहीं देंगे। यहां से प्ले करेंगे आपके लिए कुछ प्यारे प्यारे से गीत। प्रोग्राम रहेगा गीतांजलि।

श्रोताओं, जब हमें कोई ये कहे कि तुम गलत राह पर हो तो थोड़ा रुकिए, गहराई से सोचिए और अपने बड़ों से मशवरा लें। और अगर आपके दिल और आपके दिलों में बसने वाले के मुताबिक आप सही राह पर हो तो नज़रअंदाज करें उन तमाम लोगों की सलाह को जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं। वेल, आप एंजॉय करती रहिए आकाशवाणी धर्मशाला पर गीतांजलि कार्यक्रम।

श्रोताओं, हमारा गीतांजलि कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल समय हो रहा है प्रादेशिक समाचारों का। प्रादेशिक समाचारों के बाद आप एक बार पुनः से सुन पाएंगे गीतांजलि कार्यक्रम। ये प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: हमारा गांव है हमारी पहचान, हमारा गांव है हमारा अभिमान। आइए मिलकर दें इसके विकास में अपना योगदान।
1: हम सब ने ठाना है कि 100% मतदान के लक्ष्य को पाना है।
0: पंचायत चुनाव आ रहे हैं, जहां आपका हर ईमानदारी से दिया गया वोट तय करता है गांव की दशा और दिशा, साथ ही बनता है गांव के विकास का आधार।
1: तो 26, 28 और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और अपने परिवार और आस पास के हर वोटर को मतदान के लिए प्रेरित करे।
0: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में 66 विशिष्ट लोगों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार करेंगे प्रदान। प्रदेश में पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए कल डाले जाएंगे वोट। सुबह 7 से साय 3 बजे तक होगा मतदान। पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की सभी तैयारियां पूरी। मतदान केंद्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को जोड़ने वाली प्रदेश की सबसे लंबे रूट वाली HRTC की दिल्ली केलंग लेह बस सेवा कल से फिर होगी शुरू। और मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी के आसार, कुछ जिलों में लू चलने की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में 66 विशिष्ट लोगों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अलंकरण है। शेष पद्म पुरस्कार बाद में समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे। हर वर्ष गणतंत्र दिवस पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा होती है। ये प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान कला, जनहित और समाज सेवा, साहित्य और शिक्षा, विज्ञान और अभियांत्रिकी, व्यापार और उद्योग, औषधि, खेल इत्यादि क्षेत्रों में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। प्रदेश में कल 26 मई को होने वाले पहले चरण के पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। मतदान सुबह 7 बजे से साय 3 बजे तक मतपत्र व मत पेटियों के माध्यम से करवाया जाएगा। शांतिपूर्ण व निष्पक्ष मतदान के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता।
3: प्रदेश में कल पहले चरण में 1293 ग्राम पंचायतों में प्रथम चरण का मतदान होगा। मतदान के सुचारू संचालन के लिए कुल 8198 मतदान दल गठित किए गए हैं। दूसरे चरण में 28 जबकि तीसरे व अंतिम चरण में 30 मई को मतदान होना है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार इन चुनावों के लिए प्रदेश भर में कुल 21,678 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। पहले चरण के चुनाव के लिए सभी मतदान दल अपने अपने केंद्रों में पहुंच चुके हैं। 3 चरणों में होने जा रहे प्रदेश में कुल 3,754 ग्राम पंचायतों के कुल 31,182 पदों के लिए 70,224 उम्मीदवार चुनावी रण में हैं। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
2: इधर पंचायती राज चुनाव के पहले चरण में जिला सिरमौर में 94 पंचायतों में मतदान होगा, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे जिला संवाददाता।
4: पंचायती राज चुनाव के पहले चरण में सिरमौर जिला की 94 पंचायतों में मतदान होगा, जिसे लेकर सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी है। पोलिंग पार्टियों को मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया है। इन पंचायतों में विकासखंड नाहन की 10, विकासखंड राजगढ़ की 12, विकासखंड ददाऊ की 9, विकासखंड संगड़ाह की 13, विकासखंड शिलाई की 13, विकासखंड पांवटा साहिब की 17, विकासखंड पछात की 11 और विकासखंड तिलोरदार की 9 पंचायतें शामिल है। प्रशासन द्वारा मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न करवाने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पंचायती राज चुनाव के दौरान सिरमौर जिला में करीब 500 पुलिस और होमगार्ड के जवान सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा संभालेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए सिरमौर से सतीश शर्मा।
2: इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी मतदाताओं से स्वतंत्र और निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने व किसी भी प्रकार के प्रलोभन से दूर रहने की अपील की है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि केवल वही मतदाता मतदान केंद्र में प्रवेश कर सकेंगे जिनका नाम उस मतदान केंद्र की मतदाता सूची में शामिल होगा। इधर कांगड़ा जिले में पंचायत चुनाव के पहले चरण में होने वाले मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक अशोक रतन ने बताया कि सभी 895 पोलिंग बूथों पर बेहतर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। अशोक रतन ने बताया कि चुनाव के दौरान किसी भी आपात स्थिति या कानून व्यवस्था से जुड़ी घटना से तुरंत निपटने के लिए पुलिस प्रशासन ने अलग अलग स्तर पर विशेष टीमें भी गठित की है। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाना पुलिस प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है, ताकि मतदाता बिना किसी डर या दबाव के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जोड़ने वाली सबसे लंबे रूट पर हिमाचल पथ परिवहन की दिल्ली केलंग लेह बस सेवा कल से एक बार फिर शुरू हो रही है। क्षेत्रीय प्रबंधक केलंग अंशित शर्मा ने कहा कि केलंग लेह मार्ग को सभी प्रकार के वाहनों के लिए खोल दिए जाने के बाद ये बस सेवा पुनः आरम्भ की गई है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे लाहौल स्पीति संवाददाता।
5: लाहौल स्पीति और लेह की यात्रा की इच्छा रखने वाले पर्यटकों के लिए एक अच्छी खबर है। हिमाचल पथ परिवहन निगम यानी HRTC की दिल्ली केलंग लेह बस सेवा इस बार 26 मई यानी कल से शुरू होने जा रहा है। केलंग लेह मार्ग को सभी प्रकार के वाहनों के लिए खोल दिए जाने के बाद यह सेवा पुनः आरंभ की जा रही है। यह बस सेवा राष्ट्रीय राजमार्ग 03 पर स्थित कई प्रमुख पर्यटन स्थलों जैसे जिस्पा, दाचा, जिंगजिंगबार, बाराला चाला, सरचू, गाटालूप, नकीला, रूमसी, उपशी और तंगलंगला से होकर लेह पहुंचेगी। HRTC के अनुसार दिल्ली से लेह तक की कुल 990 किलोमीटर है और यात्रा का किराया मात्र 1839 रुपए निर्धारित किया गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था भी उपलब्ध करवाई गई है। HRTC ने यात्रियों से यात्रा करने से पहले मौसम और सड़क की स्थिति की जानकारी लेने की अपील की है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
2: शिमला जिला में पिछले कुछ दिनों से बच्चों में वायरल हेपेटाइटिस के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस महीने में अब तक दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में 11 बच्चों को हेपेटाइटिस के लक्षणों के चलते भर्ती करना पड़ा है, जिनमें 7 बच्चे हेपेटाइटिस ए से संक्रमित पाए गए हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने निगरानी बढ़ा दी है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे शिमला जिला संवाददाता।
6: स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक मई महीने में DDU जोनल अस्पताल के बाल रोग वार्ड में हेपेटाइटिस के लक्षण वाले 11 बच्चों को भर्ती किया गया है। इनमें से 7 बच्चों में हेपेटाइटिस ए की पुष्टि हुई है। हल्के लक्षण वाले कई बच्चों का इलाज OPD में किया गया है। ये मामले एक महीने के भीतर धीरे धीरे सामने आए हैं। रोज या एक दिन छोड़कर करीब एक केस रिपोर्ट हो रहा है। प्रभावित बच्चे अलग अलग इलाकों से है और किसी एक क्षेत्र में क्लस्टर नहीं मिला है। एहतियात के तौर पर स्वास्थ्य विभाग की टीमें प्रभावित क्षेत्रों में भेजी गई है। टीमें एक्टिव सर्विलांस, अतिरिक्त मरीजों की पहचान, पेयजल और स्वच्छता की जांच कर रही है। हेपेटाइटिस ए और ई दूषित पानी और भोजन से फैलते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से उबालकर पानी पीने, हाथ धोने, खुले में बिकने वाले कटे फल और भोजन से बचने की अपील की है। साथ ही बुखार, उल्टी, पेट दर्द, पीलिया या गहरे रंग का पेशाब जैसे लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाने की सलाह दी गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
2: राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकतर भागों में आज मौसम साफ बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 3 दिनों में अधिकतम तापमान में करीब 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। बीते 24 घंटों के दौरान ऊना 41.4 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। विभाग ने 26 से 28 मई के बीच ऊना, बिलासपुर, सोलन व कांगड़ा जिला के कुछ स्थानों में लू चलने का अनुमान जताया है। हालांकि विभाग ने 27 मई से देश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 30 मई तक अंधड़, बारिश और गर्जना की संभावना जताई है। और अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज लगभग सभी समाचार पत्रों ने पंचायत चुनाव से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है। अमर उजाला की सुर्खी है, हिमाचल की 1293 पंचायतों में थमा प्रचार, पोलिंग दल रवाना, वोटिंग कल। दैनिक भास्कर ने लिखा है, कल 1293 पंचायतों में होगी पहले चरण की वोटिंग, प्रधान, उपप्रधान और वार्ड मेंबर के रिजल्ट शाम को। दिव्य हिमाचल के शब्द है, पंचायती राज चुनाव में मतगणना पर सख्ती, रीकाउंटिंग के लिए सिर्फ 10 मिनट का समय, लिखित आवेदन करना अनिवार्य। चिनाब ब्यास लिंक टनल परियोजना को केंद्र की मंजूरी, खुल सकते हैं आत्मनिर्भर हिमाचल के द्वार, पंजाब केसरी की एक खबर है। मौसम की खबर को अमर उजाला ने शीर्षक दिया है, 3 दिन तपेगा हिमाचल, ऊना का पारा 41 डिग्री पार। ओवरटेक करने पर पीटा एचआरटीसी बस चालक, पति पत्नी सहित 4 गिरफ्तार, दैनिक जागरण की एक खबर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में 66 विशिष्ट लोगों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार करेंगी प्रदान। प्रदेश में पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए कल डाले जाएंगे वोट, सुबह 7 से साय 3 बजे तक होगा मतदान। पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की सभी तैयारियां पूरी, मतदान केंद्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को जोड़ने वाली प्रदेश की सबसे लंबे रूट वाली एचआरटीसी की दिल्ली केलंग लेह बस सेवा कल से फिर होगी शुरू। और मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी के आसार, कुछ जिलों में लू चलने की संभावना। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
7: श्रोता, प्रादेशिक समाचारों के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे आज के गीतांजलि कार्यक्रम में। आज के गीतांजलि कार्यक्रम में आपसे बात हो रही है कि हमें किन बातों को नजरअंदाज करना चाहिए और किन बातों को तवज्जो देनी चाहिए। वेल, इसके बारे में आपसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवा लेते हैं ये गीत।

जी हाँ, आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं गीतांजलि कार्यक्रम। और आज के इस कार्यक्रम में आपसे बात हो रही है कि हम किन बातों को नज़रअंदाज करें और किन बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए। श्रोतो, अक्सर हम कुछ नया करने से इसलिए डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन हमें किसी और की सोच, किसी और के नज़रिए से अपना रास्ता बदलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हर इंसान की सोचने, समझने और चीज़ों को देखने का अपना अपना नज़रिया, अपना अपना तरीका होता है। इसलिए हमें दूसरों की बातों पर जितनी जरूरत हो उतना ही ध्यान देना चाहिए। फिलहाल कार्यक्रम में अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसे हमने लिया है फिल्म फैशन से, आवाज मोहित चौहान की।

आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से आप इस वक्त सुन रहे हैं गीतांजलि कार्यक्रम। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं बंटी और बबली फिल्म से। इस गीत में अपनी आवाजें दी है सोनू निगम और महालक्ष्मी अय्यर ने।

आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं गीतांजलि कार्यक्रम। श्रोता, हमारी सोच ही हमारे नजरिए को दर्शाती है। हम क्या सोचते हैं, किस तरह का सोचता है, ये हमारे व्यवहार से झलकता है, किसी और की सोच से। लेकिन हमें अपने जीवन को प्रभावित नहीं होने देना है।

0: जी हाँ श्रोताओ, छोटी सी ये जिंदगी है, इसे खुल कर जियो। कौन क्या सोचता है, इससे हमें क्या लेना। हमें तो बस अपनी ही धुन में मगन होकर अपनी लाइफ के हर पल को दिल खोल कर जीना है। वेल, इसी सोच के साथ आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर संपन्न करने की अपनी दोस्त को दीजिए इजाजत। कुछ ही पलों में आपसे मिलेंगे फिल्म म्यूजिक के साथ।
1: प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना,
2: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी। आकाशवाणी का मनोरंजन संसार छुए सबके दिल के तार।
3: सुबह से रात तक रहता है हमारे अंग संग, इसीलिए तो रंगे हैं हम इसके रंग।

0: कहानी।
1: छूटे ना हर दिन कोई जानकारी, इसीलिए तो है हर किसी को प्यारी।
2: भक्ति संगीत के साथ करता है भाव विभोर, बांधे हुए है सबके दिल की डोर।
3: ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।
1: सदाबहार गीतों का संगम, थामे है हर दिल की धड़कन।
2: फिर आती युवाओं की बारी, मनोरंजन के साथ मिलती हर जानकारी।
1: किसानों का तो नाता जुड़ा इससे, सुनते जानकारियां और नए नए किस्से।
2: महिलाओं का भी अपना संसार, लेकर आती हैं घर परिवार।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना।
2: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:04 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

0: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ, HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
0: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ, HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं मैथिली गीत, वैलोक गीत, आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से।

श्रोतो, इस समय आप सुन रहे हैं हिमाचली गीत आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए, अगला हिमाचली गीत हम आपको सुनवा रहे हैं प्रेम सिंह की आवाज में।

0: अभी आप सुन रहे थे हिमाचली गीत व लोकगीत आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11 बजने को है। अब आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रादेशिक समाचार व सामयिक रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में 66 विशिष्ट लोगों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 18

0: 52 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अलंकरण है। शेष पद्म पुरस्कार बाद में समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे। प्रदेश में कल 26 मई को होने वाले पहले चरण के पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। मतदान सुबह 7 बजे से सायं 3 बजे तक मतपत्र व मत पेटियों के माध्यम से करवाया जाएगा। शांतिपूर्ण व निष्पक्ष मतदान के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता।
1: प्रदेश में कल पहले चरण में 1293 ग्राम पंचायतों में प्रथम चरण का मतदान होगा। मतदान के सुचारू संचालन के लिए कुल 8198 मतदान दल गठित किए गए हैं। दूसरे चरण में 28 जबकि तीसरे व अंतिम चरण में 30 मई को मतदान होना है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार इन चुनावों के लिए प्रदेश भर में कुल 21678 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। पहले चरण के चुनाव के लिए सभी मतदान दल अपने अपने केंद्रों में पहुंच चुके हैं। तीन चरणों में होने जा रहे प्रदेश में कुल 3754 ग्राम पंचायतों के कुल 31182 पदों के लिए 70224 उम्मीदवार चुनावी रण में हैं। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी मतदाताओं से स्वतंत्र और निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने व किसी भी प्रकार के प्रलोभन से दूर रहने की अपील की है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि केवल वही मतदाता मतदान केंद्र में प्रवेश कर सकेंगे जिनका नाम उस मतदान केंद्र की मतदाता सूची में शामिल होगा। कांगड़ा जिले में पंचायत चुनाव के पहले चरण में होने वाले मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक अशोक रतन ने बताया कि सभी 895 पोलिंग बूथों पर बेहतर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। अशोक रतन ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाना पुलिस प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है ताकि मतदाता बिना किसी डर या दबाव के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकें। प्रदेश को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जोड़ने वाली सबसे लंबे रूट पर हिमाचल पथ परिवहन निगम की दिल्ली केलंग लेह बस सेवा कल से एक बार फिर शुरू हो रही है। क्षेत्रीय प्रबंधक केलंग अंशित शर्मा ने कहा कि केलंग लेह मार्ग को सभी प्रकार के वाहनों के लिए खोल दिए जाने के बाद यह बस सेवा पुनः आरंभ की गई है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता।
2: लाहौल स्पीति और लेह की यात्रा की इच्छा रखने वाले पर्यटकों के लिए एक अच्छी खबर है। हिमाचल पथ परिवहन निगम यानी HRTC की दिल्ली केलंग लेह बस सेवा इस बार 26 मई यानी कल से शुरू होने जा रहा है। केलंग लेह मार्ग को सभी प्रकार के वाहनों के लिए खोल दिए जाने के बाद यह सेवा पुनः आरंभ की जा रही है। यह बस सेवा राष्ट्रीय राजमार्ग 03 पर स्थित कई प्रमुख पर्यटन स्थलों जैसे जिस्पा, दाचा, जिंगजिंगबार, बाराला चाला, सरचू, गाटालूप्स, नकीला, रूमसी, उपशी और तंगलंगला से होकर लेह पहुंचेगी। HRTC के अनुसार दिल्ली से लेह तक की कुल दूरी 990 किलोमीटर है और यात्रा का किराया मात्र 1839 रुपए निर्धारित किया गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था भी उपलब्ध करवाई गई है। HRTC ने यात्रियों से यात्रा करने से पहले मौसम और सड़क की स्थिति की जानकारी लेने की अपील की है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी है। NTA ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण ये निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना शीघ्र ही दी जाएगी। इस बीच केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा कि छात्रों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये फैसला किया गया है। स्कैन कॉपी कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख शीघ्र ही घोषित की जाएगी। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकतर भागों में आज मौसम साफ बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 3 दिनों में अधिकतम तापमान में करीब 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। बीते 24 घंटों के दौरान ऊना 41.4 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। विभाग ने 26 से 28 मई के बीच ऊना, बिलासपुर, सोलन व कांगड़ा जिला के कुछ स्थानों में लू चलने का अनुमान जताया है। हालांकि विभाग ने 27 मई से प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 30 मई तक अंधड़ बारिश और गर्जना की संभावना जताई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 2:03 PM। नमस्कार।
3: FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं पंजाबी गीत।

श्रोताओ, पंजाबी गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए, बब्बू मान की आवाज में सुनवा रहे हैं आपको अगला पंजाबी गीत।

अभी आप सुन रहे थे पंजाबी गीत। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 11:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार।
2: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत राहुल, गुरु शब्द सिंह जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
3: जीवन में सवाल करने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन बिना सवाल किए ख्याल रखने वाले मुश्किल से मिलते हैं। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज तो मुमकिन है, लेकिन नज़रिए का इलाज आसान नहीं है।
2: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले और श्रोताओं के नाम हैं।
3: खैरागढ़ राज लालपुर छत्तीसगढ़ से मोतीलाल भीमटे और सुशीला भीमटे जी ने लिखा है,
2: आपका उमंग कार्यक्रम मुझे बेहद उपयोगी, ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद लगता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से नई नई जानकारी मिलती है, जो काफी लाभदायक सिद्ध हो रही है। साथ ही साथ गीत संगीत से कार्यक्रम की रोचकता बनी रहती है। आप सभी की अथक मेहनत, लगनशीलता और अनुपम प्रस्तुति को हम दिल से नमन करते हैं। इस कार्यक्रम का प्रसारण यूं ही बरकरार रहे।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। गांव गणेश धाम परसूली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धर्मंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी ने लिखा है। सप्रेम अजीत साहेब और विमलेश मैडम जी, वंदगी जी। आगे लिखते हैं,
2: अजीत साहेब जी का कार्यक्रम आप दोनों के साथ शुरुआत होता है और बहुत शानदार रहता है। इस सप्ताह विमलेश मैडम कोई भी कार्यक्रम में नहीं आया। आप दोनों का वाणी विचार इस कार्यक्रम को और खूबसूरत बनाता है। आप दोनों का स्नेह श्रोताओं को मिलता रहे। 30 अप्रैल 2026 को एक टोकरी मिट्टी कहानी सुनने को मिला, बहुत प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद लगा। दिल से धन्यवाद।
3: आपको भी दिल से धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास जी का।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से साहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े।
3: और साथ ही साथ खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का संदेश हमें मिला है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, संदेश लगातार भेजने के लिए। आपसे निवेदन है, इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे और आपके उमंग कार्यक्रम से। आइए अब जानते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो हमारा पहला प्रश्न था, पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है?
2: इसका उत्तर है, पीसा की मीनार इटली में स्थित है। इसकी नींव नरम और दलदली मिट्टी पर बनी हुई थी। इसकी मिट्टी कम गहरी है। जब इसे और ऊंचा बनाया गया तो ये धीरे धीरे तिरछी होनी शुरू हो गई।
3: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। अधिकांश वर्षा वन भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में गर्मी बहुत पड़ने की वजह से वर्षा भी खूब होती है।
3: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमने आपसे पूछा था, अमेजन वर्षा वन के क्षेत्र में अमेजन नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं?
2: अमेजन क्षेत्र में भारी वर्षा होने के कारण अक्सर अमेजन नदी अपना तटबंध बदलती रहती है, इसलिए निश्चित करना बहुत कठिन हो जाता है कि पुल कहां से कहां तक बनाया जाए।
3: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था। हमारा प्रश्न था, मातृवृक्ष किसे कहते हैं?
2: इसका उत्तर है साथियों, मातृवृक्ष उन पेड़ों को कहा जाता है जो बहुत पुराने और बड़े होते हैं। उनकी जड़ें जमीन पर दूर दूर तक फैली हुई होती हैं। वे छोटे पेड़ पौधों को अपनी जड़ों से पोषण देते हैं।
3: और श्रोताओं, अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न था, साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों?
2: इसका उत्तर भी बड़ा अनोखा है साथियों। मैंग्रोव वनों के पेड़ों की पत्तियां खारे पानी के नमक को छानकर निकाल देती हैं और उन्हें मीठे पानी में बदल देती हैं, जिसके कारण वहां के पेड़ खारे पानी में भी जीवित रहते हैं। ये प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है।
3: तो श्रोताओ, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से बने रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ। जरूर बताइएगा कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है,
2: दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ पर है?
3: प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ पर है?
3: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं।
2: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
3: और श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है, शेर और चूहे की दोस्ती।
4: शेर मतवाली चाल से चला जा रहा था। अचानक उसे एक हल्की सी चीख सुनाई दी। एक चूहे की पूंछ उसके पंजे के नीचे आ गई थी।

0: आप तो जंगल के राजा हैं, मुझे छोड़ दीजिए। देखना एक दिन मैं आपके काम जरूर आऊंगा। हाँ, छोड़ दीजिए।
1: मेरे काम आओगे? ये छोटा सा चूहा, ये भला मेरे क्या काम आएगा? ठीक है ठीक है, जाओ, तुम्हें आजाद किया, जाओ।
0: धन्यवाद महाराज, पर एक दिन मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। हाँ, मदद करूंगा।
2: शेर ने अपना पैर हटाया, चूहा फुदक कर झाड़ियों में चला गया।

एक दिन शिकारी ने शिकार पकड़ने के लिए जाल बिछाया। उस जाल में शेर फंस गया। वो जोर जोर से दहाड़ने लगा।

0: जंगल में रहने वाले हाथी, भालू, हिरण, खरगोश, लोमड़ी, बंदर और अजगर समेत सभी पशु पक्षियों ने दहाड़ सुनी, पर कोई भी शेर की सहायता को नहीं आया।
1: ये कहां फंस गया मैं? अरे कोई तो मेरी मदद करो, मैं जाल में फंस गया हूं, निकालो मुझे यहां से।
0: हाँ, चूहा जरूर भागा भागा वहां आया।
2: अरे अरे महाराज, आप यहाँ? लेकिन आप चिंता ना करें, मैं आपको अभी इस जाल से आजाद कर देता हूँ।
0: वो अपने पहने दांतों से जल्दी जल्दी जाल कुतरने लगा। कुछ ही पल में सारा जाल कट गया और शेर आजाद हो गया।
1: धन्यवाद धन्यवाद मेरे नन्हे दोस्त, धन्यवाद
2: महाराज।
3: तो साथियों, सुना आपने, हम जिनसे आशा भी नहीं करते वे भी हमारे बहुत बड़े सहायक सिद्ध हो सकते हैं, है ना? तो इसलिए हमें सबका सम्मान करना चाहिए। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शेर और चूहे की दोस्ती। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार बाबला कोचर, मुइनुल हसन नियाजी और परवेज गौहर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शेर और चूहे की दोस्ती।

0: दीक्षा, शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा, दीक्षा।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है
2: अर्देशीर बुड़जोड़जी तारापुर। ये कार्यक्रम परमवीर चक्र विजेता भारतीय सेना के जांबाज कर्नल अर्देशीर बुड़जोड़जी तारापुर के जीवन और भारत पाक युद्ध के दौरान उनके अप्रतिम शौर्य और रण कौशल के प्रदर्शन की जानकारी देता है।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है श्रृंखला वीर गाथा। इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरजोरजी तारापोर।
1: भारत भूमि की जितनी वंदना की जाए कम है। कुछ तो ऐसा जरूर है इसकी माटी में जो अनगिनत प्रतिभाओं, वीरांगनाओं, वीरों, कलाकारों, मेधावियों और योद्धाओं को पैदा करती है।
2: आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत माता के सपूत और पराक्रमी सैन्य योद्धा अर्देशीर बुरजोरजी तारापोर के बारे में, जिन्होंने सन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अपने असीम शौर्य का परिचय दिया और युद्ध का रुख भारत के पक्ष में निर्णायक रूप से मोड़ दिया। अर्देशीर बुरजोरजी तारापोर का जन्म 18 अगस्त 1923 को बंबई में हुआ था, जिसे आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं। अर्देशीर महान योद्धा रतनजीबा की वंश परंपरा में पैदा हुए थे। रतनजीबा महान राजा छत्रपति शिवाजी की सेना में सेनानायक थे।
1: उनके अतुल्य पराक्रम, शौर्य और श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन के सम्मान में स्वयं राजा शिवाजी द्वारा 100 गांवों की मनसबदारी दी गई थी। इन 100 गांवों में से एक था तारापोर, जहां रतनजीबा बस गए थे। इसी तारापोर गांव का नाम आगे चलकर उनके खानदान का उपनाम बन गया।
2: काल क्रम में तारापोर परिवार हैदराबाद में जा बसा। अर्देशीर यहीं बड़े हुए। सन 1940 में मैट्रिक पास करने के बाद वो हैदराबाद स्टेट आर्मी में शामिल हो गए। उन्हें प्यार से आदि पुकारा जाता था।
1: सेना में आते ही आदि ने अपूर्व साहस और निष्ठा का परिचय दिया। अपने सौम्य, मित्रवत और हंसमुख स्वभाव के कारण आदि समय के साथ साथ जवानों में बेहद लोकप्रिय थे। एक बार की बात है, उनकी यूनिट में हथगोला फेंकने का प्रशिक्षण चल रहा था।
3: जवानों,
4: जी सर।
3: हथगोला फेंकने के लिए बहुत अभ्यास की जरूरत होती है। जितना अधिक अभ्यास आप करेंगे, उतना ही सटीक आपका निशाना होगा।
4: जी सर, हमने सुना है कि यदि हथगोले को ठीक से नहीं फेंका गया तो।
3: तुमने ठीक सुना है, यदि इसे ठीक से नहीं फेंका गया तो यह जानलेवा हो सकता है। अच्छा चलो, अब अभ्यास शुरू करते हैं।
5: जी सर।
3: ध्यान रहे, जब आप गोला फेंकते समय अपने हाथ को घुमाते हैं तो गोले को सही समय पर फेंकिए। चलो राम सिंह, तुमसे शुरू करते हैं।
5: जी जनाब।
3: हाथ गोला हाथ में लो।
5: ले लिया जनाब।
3: अब पिन रिलीज करो।
6: फेंको।
5: फेंका जनाब।
7: अरे अरे, ये क्या हुआ?
8: ये क्या हुआ?
7: अरे
8: बच्चों बच्चों बच्चों,
7: फट जाओ,
8: सब पीछे हटो, पीछे हटो,
7: जमीन पर लेट जाओ, अरे निकल जाओ, वो निकल
2: जाओ। साथियों, हुआ ये था कि वो सैनिक ग्रेनेड ठीक से नहीं फेंक सका और ग्रेनेड वापस अभ्यास स्थल पर ही आ गिरा।
1: कि तभी आदि तत्काल उठे, बिजली किसी गति से उस ग्रेनेड के पास पहुंचे।
5: ये आदि क्या कर रहा है?
1: और उसे उठाकर सुरक्षित दूरी पर फेंक दिया। हालांकि इसमें वो थोड़े घायल भी हुए।
4: वाह आदि, तुमने तो कमाल कर दिया।
5: तुमने साहस ना दिखाया होता तो शायद बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती आदि।
9: सही में
5: बहादुर सैनिक हो तुम। हाँ।
2: घटना स्थल पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज भी उपस्थित थे। वो आदि की सजगता, बहादुरी और निर्णय कुशलता से बहुत प्रभावित हुए। अभ्यास सत्र के समाप्त होने पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज ने आदि को अपने कार्यालय में बुलवाया।
10: May I come in, sir?
4: Yes, come in.
10: Sir.
4: जवान, मैं तुम्हारी बहादुरी पर तुम्हें शाबाशी देना चाहता हूँ। तुम एक सच्चे सिपाही हो।
10: सर।
4: वेल डन एडी, तुम बहुत आगे जाओगे। ट्रेनिंग में खूब मन लगाओ।
6: थैंक यू सर। सर, क्या मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ?
4: हाँ हाँ, कहो।
6: मुझे लगता है कि किसी आर्मर्ड रेजिमेंट में मैं और ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा।
4: ओके ओके, तुम हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स ज्वाइन करने की तैयारी करो। शाम तक तुम्हें ऑर्डर्स मिल जाएंगे।
6: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
4: गो अहेड यंग मैन।
6: सर।
2: दूसरे ही दिन आदि का तबादला हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स में हो गया। ये उनके लिए ऐसा था मानो कोई बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया हो। अपनी कर्मठता, अनुशासन प्रियता और विनम्रता के कारण वो लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पहुंच गए। रेजिमेंट में उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नाम से जाना जाता था।
1: भारत आजाद हो गया और हैदराबाद राज्य का भारतीय संघ में विलय हो गया। इसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर की पोस्टिंग पूना हॉर्स रेजिमेंट में हो गई। पूना हॉर्स रेजिमेंट को उसके रण कौशल और बहादुरी के लिए बड़े सम्मान से जाना जाता है।
2: और फिर आया सन 1965। भारत की पश्चिमी सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे। 27 अगस्त 1965 को भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। पूना हॉर्स रेजिमेंट को फौरन भारत पाकिस्तान सीमा की ओर कूच करने का आदेश दिया गया।
1: लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर को निर्देश दिया गया कि वो पंजाब के सियालकोट सेक्टर के चौविंडा इलाके पर नियंत्रण करें। 13 सितंबर 1965 को भीषण युद्ध शुरू हुआ।
9: साथियों, ये खास तौर पर ध्यान रखा जाए कि इस युद्ध में हमारी ओर से जन सामान्य को किसी तरह की हानि न पहुंचे। ये युद्ध दो सेनाओं के बीच में है।
10: जी सर, हम पूरा ध्यान रखेंगे।
9: हमें अचानक हमला करना है ताकि दुश्मन को तैयार होने का भी मौका न मिले। आज रात होते ही हमारे सारे टैंक बिना कहीं रुके उनकी सीमा के अंदर घुसेंगे। और इस बीच याद रहे, इस बीच वायरलेस पर कोई मैसेज नहीं जाएगा।
11: जी जनाब।
12: सर, सुबह होने को है, जल्द ही उजाला हो जाएगा। हमारे सारे टैंक उन घने पेड़ों के पीछे पहुंच चुके हैं।
6: अब समय आ गया है हमला करने का। हमारे टैंक तीन दिशाओं से दुश्मन की ओर बढ़ेंगे ताकि उनका ध्यान बंट जाए, और मैं खुद अपने टैंक पर रहूंगा।
13: जी सर, हम आपके टैंक को खबर देंगे। सर वो देखिए, सामने से दुश्मन के टैंक आ रहे हैं।
9: लगता है उन्होंने हमें देख लिया है। टैंक को आगे बढ़ाओ प्रेमलाल, और जस्ट गन निशाना लगाओ उस तीसरे टैंक पर।
13: यस सर, वो टैंक निशाने पर आ गया है सर।
9: फायर।
13: सर, ये टैंक तो गया।
9: गुड, तो अब निशाना लगाओ उस टैंक पर, बहुत स्पीड में है। जल्दी करो प्रेमलाल, फायर, समय मत गवाओ, फायर।
13: सर, ये टैंक तो गया।
9: गुड, शाबाश शाबाश प्रेमलाल, अब हमें बिना रुके उन दो टैंकों पर फायर करना है। गो एंड सेंड देम टू हेल, फायर।
13: यस सर।
2: उस दिन टैंकों का भीषण युद्ध हुआ जिसमें दुश्मन के 13 टैंक ध्वस्त कर दिए गए, जिसके कारण पाकिस्तानी सेना की आक्रमण करने की क्षमता लगभग समाप्त हो गई और वो चौविंडा छोड़कर चली गई।
1: इस तरह चौविंडा क्षेत्र पर भारत का अधिकार हो गया। अब लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नेतृत्व में सेना बुटूर और डोगरांडी की ओर आगे बढ़ी। और अब समय आ गया था लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के शौर्य के चरम उत्कर्ष का। बुटूर और डोगरांडी के अलावा उन्हें वजीराली और जसोरन क्षेत्र पर भी कब्जा करना था, ताकि पाकिस्तानी सेना को निर्णयात्मक रूप से पराजय दी जा सके।
2: सितंबर 1965 का दिन। उधर पाकिस्तानी सेना भी युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी। जीवन मरण की स्थिति सामने थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर ने अपनी रेजिमेंट के साथ पूरी शक्ति से हमला किया और बहुत बहादुरी से लड़े। उस दिन उन्होंने दुश्मन के 60 पैटर्न टैंकों को ध्वस्त कर दिया। भारत के भी 9 टैंक ध्वस्त हुए।

0: युद्ध अब पूरी तरह से भारत के पक्ष में आ चुका था।
1: कुछ देर युद्ध स्थल पर मानो शांति सी छा गई थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर अपने प्रिय टैंक खुशाब पर खड़े होकर चाय का घूंट ले रहे थे कि तभी
0: पेड़ों की झुरमुट में छिपे पाकिस्तानी सैनिकों ने उनके टैंक पर तोप से आक्रमण किया। इस टैंक पर पाकिस्तानी

0: कर दिया। घातक रूप से आहत होने पर भी उन्होंने अपनी चोटों की चिंता नहीं की। उनके टैंक पर अनेक वार हुए, किंतु वो डटे रहे और केवल 9 टैंक खोकर दुश्मन के 60 टैंक ध्वस्त कर दिए। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर द्वारा प्रदर्शित शौर्य भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप था।
1: लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च युद्ध शौर्य पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कृतज्ञ राष्ट्र का उन्हें शत शत नमन।
2: लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर। अकादमिक समन्वय डॉक्टर राजेंद्र पाल। तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो। कलाकार बावला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर, किशोर साहिजानी और असर नवाज उस्मानी। ध्वनियांकन मयंक कुमार। आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो। निर्देशन विमलेश चौधरी। निर्माण कुसुमलता। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। जी हाँ श्रोताओं, दोपहर के 12 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे सैनिकों के लिए कार्यक्रम।

सैनिक भाइयों जय हिंद। रोजाना की तरह लेकर आ गए हैं हम आप सभी के लिए मनोरंजन के लिए सैनिकों के लिए कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे प्यार किया तो डरना क्या फिल्म के इस गीत के साथ।

0: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: सैनिकों के लिए कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम में अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसे हमने लिया है परदेश फिल्म से। इस गीत को गाया है चित्रा सिंह और शंकर महादेवन ने।

0: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: सैनिकों के लिए कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। सैनिक भाइयों, कार्यक्रम में अब जो गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं उसे हमने लिया है अलका याग्निक और कुमार शानू की आवाजों में। फिल्म है कच्चे धागे।

0: कार्यक्रम घर परिवार सुनने वाली सभी श्रोता बहनों को, सखियों को, आपकी अपने सखी सुमन की प्यार भरी नमस्ते। सभी सखियों का कार्यक्रम में स्वागत है। सखी आज का कार्यक्रम लेकर हाजिर हुई है आपकी जानी पहचानी दोस्त सुमन। तो सखियों कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बहुत सारी बातें, बहुत सारी जानकारियाँ आज हम आपके साथ साझा करेंगे। तो बात करते हैं आज के दिन की। सखियों, आज के दिन को हम मना रहे हैं फुटबॉल दिवस के रूप में। 25 मई यानी आज के दिन को हम मना रहे हैं फुटबॉल दिवस। इसकी शुरुआत 1924 में पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के इतिहास के पहले अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट की याद में की गई थी, जिसमें सभी क्षेत्रों के देशों ने हिस्सा लिया था। सखियों, इस दिन को मनाने का उद्देश्य फुटबॉल के वैश्विक पहुंच, शांति, कूटनीति और खेल भावना को बढ़ावा देना है। ये खेल लैंगिक समानता और सामाजिक समावेश को आगे बढ़ाने का भी एक सशक्त माध्यम है। सखियों, ये खेल दो टीमों के बीच में खेला जाता है। इसमें प्रत्येक टीम के 11 खिलाड़ी होते हैं और मैच की कुल अवधि 90 मिनट रहती है, जिसमें 45-45 मिनट के दो हाफ में बांटा जाता है। और पूरी टीम में गोलकीपर ही एक ऐसा खिलाड़ी होता है जिसे फुटबॉल को अपने हाथों से रोकने की अनुमति होती है। बाकी खिलाड़ियों को अपने सिर, पैर या शरीर के अन्य हिस्से हाथों को छोड़कर गेंद को पास करना और गोल करना होता है। सगे, फुटबॉल के इतिहास की ओर थोड़ा सा रुक करें तो फुटबॉल का जन्म वर्ष 1863 में इंग्लैंड में हुआ था और इंग्लैंड का आधुनिक फुटबॉल का जनक भी माना जाता है। फुटबॉल एक ऐसा खेल है जिसकी लोकप्रियता दुनिया के कोने कोने में देखने को मिलती है। मैदान में दौड़ते खिलाड़ी गेंद को रोकने की कोशिश और गोल करने पर मिलने वाली खुशी को बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं। और फुटबॉल जो है बेहद लोकप्रिय जो है खेल है और ये टीम वर्क, सहयोग और अनुशासन की भावना को बढ़ाता है। तो सुखे कार्यक्रम में हम और भी जानकारियां आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में थोड़ा सा रुकते हैं और आप सभी का करवाते हैं मनोरंजन कार्यक्रम के इस प्यारे से गीत के साथ। तो आप बने रहिए कार्यक्रम घर परिवार के साथ।
1: जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब शस्त्र देना।

0: सोमवार है, आज सोमवार है, तुमको मुझसे प्यार है।
1: सखी, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम आप सुन रही हैं घर परिवार, तो आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। और बात हम फुटबॉल की कर रहे थे सखियो, खेल कोई भी हो खेलना बहुत ज़रूरी होता है। इससे एक तो हमारी एक्सरसाइज होती है और एक खुशी भी मिलती है, मज़ा आता है खेलने का, और खेल खेल में हम अपनी फिटनेस का भी ध्यान रख पाती हैं। और यदि नियमों के अनुसार इसे किया जाए तो शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी इससे ठीक रहता है। और फुटबॉल की तो हमने सबके बात कर ली, अब थोड़ा सा हम खेलों के महत्व के बारे में बात करेंगे कि खेल हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है जो शारीरिक रूप से तो हमें फिट रखता है, साथ ही साथ जैसे हमने अभी बात की कि खेल कोई भी हो शारीरिक और मानसिक रूप से हमें फिट रखता है। और इससे क्या होता है, तनाव भी कम होता है और साथ ही साथ टीम वर्क भी होता है और टीम की भावना भी हम सीखते हैं। सो क्यों नियमित रूप से खेल खेलने से बहुत सारे फायदे हमें होते हैं, सहन शक्ति हमारी बढ़ती है, रक्त संचार बेहतर होता है और इसके साथ साथ एक बढ़िया और अच्छी बात आपको बताऊं, इससे मोटापा भी घटता है। हमारी सखियों को आए दिन ये परेशानी रहती है, थोड़ी सी मोटी हो गई हैं, बड़ा भद्दा लगता है, और अगर हमारी कुछ बहनें ऐसा सोच रही हैं तो भी अपने प्रिय खेल को आप आजमा सकती हैं, अपना सकती हैं। और इससे एक तो हमें फ़ायदा ये होगा, हमारा मोटापा कम होगा और एक मन की खुशी भी हमें मिलती है, और साथ ही साथ मधुमेह और हृदय रोग जैसी कई बीमारियों का भी खतरा जो है कम होता है। सखियो, मानसिक स्वास्थ्य की हम बात कर रहे हैं तो खेलकूद मानसिक तनाव और चिंता को दूर करने में बहुत ही प्रभावी होता है। कोई भी खेल नियमों के बिना नहीं खेला जाता है, इसमें खिलाड़ियों को अनुशासन में रहना सिखाया जाता है और टीम के साथ खेलने से सहयोग तालमेल और नेतृत्व जैसे गुण विकसित होते हैं जो जीवन के हर क्षेत्र में मददगार साबित होते हैं। साथ ही साथ सखियो, खेल हमें सिखाता है कि जीत के साथ हार भी जीवन का हिस्सा है। ये हार को सकारात्मक रूप से स्वीकार करने और अगली बार बेहतर करने की प्रेरणा भी देता है। तो सखियो, खेल में खिलाड़ी विभिन्न संस्कृतियों के लोगों से मिलते हैं जिसमें भाईचारा, दोस्ती और सामाजिक जुड़ाव भी बढ़ता है। खेल हमारे जीवन में अद्वितीय महत्व रखता है और खेल खेलने से हमारा जो है शारीरिक स्वास्थ्य सुधरता है, ऊर्जा से हम भर जाते हैं। तो सखियो, कार्यक्रम में हम और भी जानकारियाँ आपके साथ साझा करेंगे, फिलहाल थोड़ा सा कार्यक्रम में रुकते हैं और लेते हैं एक विराम।
2: आकाशवाणी धर्मशाला के विशेष कार्यक्रम आप और हम आपके विचारों, सुझावों और शिकायतों के लिए समर्पित है।
3: यदि आप आकाशवाणी धर्मशाला के कार्यक्रमों के संबंध में अपनी राय, सुझाव या शिकायत हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या पत्र भी लिख सकते हैं।
2: ईमेल का पता है dharmshala@gmail.com। पत्र भेजने का पता है आकाशवाणी धर्मशाला, कार्यक्रम अनुभाग, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश।
3: आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं और हमें अपने कार्यक्रमों को और भी बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं।
2: तो देर किस बात की, अपने विचार हम तक अवश्य पहुंचाइए,
3: क्योंकि आप और हम में आपकी आवाज, आपके विचार हैं सबसे महत्वपूर्ण।
4: मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
5: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
6: Hey guys, आज तो पार्टी चाहिए।
7: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
8: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
6: पिज़्ज़ा पार्टी, ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
7: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
6: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
7: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: सखी, इस विज्ञापन के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम इस समय आप सुन रही हैं घर परिवार, और मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी सखी सुमन। तो हम आज खेलों के बारे में बात कर रहे हैं। खेल जीवन में बहुत ज़रूरी है। जब हम खेल खेलते हैं तो हमारे शरीर की कसरत होती है, हमारी हड्डियाँ मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं। खेल एक महान सामाजिक संगठन है। जब हम खेल खेलते हैं तो खेलों में हिस्सा लेने से आत्मविश्वास बढ़ता है और व्यक्ति का सामाजिक दायित्व बनता है कि खेल हमें नैतिकता और संयम की महत्वपूर्ण शिक्षा भी प्रदान करता है। जब हम खेल में भाग लेते हैं तो इससे अनुशासन, संयम, नीति मूल्य विकसित होते हैं। इसके साथ साथ खेल मनोरंजन का अच्छा साधन है। यह हमें खुशी देता है और सक्रिय भी रखता है। खेल राष्ट्रीय एकता और भाईचारे को बढ़ावा देता है। इसे खेलने से जो है हम बहुत सारे रोगों से लड़ने की क्षमता जो है बढ़ जाती है। खेलने से हमारी शारीरिक क्षमता बढ़ती है, हमें ताकत मिलती है और साथ ही साथ हमारा मनोबल भी मजबूत होता है और हम स्वयं को चिंताओं से भी दूर रख पाती हैं। खेलने के माध्यम से सखियों संयम, सहनशीलता और कौशल का भी विकास होता है। सामाजिक और आत्मिक विकास में भी सहायता मिलती है, सामाजिक समर्थन भी प्राप्त होता है। खेल हमें सकारात्मक दिशा में ले जाता है और हमें स्वस्थ, सुखी और समृद्ध जीवन जीने में मदद करता है। खेल सके एक महत्वपूर्ण गतिविधि भी है जो हमारे जीवन के हर पहलू पर प्रभाव डालती है। ये हमें जो है एकजुट रखती है, सामाजिक सद्भाव की भावना को बढ़ाती है। अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन विभिन्न देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने में भी मदद करता है। कई बार सखियों हम देखते हैं कि पशु और मनुष्य एक साथ विभिन्न खेलों में भाग लेते हैं, जैसे घुड़सवारी और भी कई ऐसी प्रतियोगिताएँ हैं जिनमें पशु और व्यक्ति जो है एक साथ खेलते हैं। खेल हमें कड़ी मेहनत, समर्पण, दृढ़ता का भी महत्व सिखाते हैं। ये हमें जो है अनुशासन विकसित करना बताते हैं और साथ ही साथ नागरिकों के बीच में राष्ट्रीय गौरव और एकता की भावना को बढ़ावा देने में भी मदद करते हैं। सखियों, खेलों का शक्तिशाली आर्थिक प्रभाव भी होता है। इससे नौकरियां पैदा होती हैं, टिकट बिक्री, माल और प्रयोजन के माध्यम से आय उत्पन्न होती हैं। खेलों का आयोजन सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने और स्वास्थ्य, शिक्षा और लैंगिक समानता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में भी जागरूक करता है। खेल फिटनेस बढ़ाता है। ये पुरानी बीमारियों को रोकने में मदद करता है। मधुमेह प्रबंधन, वजन घटाने, रक्त परिसंरचना और बहुत कुछ हमारे लिए करता है। कई सारे खेल हैं जिसे खेल कर हम फिट रह सकती हैं। अपनी अपनी पसंद के अनुसार सखियों हम अपने जीवन में खेल को महत्व दे सकती हैं। हर किसी का अपना प्रिय खेल होता है। हर सखी ने अपने समय में यानी स्कूल टाइम की बात करें तो कोई ना कोई खेल ज़रूर खेला होगा। अगर नहीं खेला है तो उन्हें ज़रूर पसंद होगा। तो अपनी पसंद के अनुसार आप किसी भी खेल का चुनाव कर सकती हैं। इससे जो है हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और स्वस्थ रहने के लिए हम कुछ भी कर सकती हैं, क्योंकि सखियों अगर शरीर हमारा स्वस्थ होगा तभी तो हम इस प्यारे से जीवन का आनंद ले पाएंगे। और शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो जीवन जीने के लिए बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ता है। तो थोड़ा सा हम कार्यक्रम में रुकते हैं और आप सभी का करवाते हैं मनोरंजन कार्यक्रम के इस प्यारे से गीत के साथ।

सखी इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो हमने खेलों की बात की, खेलों के महत्व के बारे में बात की कि खेल हमारे जीवन में कितने ज़रूरी हैं। और अब हम थोड़ी सी बात आगे की करते हैं और अब हम बात करेंगे लौंग की। सखी, लौंग जो है हम सभी की रसोई घर में आसानी से मिल जाता है, सभी मसालों में इसे डाला जाता है और अपनी सुगंध के लिए ये जाना जाता है। ये जायके को भी बढ़ा देता है और लौंग एक सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई कली है। इसका इस्तेमाल मसालों और औषधि के रूप में किया जाता है, प्राचीन काल से किया भी जा रहा है। इसकी तासीर काफ़ी गर्म होती है, इसे एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगस और दर्द निवारक गुण होते हैं। अक्सर सखी आपने अपने घरों पर देखा होगा, क्योंकि हमारी दादी नानी यही सिखाती थी कि दांत में दर्द होने पर लौंग या इसका तेल जो है बहुत ही फायदेमंद रहता था। लौंग को जहाँ पे दर्द होती थी वहाँ पर दबा लिया जाता था, जिससे कि धीरे धीरे वो उसका जो है रस निकलता था, हमारे दांत में लगता था और उससे हमारे दर्द ठीक हो जाता था। और साथ ही साथ बहुत सारे लोग जो है लौंग का तेल भी अपने घरों पर रखते हैं। अचानक से अगर किसी के दांत में दर्द हो जाए तो थोड़ा सा उसे कॉटन में लगा कर अपने दांत में रखा जाता था ताकि दर्द से राहत मिल जाए। ये पेट के गैस, अपच, एसिडिटी को दूर करता है और साथ ही साथ पाचन तंत्र को भी मजबूत करता है। तो सुखे, कितने सारे फायदे छोटे से लौंग में है। दिखने में बहुत छोटा होता है लेकिन गुणों में बहुत ही फायदेमंद होता है। खांसी, जुकाम या हल्के बुखार में रात को लौंग का काढ़ा पीने या चाय में डालकर पीने से बुखार में राहत मिलती है। सर्दियों में अक्सर जब बहुत ठंड लगती है तो अदरक और लौंग डालकर चाय बनाई जाती है और पी जाती है, जिससे हमें सर्दी में थोड़ा सा आराम मिलता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी ये बढ़ा देता है। सखी, लौंग को न केवल भारतीय मसाले में बल्कि अपने लिए खास जगह बनाई है। ये धार्मिक पूजा और अनुष्ठान में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इसकी सुगंध खाने की महक बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कहीं किसी ने तड़के में इसे डाला हो तो दूसरे घर तक भी इसकी सुगंध आती है। और जायके की बात करें तो लाजवाब जायका इसका होता है। इसके पौष्टिक गुण सेहत में सुधार करते हैं। इसे दांत तथा मुंह के लिए उपयोगी माना जाता है। बहुत सारे दांत के मंजन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हमारे बहुत सारे सखियां जो है कोलगेट के साथ साथ मंजन का भी इस्तेमाल करती होंगी, तो उन्होंने उसके स्वाद से ही थोड़ा सा फील हो जाता है कि इसमें लौंग ज़रूर डाला गया होगा और वो भी हमारे दांतों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। और रसोई के सखियों डिब्बों की बात करें तो लौंग के बिना हमारी रसोई घर अधूरी है और हर घर में लौंग का इस्तेमाल होता है। इसमें चाय का मसाला, गरम मसाला, बिरयानी मसाला और हाँ चाट मसाला, इसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। लौंग में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं और लौंग का सेवन जोड़ों की दर्द से भी राहत दिलाता है। हमारी बहुत सारी सखियों को इस पर तरह की कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो वो लौंग का इस्तेमाल कर सकती हैं। शर्त ये है कि आजकल गर्मियों के दिन हैं तो थोड़ा कम किया जाए तो फ़ायदेमंद रहता है, और सर्दियां आने पर इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं ताकि हमारी सेहत जो है बरकरार रहे। तो सखियों, घड़ी की सुइयाँ अब हमें ये बता रही है कि खान पान का समय हो गया है। तो खान पान में आज हम स्वादिष्ट सी, ठंडी सी, मीठी सी चीज़ बनाने जा रहे हैं। नाम जल्दी से बता देते हैं क्योंकि हमारी सखियों को थोड़ा सा सस्पेंस हो गया होगा, थोड़ा सा सोच रही होंगी कि आज हमारी सखी क्या चीज़ बताने वाली है। तो सखियों, आज हम बनाएंगे शाही टुकड़ा। बहुत लाजवाब होता है, बहुत जल्दी जल्दी बन जाता है। ये हैदराबादी मिठाई है। ये पारंपरिक तरीके से बनाने के लिए ब्रेड को घी में तला जाता है। सबसे पहले हमने क्या करना है, ब्रेड लेना है, उसे त्रिकोणा या फिर चौरस भी हम काट सकती हैं और फिर इसे हमें तेल में फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद सुनहरा होने पर इसे निकाल लेना है। अब गैस पर पैन रख देना है। इसमें हम अपने आवश्यकता के अनुसार, अगर दो लोग हैं तो आधा किलो दूध हमें काफ़ी होगा, उसे उबलने के लिए डाल दें। इसमें चीनी डालें ताकि ये मतलब तैयार हो जाए, चीनी इसमें घुल जाए यानी पक जाए। अब कस्टर्ड लें, कस्टर्ड को किसी बर्तन में डालें और छोटे से बर्तन में डालें, जैसे गिलास में डालें, किसी कटोरी में डालें, कस्टर्ड पाउडर डालें, ऊपर से थोड़ा सा दूध डालें, अच्छे से उसे फेंट लें ताकि उसमें लम्स ना रहे। अब जो दूध आपने गैस पर रखा है उसमें उसे जल्दी से मिक्स कर दें। अगर आपके पास कस्टर्ड नहीं है तो उसका भी हमारे पास इलाज सकी है, वो जल्दी से आपको बता देते हैं। कॉर्न स्टार्च आपके पास है तो 2 चम्मच कॉर्न स्टार्च, और वनीला एसेंस है तो
वो भी आप डाल सकती हैं, कलर डालकर इसे बना सकती हैं। अब एक बाउल में दूध डालें, फिर ब्रेड को जो हमने फ्राई करके रखी है उसे उसके बीच में डाल दें, और ऊपर से जो दूध हमने बनाया है, तैयार किया है चीनी डालकर, उसे उसके ऊपर सर्व कर दे, डाल दें। आप इस तरह से डालें कि आपकी ब्रेड जो है पूरी डिप ना हो, और ऊपर से आप काजू बादाम के साथ सर्व करें, और फ्रिज में रखकर ठंडी ठंडी करके खाएं, क्योंकि गर्मियों के दिन है, ठंडी ठंडी चीज़ें हम सभी को पसंद होती हैं और खाने में भी अच्छी लगती हैं। तो सुखिए आप करें बनाने की तैयारी, और चलते चलते हम आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अंतिम प्यारा सा गीत।

सखी इसी गीत के साथ अनुमति दीजिए कार्यक्रम समाप्त करने की। इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है जितेंद्र पाल सिंह और तकनीकी सहयोग दिया है विकास पठानिया ने। प्यारी सखियों नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम घर परिवार FM बैंड 103.4 MHz पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। दोपहर का 1 बजने को है अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा कि ये खेदजनक है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी NTA ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा है। न्यायाधीश PM नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए जांच एजेंसी की जगह किसी सशक्त और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि बार बार पेपर लीक होने से 22 लाख से ज्यादा छात्रों के अधिकारों पर असर पड़ा है। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट UG परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। NTA ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण ये निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी NTA की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये तारीख बढ़ाई गई थी। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री

0: अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
1: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने वाली पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी हित के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के क्वाड समूह का प्रमुख उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता कायम करना है। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में अब पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस मैसेज का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भारत के समर्थन के संबंध में बयान दिया है। सरकार ने नागरिकों को ऐसी भ्रामक जानकारियों से सावधान रहने की सलाह दी है। इस संबंध में केवल सरकारी सूत्रों पर ही विश्वास करने को कहा गया है। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में कल दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1.1% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 845 अंक की वृद्धि के साथ 76,260 जबकि निफ्टी 244 अंक बढ़कर 23,964 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. President Draupadi Murmu will present the Padma Awards at Rashtrapati Bhavan this evening. Padma Awards, one of the highest civilian awards of the country, are conferred in 3 categories: Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri. In the first round of the civil investiture ceremony of 2026 today, the President will confer 66 Padma Awards, including 2 Padma Vibhushan, 6 Padma Bhushan and 58 Padma Shri. The remaining Padma Awards will be given in the second round of the civil investiture ceremony to be held later. The Supreme Court today expressed concern over repeated lapses in the conduct of the NEET examination, saying it was sad that the National Testing Agency, NTA, had not learnt any lesson from the earlier paper leak controversy. A bench of Justices P.S. Narasimha and Alok Aradhe sought responses from the Centre, the NTA and the CBI on petitions demanding replacement of the testing agency with a more robust and autonomous body to conduct the medical entrance examination. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar has said India and the United States have a strong interest in combating terrorism in all its forms and manifestations. Addressing the gathering at the 250th Independence Day celebrations of the United States in New Delhi yesterday, Dr. Jayashankar said India and the US must always be clear about zero tolerance for terrorism.
3: We must always be clear about zero tolerance for terrorism. And that is why our counter-terrorism cooperation is so important. The people-to-people connect has also been a very special characteristic of our relationship. It has helped build political understanding between our two nations and remains a living bridge.
2: The Quad Foreign Ministers meeting will be held in New Delhi tomorrow. Foreign Minister of Australia Penny Wong, Foreign Minister of Japan Toshimitsu Motegi, and Secretary of State of the United States Marco Rubio will participate in the meeting. External Affairs Minister S. Jaishankar will preside over the meeting. The External Affairs Ministry said leaders will exchange views on advancing Quad cooperation across priority areas, review progress on ongoing initiatives, and other international issues of mutual concern. The Quad, comprising India, the US, Australia and Japan, has emerged as a key grouping largely focusing on peace, security and stability in the Indo-Pacific region. India is hosting the meeting in its capacity as the current chair of the coalition. Millions of pilgrims from across the world, including India, are converging at Mina in Saudi Arabia as the annual five-day Hajj pilgrimage began today amidst regional tension in West Asia. The pilgrims began their journey from the holy city of Mecca to assemble in the tent city of Mina. Nearly 1,75,000 pilgrims from India are participating in this year's Hajj pilgrimage. Earlier, Minority Affairs Minister Kiran Rijiju reiterated the government's commitment to ensuring a smooth, safe and comfortable Hajj experience. With the Hajj Suvidha mobile app, information and grievance reporting services are being provided to Indian pilgrims. In IPL cricket, Delhi Capitals defeated Kolkata Knight Riders by 40 runs in Kolkata last night. Delhi Capitals set a target of 204 runs for Kolkata Knight Riders. In reply, Kolkata Knight Riders scored only 163 runs in 18.4 overs. Kuldeep Yadav was declared player of the match. Earlier in the day, in another fixture, Rajasthan Royals defeated hosts Mumbai Indians by 30 runs at Wankhede Stadium. Put into bat, Rajasthan Royals posted 205 runs for the loss of 8 wickets in the stipulated 20 overs. In reply, chasing a target of 206 runs, Mumbai Indians managed to score 175 runs for the loss of 9 wickets in their allotted 20 overs. The India Meteorological Department has issued an orange alert for heat wave conditions today in parts of Delhi, Haryana, Chandigarh and Punjab. Parts of Rajasthan, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, coastal Andhra Pradesh, Jharkhand, Odisha and Telangana are also likely to witness severe heat wave conditions during the day. Benchmark domestic equity indices were trading around 1.1% higher in afternoon trade today amid hopes of a possible agreement to end the US-Iran conflict. The Sensex surged 845 points to 76,260, while the Nifty climbed 244 points to 23,964 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
4: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। अब आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।

हम सुन रहे थे शोर फिल्म से यह गीत, लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों की आवाज़ में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। और हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि इसके गीतकार कौन हैं, तो हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। एक ने लिखा कि इस गाने के गीतकार हैं संतोष आनंद, जो इतने आनंद से गाने लिखते हैं कि श्रोता को संतोष हो जाता है सुनकर। बिल्कुल सही बात है। हमारे दूसरे श्रोताओं ने भी इसका उत्तर दिया है और कई लोगों की इबारत में जो उन्होंने गीत पसंद किए थे वह उन गीतों में से एक है। और हमारे श्रोता ने लिखा है संतोष आनंद जी जो बहुत कम में ही संतुष्ट हो जाया करते हैं। बिल्कुल सही बात है। इसके साथ ही हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि ये गीत उनका फेवरेट गीत है, तो हमें बहुत खुशी है। इसके साथ ही हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि उनके पसंदीदा गीतों में से यह गीत है और जब भी सुनते हैं तो उनकी आंखों में से आंसू बहने लगते हैं। जीवन की सच्चाई यही है और सच्चाई के साथ अगर अश्रुधारा आती है तो उसमें कोई गलत बात नहीं होगी। और इसके साथ ही हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि ये जो गीत हैं ये बड़े खूबसूरत से हैं और इन गीतों में से उन्होंने कई सारे गीत पसंद किए, पर हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि संतोष आनंद जो गीतकार हैं ये हमारे पास के ही पिलखुआ कस्बे के रहने वाले हैं और व्यक्तिगत रूप से मिल चुके हैं ये उनसे और बहुत सज्जन व्यक्ति हैं। कितनी अच्छी बात है ना, आप सब एक अच्छे महान व्यक्तित्व से मिल पाते हैं। हमारे श्रोता ने लिखा कि उन्हें बहुत सारे गीत पसंद हैं और ज़िंदगी की फ़िलासफ़ी की व्याख्या करता है ये गीत। लगभग सभी गीतों की महफिल की जान होती है। ये गीत बहुत खूबसूरत है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बहुत अच्छा संगीत दिया है इस गीत को। और हमने आपसे पूछा कि आपके पसंदीदा गीत कौन है, तो अपने पसंदीदा गीतों की लिस्ट आप डालते जाइए, शायद कभी कहीं किसी रोज़ हम आपके गीत भजवा सकें। और हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं इन फिल्मों के हिसाब से। मैं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत पढ़कर आज संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के गीत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो आज महान संगीतकार जोड़ी के लक्ष्मीकांत जी की पुण्यतिथि भी है। आज भी इस महान संगीतकार का संगीत हमारे मन मस्तिष्क पर छाया हुआ है। बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है। इसके साथ ही हमारे श्रोता इस इबारत को पढ़कर बहुत खुश हो गए और उन्होंने लिखा कि वह सुनने वाले नहीं थे लेकिन उन्हें इबारत पढ़कर लगा कि क्यों नहीं सुन लिया जाए, प्रोग्राम सुनो तो परेशानी कम हो जाएगी। देखिए, संगीत और रेडियो जो है वो आपके जीवन की कई सारी चिंताओं को दूर कर सकता है, तो सुनते रहिए। हमारे श्रोता ने बहुत अच्छी कविता बनाई है कि आसमां में छा गए बादल तो मौसम का मिजाज बदल दो, कागज़ कलम उठाओ अपनी मोहब्बत का इजहार कर दो, शायर नहीं तुम जादूगर हो, शब्दों का जादुई संसार बुन दो, जिंदगी का गीत गुनगुना लो, प्यार का नगमा लिख दो, हवा के झोंके के साथ बहार आई है, आंखों से दिल की बात कह दो। और जब इतनी अच्छी बात कही है तो अगला गीत सुनवाना बनता है और अगले गीत को हम आपको सुनवा रहे हैं। बस इतना बताइएगा ये जो अगला गीत आप तक आ रहा है, इस अगले गीत के गायक कलाकार कौन है। और बहुत खूबसूरत सा गीत है और बस बताती रहिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का पसंदीदा गीत कौन सा है आपका। लेकिन इसके साथ आपको एक चीज़ और बतानी है कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की पहली फिल्म, जो संगीत की यात्रा शुरू की उसकी पहली फिल्म कौन सी है, बताइएगा जल्दी से। पहली फिल्म का नाम बता दीजिए जो उन्होंने पहली फिल्म बनाई है और साथ ही इस गीत के गायक कलाकार।

हम सुन रहे थे ये गीत दाग फिल्म से साहिर लुधियानवी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। और हमने आपसे पूछा कि इस गीत को गाया किसने है, तो हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि फिल्म दाग का ये गीत है जो सही लिखा है राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया है। गायक हैं आभास कुमार गांगुली, आभास कुमार गांगुली मतलब किशोर कुमार। और इसके साथ ही हमारे श्रोताओं से हमने एक प्रश्न और पूछा था कि उनकी पहली फिल्म कौन सी है, तो हमारे श्रोता लिखते हैं कि एलपी की पहली फिल्म पारसमणि 1963 की, इसी से उन्होंने डेब्यू किया था। जी बाबू भाई मिस्त्री की ये फिल्म जिसने उनके जीवन के इस संगीतमय जीवन की इस करियर की शुरुआत की थी। और उसके साथ ही जो हमने आपसे दूसरा प्रश्न पूछा उसका उत्तर आप सभी ने बहुत सटीकता से बहुत अच्छे से दिया, उसके लिए धन्यवाद। और हमारे श्रोता बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखकर हमें भेजा करते हैं, तो हमारे एक श्रोता ने बड़ी अच्छी बात लिखी है कि मौसम हमें नई परिभाषा चुनने का सुख देता है। बदलते मौसम के साथ मन की गांठें बदलती हैं, खुलती रहती हैं। बर्फीली झील पर कोई बादल सरक कर पूरे वजूद पर छा जाता है तो लगता है खत लिखूं, मगर कागज़ कलम हाथ में आते ही सब भुला जाता है। जीवन का सार बस इतना ही है कि यह प्यार का नगमा है। जीवन का सच्चा सुख छोटी छोटी बातों में है, एक मुस्कान, शांति का पल और प्रियजनों का साथ। कितनी अच्छी बात आपने लिखी है ना, और ऐसा ही साथ हम सबका बना रहे ये प्रार्थना भी हम ईश्वर से करते हैं। हम आपको अगला गीत सुनवाने जा रहे हैं, और इस गीत को सुनवाते सुनवाते बस एक प्रश्न मन में आता है कि एक और गाना, यानी ये गीत नहीं है वह, लेकिन एक गीत है जो लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने अपने गुरु को समर्पित किया है, उसमें उन्होंने अपने उन गुरु का नाम भी लिया है, तो ज़रा याद करें और बताएं कि कौन सा गीत था और किस गुरु के लिए वो समर्पित किया गया, ज़रूर से बताइएगा। और ये जो अगला गीत है आप सुनिए और बताइएगा कि ये आवाज़ कौन सी है। अगर आप गायक को पहचान पा रहे हैं तो गायक को पहचानिए भी। और दूसरा प्रश्न एक और हमने आपके साथ रखा है, वो बताइए कि ऐसा कौन सा गीत है जो उन्होंने अपने गुरु को समर्पित किया और उन गुरु का नाम क्या है।

हम सुन रहे थे बॉबी फिल्म का ये गीत, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा हुआ। और हमने कहा था कि अगर आप गायक की आवाज़ को पहचान लें तो हमें ज़रूर बताएं। तो आपने गायक कलाकार की आवाज़ को पहचाना और बिल्कुल सही उत्तर दिया कि ये जो गायक कलाकार हैं वो शैलेंद्र सिंह हैं। बिल्कुल सही आपने पहचाना। और इसके साथ ही हमने आपसे एक और प्रश्न पूछा था कि एक गुरु को एक समर्पण दिया गया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के द्वारा, जिनका नाम उन्होंने एक गीत में प्रयोग किया, तो वो गीत कौन सा है? तो हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही पहचाना कि लक्ष्मीकांत प्यारे जी के गुरु का नाम एंथनी गोंसाल्विस है, जिसका जिक्र अमर अकबर एंथनी फिल्म में माय नेम इज़ एंथनी गोंसाल्विस इस गीत के साथ हुआ है। ये बात हमारे श्रोताओं ने पहचानी है और आपकी इस पहचान के लिए बहुत अच्छा लग रहा है कि आपका ज्ञान इतना अच्छा है। और हमारे श्रोता बड़ा दुख लिख रहे हैं कि इंसान को गर्म किसी भी मौसम में चैन नहीं है। गर्मी में हाय, बरसात हो तो बहुत बारिश हुई है और ठंड हो तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो देखिए असर तो पड़ता ही है हमारे ऊपर। तो हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं और उन्होंने इस बात को लिखते हुए बताया है कि एंथनी गोंसाल्विस जो हैं वो उनके वायलिन के गुरु रहे हैं, प्यारे लाल के वायलिन गुरु एंथनी गोंसाल्विस, जो 50-60 के दशक में वो इंडिया के फेमस म्यूज़िक अरेंजर थे और हर वाद्य यंत्र बजाते थे। जब अमर अकबर एंथनी के गाने के बोल लिखे जा रहे थे तो प्यारे लाल जी ने अपने गुरु को ट्रिब्यूट देने के लिए ये गाने के बोल में एंथनी गोंसाल्विस नाम डलवा दिया। कितनी बढ़िया बात है कि कोई अपने गुरु को कितना प्यार कर सकता है, और यही बात यहाँ पर आई है और इतनी खूबसूरती के साथ आप सबने सजाया है। और अब हमारी इबारत को लेकर हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि बदलते मौसम का प्रियतम की याद आना प्रवास जनित विरह या ऋतु विरह है, जहाँ प्रकृति का परिवर्तन प्रेमियों के हृदय में छिपी उत्कंठा को और अधिक तीव्र कर देता है। इसे ऐसे भी समझा जाना चाहिए कि ऋतु परिवर्तन उस शाश्वत मिलन की तड़प को और बढ़ा देता है। विरह की पीड़ा प्रेम की पूर्णता और गहराई का प्रमाण बन जाता है। बहुत अच्छी बात लिखी है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं, मौसम का मिजाज जब बेईमान हो जाए तो आसमान में बादल भी मोहब्बत का इजहार करते प्रतीत होते हैं। खिड़की से आती हवा का झोंका और कागज़ कलम को छूता है और दिल अपने आप प्यार का नगमा लिखने लगता है। फिजा की मैं ऐसी मिठास घुल जाती है कि चुप गए सारे नज़ारे भी सितारों के आंगन में अपनी चमक बिखेरने लगते हैं। उस पल में प्रकृति प्रेम और एहसास मिलकर जीवन को एक सुंदर कविता बना देते हैं। कितनी अच्छी बातें आप लिखते हैं। और इन्हीं अच्छी बातों के बीच में मैं आपको अगला गीत सौंपना चाहती हूँ। अगला गीत बड़ा प्यारा सा है। आप उस क्रम को मत तोड़िए जो मैंने आपको शुरुआत में दिया था कि आपका लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का पसंदीदा गीत कौन है, कौन सा है, आप ज़रूर हमें बताइए, क्योंकि ये गीत जो हैं वो दिल को छूते हैं। अब मैं अगला गीत आपको सौंप रही हूँ। इस गीत के साथ में भी दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि ये जो गीत है, इस गीत को किस फिल्म से लिया गया है? जो गीत आप सुनने वाले हैं उसकी फिल्म का नाम बता दीजिएगा। और अब दूसरा प्रश्न है कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को कितने फिल्मफेयर अवार्ड मिले हैं, कितने फिल्मफेयर अवार्ड उन्होंने जीते हैं संगीतकार के रूप में, बेस्ट संगीतकार के रूप में कितने मिले हैं, जल्दी से बताइएगा। और ये भी बताइए कि इस गीत के फिल्म का नाम क्या है।

0: हम सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये सुंदर सा नगमा, जिसे लिखा आनंद बख्शी ने और संगीतबद्ध किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आज हम याद कर रहे हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को उनके गीतों के साथ में, और हमने दो प्रश्न आपसे पूछे थे। पहला प्रश्न था कि ये जो गीत है वो किस फिल्म से है, तो आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया, लोफर फिल्म से है। और आप सब इस गीत को पसंद करते हैं ये सुनकर भी बड़ा अच्छा लगा। पर हमने एक और प्रश्न आपसे पूछा था, दूसरा प्रश्न ये था कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को संगीतकार के रूप में कितनी बार फिल्मफेयर अवार्ड मिले, तो हमारे श्रोताओं ने उत्तर दिया 7 बार। और बहुत अच्छे से, बहुत तरीके से आपने हमें उत्तर दिए हैं। जैसे आपने हमें बताया कि 1964 में पारसमणि फिल्म के लिए, 1968 में मिलन के लिए, 1970 में जीने की राह के लिए, 1978 में अमर अकबर एंथनी के लिए, 1979 में सरगम के लिए, और 1979 में सत्यम शिवम सुंदरम के लिए, सरगम के लिए, 81 में कर्ज के लिए, कई सारी फिल्मों के लिए उन्हें अवार्ड मिले। हालांकि 25 बार नॉमिनेट हुए और जीते 7 बार, ये भी अपने आप में बड़ा रिकॉर्ड है। एक और प्रश्न मेरा आपसे था अगला गीत सौंपने के पहले, लेकिन हम चाहते हैं कि हम पहले ये संदेश जो है वो सुन लें और उसके बाद वापस जुड़ें इस धारा के साथ।
1: कहिए सुनिए एक खुशखबरी,
2: कहिए ना,
1: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने। विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सुरीला सफ़र और इसी सफ़र में हम यात्रा कर रहे हैं बहुत सुंदर नगमों के साथ। और उन्हीं नगमों में हमारे श्रोताओं ने बड़ी अच्छी अच्छी इबारतें लिखी हैं। जैसे हमारे एक श्रोता लिखते हैं, आया मौसम सुहाना रे, ठंडी ठंडी हवा का तराना रे, कभी धूप कभी बारिश आई, प्रकृति ने सुंदर छटा सजाई, पेड़ पौधे झूमे प्यारे, मौसम लगे सबसे न्यारे। और ये बात लिखने के बाद उन्होंने बड़ी प्यारी सी मौसम के बारे में जानकारी दी, उसके लिए भी बहुत धन्यवाद। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि सुरीली प्रस्तुति, सुरीले गीतों से श्रोताओं को बाहर तेज धूप के बावजूद हमें मौसम का मिजाज जरूर बदला लग रहा है, ठंडक महसूस हो रही है। जी, हमारे एक श्रोता ने बहुत अच्छी जानकारी भेजी है कि आज के फनकार कार्यक्रम में मैंने सुना कि लक्ष्मीकांत जी का जन्म लक्ष्मी पूजन के दिन हुआ था, इसीलिए परिवार वालों ने उनका नाम लक्ष्मीकांत रख दिया। आज आपने सुबह आज के फनकार सुना, ऐसे ही एक और कार्यक्रम है 7:45 पर आएगा स्मृतियों के स्वर। भूतपूर्व कार्यक्रम अधिशासी लवेश कुमार परमार से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का ये दूसरा भाग है। आज शाम को 7:45 पर ज़रूर सुनिएगा स्मृतियों के स्वर। और आप जो विविध भारती के साथ जुड़े हुए हैं, सुरीला सफ़र सुन रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे उत्तर दे रहे हैं, तो इन्हीं उत्तरों और प्रश्नों के बीच में मेरे मन में एक और प्रश्न आया कि आप बता सकते हैं क्या कि जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हैं उन्होंने सबसे अधिक गीत किससे गवाए हैं, यानी कौन सा गायक था जिन्होंने सबसे ज़्यादा गीत गाए हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए। आप ज़रूर बताइएगा, इस प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं पता, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, तो ज़रूर से बताइएगा। और अगला गीत हम आपको सौंप रहे हैं, तो बता दीजिए कि इस ये जो गीत है ये किसने लिखा है, यानी गीतकार कौन है। दोनों प्रश्नों के उत्तर जल्दी दीजिए और सुनिए ये गीत।

पूछा था कि इस गीत के गीतकार कौन हैं, तो आप सभी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया कि आनंद बख्शी हैं। और इसके साथ ही हमने आपसे एक और प्रश्न पूछा था कि सबसे अधिक गीत किसने, यानी किसने, किस गायक या गायिका ने उनके लिए गाए हैं। तो हमारे श्रोताओं ने अंदाज़ा लगाया है कि कोई कह रहा है कि लता मंगेशकर ने ज़्यादा गाए हैं और कोई कह रहा है मोहम्मद रफ़ी ने ज़्यादा गाए हैं। तो आप भी विचार कीजिए, इस बात पर विचार करते रहिए, ज़रूर से ढूंढिएगा किसने सबसे ज़्यादा गाने गाए हैं। हालांकि ऐसा कहते हैं कि लता मंगेशकर ने सबसे ज़्यादा 700 से अधिक गाने गाए हैं उनके लिए, ऐसा कहा जाता है। पर फिर भी आप भी खोजिएगा इस प्रश्न का उत्तर, क्योंकि ये प्रश्न है तो प्रश्न तो रहना ही है, जीवन में ये प्रश्न रहना चाहिए ताकि आप उसका उत्तर ढूंढ सकें। ऐसा भी कहते हैं कि लता मंगेशकर ने लगभग 712 गाने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए गाए, बहुत अच्छी बात है। और अब ये जो गाने और इन सब की जो बात है, इन सब के साथ में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जो हैं उनके साथ में, यानी दोनों ने साथ में आखिरी कौन सी फिल्म थी जिसके लिए संगीत दिया था, ज़रूर से बताइएगा। लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल की साथ में आखिरी फिल्म जिसके लिए उन्होंने संगीत दिया था, इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। और अगला गीत जो है उसके गायक कलाकारों के नाम बता दीजिए और सुनिए ये गीत। अगले गायक कलाकारों के नाम बताना है और साथ में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की आखिरी फिल्म जो साथ में उन्होंने की थी, ज़रूर से बताइएगा।

हमारे श्रोताओं ने इस गीत को लेकर बहुत सारे उत्तर दिए हैं और लिखा है कि दो रास्ते फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि काजल लगाए दिन में रात हो गई ये तो बजना ही था, फिल्म दो रास्ते का युगल गीत जिसके बाजार में आने पर तहलका मच गया था। बिल्कुल सही बात है। और हमारा एक श्रोता लिख रहा है, एक लड़का मुझे देखकर ये गाना गा रहा था, मेरी शादी हो गई, उसके दोनों बच्चे भी हो गए, 1994 की बात है, आज बरबस याद आ गई और हंसी भी आ गई, साथ में आपके पति देव भी मुस्कुरा रहे हैं। ये छोटी छोटी बातें ही हमारे परिवार को कितना खूबसूरत है, एक बहुत प्यारा सा समय देते हैं। और हमने आपसे एक प्रश्न और पूछा था कि ऐसी कौन सी फिल्म है जो अंतिम फिल्म है दोनों के साथ में, तो हमारे श्रोता ने लिखा है कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की अंतिम फिल्म मेरी बीबी का जवाब नहीं 2004 में आई थी, जो लक्ष्मीकांत के 1998 में निधन के बाद 6 साल बाद रिलीज हुई। यह फिल्म काफ़ी समय से अटकी हुई थी और इसमें प्यारेलाल ने संगीत संयोजन पूरा किया। बिल्कुल सही उत्तर आप दे रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे बात करके। आज हमारे बहुत कम कमेंट्स पड़े जा रहे हैं, ऐसा भी हमारे श्रोता ने शिकायत की, उसके लिए भी हम क्षमा चाहते हैं क्योंकि आज हमने आपसे प्रश्न पूछे हैं, कमेंट लिए ही नहीं, आपने लिखे भी नहीं। तो चलिए हम अब चल रहे हैं आज के अंतिम गीत की तरफ। आप सब ने अपना पसंदीदा गीत बताया था और हम अपना पसंदीदा गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं। ये गीत बहुत प्यारा सा है और ये गीत हमने लिया है जीवन मृत्यु फिल्म से। मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर की आवाज़ें हैं, आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

और इसी के साथ कार्यक्रम सुरीला सफर यहीं समाप्त होता है, पर उसके पहले हमारे श्रोता ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि हम सब मानवीय जीव जंतु, समुद्री प्रजातियां, पेड़ पौधे सब कुदरत के गुलाम हैं। हमें कुदरत के नियमों का पालन करना चाहिए, गर्मी ठंड बारिश इन सब का ध्यान रखना चाहिए और जो कुछ कुदरत दे रही है उसका हंसते हुए स्वीकार करना चाहिए। और इसके साथ ही हमारे सभी साथियों का भी यानी सभी प्राणियों की मदद भी करनी चाहिए। तो आप सबका जीवन मंगलमय हो, कल्याण हो, जीवन में शांति हो, सुकून हो, ये प्रार्थना करती हूँ और आज्ञा लेती हूँ कार्यक्रम सुरीला सफर से। नमस्कार।

दोस्तों, ये वो समय है जब परीक्षाओं के नतीजे आने लगते हैं। कुछ लोगों का जश्न होता है, कुछ का दिल जलता है। उनके नंबर मन के मुताबिक नहीं होते और उनका दिल टूट जाता है। अफसोस है कि हमारे यहाँ बच्चों पर सबसे ज्यादा अंक लाने का दबाव इतना ज्यादा होता है कि बच्चे रेस में दौड़ने वाले घोड़े की मानिंद बन जाते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो जरा रुकिए और बच्चों के साथ बैठ कर रिजल्ट डिस्कस कीजिए। उन्हें बताइए कि परीक्षा के परिणाम जीने मरने का सवाल नहीं बन सकते।

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है।

दोस्तों, जैसा कि हमने आपको समझाया, परीक्षाओं के परिणाम जीने मरने का सवाल नहीं बन सकते। ये सच है कि 12वीं में अगर अच्छे नंबर आते हैं तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन होने में आसानी रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ 12वीं के नतीजों के आधार पर लोगों का करियर डिसाइड हो जाता है और उनकी ज़िंदगी का फैसला हो जाता है। बच्चे की अपनी काबिलियत होती है, उसकी अपनी एक क्षमता होती है और उसके आधार पर वो अपना प्रदर्शन करता है। किसी भी बच्चे की तुलना किसी दूसरे बच्चे के साथ कतई नहीं की जानी चाहिए। ये मानना चाहिए कि हमारे बच्चे की अपनी एक यात्रा है और दूसरे बच्चों की अपनी अलग यात्रा है। किसी का किसी से कोई मुकाबला नहीं हो सकता। बच्चों की पढ़ाई में विषयों का निर्धारण भी उनकी दिलचस्पी के आधार पर ही होना चाहिए, न कि दुनिया में क्या चल रहा है या दूसरे बच्चे ने कौन सा विषय लिया है, इसके आधार पर इस बात का निर्णय किया जाए। अगर आप बच्चों को दबाव डालकर कोई विषय दिलवा देते हैं तो मुमकिन है कि इसका असर उसके प्रदर्शन पर पड़ेगा और हो सकता है कि आपके इस्तेमाल से उसकी जिंदगी बेकार हो जाए।

दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे कहा कि बच्चों को पढ़ाई के लिए जब विषय चुनने होते हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि उनकी दिलचस्पी क्या है, न कि दबाव डालकर उनकी रुचि के उलट विषय आपको उन्हें सिलेक्ट करवा देना चाहिए। अब हम जिस दौर में जी रहे हैं वहाँ डॉक्टर, इंजीनियर या सरकारी अधिकारी जैसे नाम मात्र के विकल्प नहीं रह गए हैं, बल्कि बच्चों के सामने तरह तरह के क्षेत्र हैं और कोई भी बच्चा अपने मन चाहे क्षेत्र में जाकर बड़ी कामयाबी हासिल कर सकता है। पर सवाल ये है कि उसके भीतर उस विषय की दिलचस्पी हो, कुछ करने का मादा हो, दुनिया को ये दिखा देने की जीत हो कि उसके भीतर प्रतिभा है और वो लीक से हटकर काम कर सकता है। माता पिता को अपने बच्चों के साथ बैठकर मिलकर डिस्कस करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए और उन्हें अपने मन पसंद क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ। आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
1: वंदे मातरम सुजला।
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
1: शस्य श्यामला मातरम वंदे।
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 2:15 होने वाले हैं, थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्र, एनटीए और सीबीआई से जवाब मांगा। कहा एजेंसियों ने पहले के पेपर लीक मामलों से अब तक कोई सबक नहीं सीखा। असम में विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया गया। मौसम विभाग ने अगले 3 के लिए दिल्ली में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया। हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में लू चलने की संभावना। और नॉर्वे शतरंज 2026 टूर्नामेंट आज शाम ओस्लो में शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
2: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म और आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेता के जीवन और कृतित्व की जानकारी दी जाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा कि ये खेदजनक है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनटीए ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा। एक रिपोर्ट।
3: न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जगह किसी सशक्त और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि बार बार पेपर लीक होने से 22 लाख से अधिक विद्यार्थियों के अधिकारों पर असर पड़ा है। इस महीने की 3 को आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में पुणे निवासी भौतिकी विषय के लेक्चरर मनीषा संजय हवलदार को 6 के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है। एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12 की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये तारीख बढ़ाई गई थी। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। असम सरकार ने आज विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाना और लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण करना अनिवार्य है। विधेयक में ये प्रावधान है कि ये असम में रहने वाली किसी भी अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होगा। विवाह के लिए विधेयक में पुरुषों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई है और बहुविवाह पर रोक लगाई गई है। कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए विधेयक में विवाह और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य करने का प्रस्ताव है, जो जीवन साथियों के लिए भरण पोषण, विरासत और अन्य कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। राज्य के कैबिनेट मंत्री अतुल बोरा ने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा की ओर से सदन में समान नागरिक संहिता असम विधेयक 2026 पेश किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर देश को कमजोर करने का आरोप लगाया। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि सरकार स्थिर और मजबूत है। उन्होंने कहा कि ऐसे वैश्विक संकट के बीच जब कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं कमजोर पड़ गई हैं, देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस वैश्विक चुनौती का मजबूती से सामना कर रहा है। बीजू जनता दल बीजेडी के नेता और राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय ने आज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक को लिखे अपने इस्तीफे में देवाशीष सामंतराय ने आरोप लगाया कि पार्टी के भीतर उन्हें जानबूझकर नीचा दिखाया जा रहा था। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: विदेश मंत्रालय ने बताया कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने वाली पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी हित के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। क्वाड समूह भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का प्रमुख उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता कायम रखना है। भारत इस गठबंधन के वर्तमान अध्यक्ष के तौर पर इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। वर्ष 2024 में अमेरिका के विल्मिंगटन में आयोजित पिछले क्वाड शिखर सम्मेलन में इस समूह के शीर्ष नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग का विस्तार करने के लिए कई बड़े कदमों की घोषणा की थी। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज पश्चिम एशिया संकट के बीच ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि घरेलू अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। मुंबई में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के 37वीं वर्षगांठ समारोह के एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने कहा कि डीजल और पेट्रोल के उत्पाद शुल्क में कटौती से राजस्व पर 1,00,000 करोड़ रुपए का असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सोने की अधिक कीमत बाहरी मोर्चे पर कुछ चुनौतियां उत्पन्न कर रही हैं। उन्होंने कहा कि देश के नीतिगत प्रतिक्रिया को घरेलू विकास को बनाए रखने के हिसाब से तैयार किया गया है। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परोपकार संबंधी अपीलों के बाद एक संशयपूर्ण और निराशावादी माहौल बनाने वालों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत डर फैलाने का जोखिम नहीं उठा सकता। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपए और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस मैसेज का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भारत के समर्थन के संबंध में बयान दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि दावा भ्रामक है। इकाई ने कहा कि रक्षा मंत्री और सरकार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। सरकार ने नागरिकों को ऐसी भ्रामक जानकारियों से सावधान रहने की सलाह दी है। इस संबंध में केवल सरकारी सूत्रों पर ही विश्वास करने को कहा गया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति की है। संवाददाताओं से बातचीत में मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रारंभिक समझौता व्यापक वार्ता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विकल्पों पर विचार करने से पहले कूटनीति को हर मौका देंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य से विश्व की ऊर्जा आपूर्ति का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है। इस वर्ष की शुरुआत से ईरान पर अमेरिका और इसराइल के संयुक्त हमलों के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य बाधित हुआ है। विदेश मंत्री रूबियो भारतीय नेताओं के साथ बैठक करने के लिए इस समय भारत में हैं। वे नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए 3 दिन का लू का येलो अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी में तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। अगले 2 दिन के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। आज पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। इस बीच आज पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप के कुछ स्थानों पर आज बिजली चमकने और आंधी तूफान आने की संभावना है। भीषण गर्मी नौतपा की आज से शुरुआत हो गई है। ये अगले महीने की 2 तारीख तक जारी रहेगा। मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
5: मध्य प्रदेश में आज से नौतपा शुरू हो गया है। ये सिलसिला 2 जून तक चलेगा। नौतपा यानी साल के वो 9 दिन जब सूरज की तपिश सबसे ज्यादा होती है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 44 जिलों में लू चलने की चेतावनी दी है। निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में हालात सबसे गंभीर हैं। इसीलिए इन 5 जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट घोषित किया है। मौसम विभाग का कहना है कि 25 से 28 मई के बीच गर्मी और भी बढ़ेगी और 31 मई तक किसी भी तरह की राहत की उम्मीद नहीं है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
1: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 944 अंक की वृद्धि के साथ 76,360 जबकि निफ्टी 270 अंक बढ़कर 23,989 पर था। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता 2026 का शुभारंभ आज नॉर्वे के ओस्लो शहर में हो रहा है। टूर्नामेंट भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे शुरू होगा। 13 वर्ष के इतिहास में पहली बार ये प्रतियोगिता स्टावांगर के बजाय ओस्लो में आयोजित की गई है। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के ओपन और महिला दोनों वर्गों में शामिल खिलाड़ियों में मैग्नस कार्लसन, डी गुकेश और आर प्रज्ञानानंद जैसे विश्व के दिग्गज ग्रैंड मास्टर भी हैं। भारत ने जापान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा रनर्स एसोसिएशन IAU एशिया तथा ओशिनिया चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया। भारत ने कुल 5 पदक जीते और पुरुषों की श्रेणी में दबदबा कायम रखा। अमर सिंह देवंदा ने स्वर्ण पदक जीता। गिनो एंटनी ने रजत पदक हासिल किया जबकि कांस्य पदक भी भारत के खाते में गया। महिलाओं की श्रेणी में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता। तेंजिन डोलमा शीर्ष भारतीय खिलाड़ी रही और व्यक्तिगत रूप से 4th स्थान पर रही। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी धकाटे परिचर्चा में भाग लेंगी। वार्षिक हज यात्रा के लिए भारत सहित दुनिया भर से लाखों जायरीन सऊदी अरब के मीना में इकट्ठा हो रहे हैं। हज सुविधा मोबाइल ऐप के माध्यम से भारतीय जायरीनों को जानकारी और शिकायत दर्ज कराने की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस की जयंती पर उन्हें नमन किया है। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्र उनके अदम्य साहस और मातृभूमि के प्रति समर्पण को हमेशा याद रखेगा। जम्मू कश्मीर में घाटी की रसदार और गहरे लाल रंग की चेरी अब मुंबई के बाजारों तक पहुंचेगी। मौसम के पहले चेरी फल का विशेष पार्सल वाहन आज जम्मू से रवाना हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्र एनटीए और सीबीआई से जवाब मांगा। कहा, पहले के पेपर लीक मामलों से अब तक कोई सबक नहीं सीखा गया। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए दिल्ली में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया। हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना में लू की स्थिति बनी रहेगी। और नॉर्वे शतरंज 2026 टूर्नामेंट आज शाम ओस्लो में शुरू होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

हम सुन रहे थे बसंत बहार फिल्म का ये गीत, भीमसेन जोशी मन्ना डे की आवाज़ों में, शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अगला गीत, जो कि है जलदीप फिल्म से। सुधा मल्होत्रा, स्नेहल भाटकर ने इसे गाया है, कैफ इरफानी ने इसे लिखा है और स्नेहल भाटकर ने इसे संगीतबद्ध किया है।

अपने मन को दीप बना, तू रस्ते की हर ठोकर को तू रस्ते।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
3: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गलियां,
2: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत,
4: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
2: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत,
5: तुम्हारी याद सताती है,
2: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम सदाबहार नगमे चल रहा है। आइए सुनते हैं अगला गीत आशा भोसले की आवाज में।

हम सुन रहे थे आलम आरा फिल्म का यह गीत आशा भोसले की आवाज़ में। शेवन रिजवी ने इसे लिखा और एआर कुरैसी ने इसे संगीतबद्ध किया। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। चल रहा है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं अगला गीत चोरी चोरी फिल्म से लता मंगेशकर आशा भोसले की आवाज़ों में। हसरत जयपुरी के हैं बोल, शंकर जयकिशन का है संगीत।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
1: जाने
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं परिवार फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर मन्नाडे की आवाजों में शैलेंद्र के बोल और सलिल चौधरी के संगीत के साथ।
4: तत् मुरलिक धुन सुन आई राधे जमुनक तट पर निरत करत उठ हिरत फिरत उठ हिरत फिरत ऐसी चंद्र तपन दिग्नाथ राम तत थई राम तत थई राम तत थई।

लहकी मृदंग ढनका झट झट झट झट नगिन तेज थे सगन नदादा किट झट झट झट झड़न झट झट सगन का किट झट झट सगन का जी सगन नदा ताधा किट झट सगन का साधगन का मान गई राधा मान गई राधा मान गई राधा साथ या थे यकत साथ या थे यकत साथ या थे यकत।

कार्यक्रम सदाबहार नगमे का आज का अंतिम गीत आइए सुनते हैं, जो कि है फिल्म फंटूश से आशा भोसले की आवाज़ है, साहिल लुधियानवी के बोल हैं और सचिन देवर्मन का है संगीत।

0: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 3 बजने को हैं। अब आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार व सामायिक चर्चा रिले की जाएंगे।
1: आप सुन
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पंचायती राज संस्थाओं के पहले चरण के चुनाव के तहत कल प्रदेश की 1293 पंचायतों में वोट डाले जाएंगे। मतदान सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। मतदान के सुचारू संचालन के लिए कुल 8198 मतदान दल गठित किए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार इन चुनावों के प्रदेश भर में कुल 21,678 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। पहले चरण के चुनाव के लिए सभी मतदान दल अपने अपने केंद्रों में पहुंच चुके हैं। प्रदेश के सभी बड़े जिला कांगड़ा में भी पंचायत चुनावों को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। पहले चरण के मतदान के लिए जिले में 895 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पुलिस अधीक्षक अशोक रत्न ने बताया कि शांतिपूर्ण व निष्पक्ष मतदान के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं।
3: हमारी जो फर्स्ट फेज के इलेक्शंस हैं उसमें 895 पोलिंग बूथ्स हैं और इसमें पूरे प्रबंध करे गए हैं ताकि कानून व्यवस्था बहुत ही सुचारू रूप से चले और जो भी लोग अपने कीमती वोट को एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं वो वहां पे जाके एकदम अच्छे तरीके से उसको एग्जीक्यूट कर पाएं, अपना वोट दे पाएं और उनको किसी भी डर और किसी भी चीज का सामना ना करना पड़े, इसके लिए हमने पूरी व्यवस्था रखी है। सारे पुलिस स्टेशन और पुलिस पोस्ट के ज्यूरिडिक्शंस पर नाकाबंदी रही है और ये नाकाबंदी हमारी कंटिन्यूअसली टिल द टाइम ऑफ पोलिंग रहेगी ताकि रात की जो अवैध गतिविधि
2: सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा कि यह दुख की बात है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक राधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, एनटीए और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए जांच एजेंसी की जगह किसी ज्यादा मजबूत और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हल्फनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि बार बार पेपर लीक होने से 22 लाख से अधिक छात्रों के अधिकारों पर असर पड़ा है। याचिका में भविष्य की परीक्षाओं की निगरानी के लिए सर्वोच्च न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय निगरानी समिति बनाने की भी मांग की गई है। पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में पिछले सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और आयात लागत बढ़ने की वजह से तेल कंपनियों पर भी दबाव बढ़ा है। इसके अलावा रिफाइनिंग मार्जिन में बदलाव का असर भी ईंधन की कीमतों पर पड़ रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला के लोक भवन में राज्यपाल कविंद्र गुप्ता से भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के साथ प्रदेश में विकास व जन कल्याण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। बैठक के दौरान सुशासन और प्रदेश में चलाई जा रही

0: विकासात्मक पहलों पर भी संवाद किया गया। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने छठी से बारहवीं कक्षा तक के पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करने की कवायद तेज कर दी है। बोर्ड के सचिव विशाल शर्मा ने धर्मशाला में बताया कि स्कूली विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक व डिजिटल शिक्षा से जोड़ने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में AI शिक्षा की आवश्यकता बढ़ने वाली है और इसी उद्देश्य से स्कूल शिक्षा बोर्ड ने AI को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने का निर्णय लिया है। विशाल शर्मा ने बताया कि इस बारे में राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है।
1: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय में ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। पूरे वर्ल्ड की जो AI लिटरेट संख्या है उसमें 17% जो है वो हिंदुस्तान में, हम इस पाठ्यक्रम को लागू नहीं कर पाए थे, तो इसमें हम भी पीछे नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए हमने एक पाठ्यक्रम छठी क्लास से लेके बारहवीं क्लास तक जो है यहाँ पे हमने दो कार्यशालाएं की थी। राज्य सरकार से हमने सेक्रेटरी एजुकेशन को अनुरोध किया कि आप हमें प्रेजेंटेशन के लिए समय दें, किस तरीके से इस पाठ्यक्रम को लागू करना है, कब लागू करना है, इसके बारे में फिर राज्य सरकार जैसा निर्णय लेगी वैसा हम आगे करें।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में 66 विशिष्ट लोगों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अलंकरण है। शेष पद्म पुरस्कार बाद में समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे। धर्मशाला के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच IPL का पहला क्वालिफायर मैच कल खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मैच को जीतने वाली टीम IPL के फाइनल में पहुंचेगी। इस मैच को लेकर PHPCA ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और इस मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।
2: अभी आप प्रादेशिक समाचार सुन रहे थे। अब सुनिए सामयिक चर्चा। विषय है, संपूर्ण विश्व को पर्यावरण केंद्रित नए विकास मॉडल की आवश्यकता। वाचक स्वर राकेश शर्मा का है।
0: मानव सभ्यता आज जिस मोड़ पर खड़ी है वहां से पीछे मुड़कर देखने पर विकास की चमक दिखाई देती है, लेकिन आगे देखने पर विनाश की भयावह छाया भी स्पष्ट दिखाई देने लगी है। विज्ञान, तकनीक, उद्योग, शहरीकरण और उपभोग की संस्कृति ने मनुष्य को अभूतपूर्व सुविधाएं दी, परंतु इसी तथाकथित विकास ने पृथ्वी के पर्यावरणीय संतुलन को गहराई से घायल भी किया है। आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, जल संकट, वायु प्रदूषण जैसे विविधता के विनाश, जंगलों की कटाई और प्राकृतिक आपदाओं के बढ़ते खतरे से जूझ रही है। ये केवल पर्यावरणीय समस्या नहीं बल्कि मानव अस्तित्व का संकट बन चुकी है। 24 मई 2026 तक की परिस्थितियों को देखें तो स्पष्ट हो जाता है कि पृथ्वी लगातार चेतावनी दे रही है। कहीं तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच रहा है, कहीं जंगलों में आग लग रही है, कहीं बाढ़ शहरों को डुबो रही है, तो कहीं सूखे से जीवन ठहरता जा रहा है। भारत सहित दुनिया के अनेक देशों में मौसम का स्वभाव तेजी से बदल रहा है। गर्मी की अवधि लंबी होती जा रही है, वर्षा अनिश्चित होती जा रही है और प्राकृतिक आपदाएं अधिक विनाशकारी बनती जा रही हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि यह संकट अचानक पैदा नहीं हुआ। ये दशकों से अपनाए जा रहे उस विकास मॉडल का परिणाम है जिसने प्रकृति को केवल संसाधन माना, साझेदार नहीं। आधुनिक विकास की पूरी अवधारणा अत्यधिक उत्पादन, अत्यधिक उपभोग और निरंतर आर्थिक विस्तार पर आधारित रही। विकास को मापने के लिए सकल घरेलू उत्पाद, औद्योगिक वृद्धि और उपभोग क्षमता को प्राथमिक मानक बना दिया गया, जबकि पर्यावरणीय संतुलन, प्राकृतिक संसाधनों की सीमाएं और आने वाली पीढ़ियों के अधिकारों को गंभीरता से नहीं लिया गया। आज दुनिया का बड़ा हिस्सा कंक्रीट के जंगलों में बदलता जा रहा है। प्राकृतिक जंगलों को काटकर शहर बसाए गए, नदियों को मोड़ा गया, पहाड़ों को विस्फोटों से तोड़ा गया, समुद्र तटों पर अंधाधुंध निर्माण हुआ, खनिजों और जीवाश्म ईंधनों का अत्यधिक दोहन किया गया। परिणाम स्वरूप पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता गया। ग्लोबल वार्मिंग अब केवल वैज्ञानिक रिपोर्टों का विषय नहीं रह गया है, इसका प्रभाव सामान्य जीवन में स्पष्ट दिखाई देने लगा है। यूरोप में असामान्य गर्मी, कनाडा और

0: ऑस्ट्रेलिया में जंगलों की आग, अमेरिका में चक्रवात और तूफान, अफ्रीका में जल संकट और एशिया में बाढ़ तथा लू की घटनाएं इस बात का प्रमाण है कि जलवायु असंतुलन पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है। भारत की स्थिति भी अत्यधिक गंभीर होती जा रही है। दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में लगातार बढ़ता तापमान जीवन को कठिन बना रहा है। हिमालय क्षेत्रों में ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, नदियों का प्राकृतिक प्रवाह प्रभावित हो रहा है, कई राज्यों में जल संकट गहराता जा रहा है, खेती पर मौसम परिवर्तन का सीधा प्रभाव पड़ रहा है। विडंबना यह है कि विकास का लाभ सीमित वर्ग तक पहुंचा, लेकिन पर्यावरणीय संकट का बोझ पूरी मानवता उठा रही है। अमीर देशों और बड़े उद्योगों ने पृथ्वी के संसाधनों का सबसे अधिक दोहन किया, लेकिन जलवायु परिवर्तन का सबसे गंभीर प्रभाव गरीब देशों और कमजोर वर्गों पर पड़ रहा है। गरीब किसान, मजदूर, मछुआरे और आदिवासी समुदाय सबसे पहले और सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। आज आवश्यकता केवल पर्यावरण संरक्षण की नहीं, बल्कि विकास की पूरी अवधारणा का पुनर्भाषित करने की है। ऐसा मॉडल जिसमें आर्थिक प्रगति और पर्यावरणीय संतुलन साथ साथ चलें। वर्तमान विकास मॉडल की सबसे बड़ी समस्या ये है कि अनंत विकास की कल्पना पर आधारित है, जबकि पृथ्वी के संसाधन सीमित है। यदि पूरी दुनिया उसी उपभोग स्तर को अपनाने लगे जो विकसित देशों में है, तो पृथ्वी के संसाधन बहुत जल्द समाप्त हो जाएंगे। इसलिए विकास का अर्थ केवल अधिक उत्पादन और अधिक उपभोग नहीं हो सकता। पर्यावरण केंद्रित विकास मॉडल का पहला आधार सतत विकास होना चाहिए। इसके साथ ही सामयिक चर्चा संपन्न हुई। नमस्कार।
1: आज की सामयिक चर्चा का विषय था संपूर्ण विश्व को पर्यावरण केंद्रित नए विकास मॉडल की आवश्यकता। वाचक स्वर राकेश शर्मा का था। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
2: FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 3:10 हुए हैं। अब आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।
3: सच्चो मर गई, हाय, हत्या का पाप बहू पे चढ़ गया। माँ जी
4: ये तो गजब हुई गवा। बिल्ली की हत्या, आदमी की हत्या तो बराबर है ना। हम तो रसोई न बनावेंगे अब, बल्कि हम तो रसोई में पैरों न धरेंगे जब तक बहू के सिर हत्या का पाप रहेगा।
5: कहती तो ठीक हो तुम सब, अब जब तक बहू के सर से हत्या न उतर जाए तब तक ना कोई पानी पी सकता है ना खाना खा सकता है। अरे बहू बहू, ये क्या कर डाला है?
6: अब इब का हुई अम्मा जी। हाँ, कहो तो पंडित जी को बुला लें हम।
5: हाँ ठीक कहती हो। अरे हाँ, जाओ जल्दी से जाओ जाओ पंडित जी को बुला लो।
7: बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह पड़ोस में फैल गई। पड़ोस की औरतों का रामू के घर तांता बंध गया। चारों तरफ से प्रश्नों की बौछार और रामू की बहू सिर झुकाए बैठी। पंडित परम सुख को जब यह खबर मिली, उस समय वो पूजा कर रहे थे। खबर पाते ही वे उठ पड़े।
8: सुनती हो भगवान? भाई भोजन न बनाना, लाला घासीराम की पतोहू ने बिल्ली मार डाली। प्रायश्चित होगा, पकवानों पर हाथ लगेगा।
7: पंडित परम सुख चौबे छोटे और मोटे से आदमी थे। लंबाई 4 फीट 10 इंच और तोंद का घेरा 58 इंच। चेहरा गोल मटोल, मूछें बड़ी बड़ी, रंग गोरा, चोटी कमर तक पहुंचती हुई। कहा जाता है कि मथुरा में जब बंसेरी खुराक वाले पंडितों को ढूंढा जाता था तो पंडित परम सुख जी को उस लिस्ट में प्रथम स्थान दिया जाता था। पंडित परम सुख पहुंचे और कोरम पूरा हुआ। पंचायत बैठी, सास जी, मिश्रानी, किस्नु की माँ, छन्नू की दादी और पंडित परम सुख। बाकी स्त्रियां बहू से सहानुभूति प्रकट कर रही थी।
5: अरे पंडित जी, बिल्ली की हत्या करने से कौन नरक मिलता है बताइए जरा।
8: हाँ हाँ, पत्रा देखकर अभी बताता हूँ। अब ऐसा है, बिल्ली की हत्या अकेले से तो नरक का नाम नहीं बतलाया जा सकता। वो महो

0: उर्द भी मालूम हो जब बिल्ली की हत्या हुई तभी नरक का पता लग सकता है। क्यों मिसरानी, ये हुआ कब?
1: अरे यही कोई 7 बज रहा होगा सवेरे का।
0: 7 बजे सुबह।
2: पंडित परम सुख ने पत्रे के पन्ने उल्टे, अक्षरों पर उंगलियां चलाई, माथे पर हाथ लगाया और कुछ सोचा। चेहरे पर धुंधलापन आया, माथे पर बल पड़े, नाक कुछ सुकड़ी और स्वर गंभीर हो गया।
0: हरे कृष्ण, बहुत बुरा हुआ, बड़ा बुरा हुआ है रामू की माँ। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या, घोर कुंभीपाक नरक का विधान है। ये तो बहुत बुरा हुआ। हरे कृष्ण।
3: तो फिर पंडित जी अब क्या होगा, आप ही बताइए। हमारा दिल तो बैठा जा रहा है अब शगुन की आशंका से।
2: पंडित परम सुख मुस्कुराए, अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा,
0: रामू की माँ, चिंता की कौन सी बात है। अब हम पुरोहित कौन दिन के लिए हैं? शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है, सो प्रायश्चित से सब कुछ ठीक हो जाएगा। हरे कृष्ण।
3: पंडित जी, इसीलिए तो आपको बुलवाया था ना, अब आगे बताइए कि क्या किया जाए।
0: हरे कृष्ण। अब देखिए, यही एक सोने की बिल्ली बनवाकर बहू से दान करवा दी जाए। जब तक बिल्ली न दे दी जाएगी तब तक तो घर अपवित्र रहेगा। बिल्ली दान देने के बाद 21 दिन का पाठ हो जाए बस। हरे कृष्ण।
4: हाँ, और क्या, पंडित जी ठीक ही तो कहते हैं, बिल्ली अभी दान दे दी जाए और पाठ फिर हो जाए।
3: हाँ तो पंडित जी, कितने तोले की बिल्ली बनवाई जाए।
2: पंडित परम सुख मुस्कुराए, अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा,
0: बिल्ली कितने तोले की बनवाई जाए। अरे रामू की माँ, शास्त्रों में तो लिखा है कि बिल्ली के वजन भर सोने की बिल्ली बनवाई जाए, लेकिन अब कलयुग आ गया है। हरे कृष्ण। धर्म कर्म का नाश हो गया है, श्रद्धा ही नहीं रही किसी में। हरे कृष्ण। रामू की माँ, बिल्ली के तौल भर की बिल्ली तो क्या बनेगी, क्योंकि बिल्ली 20-21 शेर से कम की क्या होगी। हाँ, कम से कम 21 तोले की बिल्ली बनवा के दान करवा दो और आगे तो अपनी अपनी श्रद्धा है। हरे कृष्ण।
3: अरे बाप रे बाप, 21 तोला सोना। पंडित जी, ये तो बहुत है, तोला भर की बिल्ली से काम नहीं निकलेगा।
0: रामू की माँ, 1 तोला सोने की बिल्ली, अरे रुपए का लोभ बहू से बढ़ गया। बहू के सिर बड़ा पाप है, बड़ा पाप, समझ रही है। इसमें इतना लोभ ठीक नहीं है। हरे कृष्ण।
2: मोल तोल शुरू हुआ और मामला 11 तोले की बिल्ली पर ठीक हो गया। इसके बाद पूजा पाठ की बात आई। पंडित परम सुख ने कहा,
0: हरे कृष्ण, उसमें क्या मुश्किल है, हम लोग किस दिन के लिए हैं। रामू की माँ, मैं पाठ कर दिया करूँगा, पूजा की सामग्री आप हमारे घर भिजवा देना। हरे कृष्ण।
3: और पंडित जी, पूजा का सामान कितना लगेगा?
0: अरे कम से कम में हम पूजा करा देंगे। दान के लिए करीब 10 मन गेहूं, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन जौ और 5 मन चना, 4 पसेरी घी और मन भर नमक भी लगेगा। बस इतने से काम चल जाएगा।
3: अरे बाप, इतना सामान। अरे पंडित जी, इसमें तो 100-150 रुपए खर्च हो जाएंगे। हैं?
0: फिर इससे कम में तो काम न चलेगा। बिल्ली की हत्या कितना बड़ा पाप है। रामू की माँ, खर्च को देखते वक्त पहले बहू के पाप को तो देख लो। ये तो प्रायश्चित है, कोई हंसी खेल थोड़ी है। और फिर जैसी जिसकी मर्यादा, प्रायश्चित में उसे वैसा खर्च भी करना पड़ता है। आप लोग कोई ऐसे वैसे थोड़े ही है। अरे 100-150 रुपया आप लोगों के हाथ का मैल है।
4: और नहीं तो का। दान पुण्य से ही पाप कटते हैं। दान पुण्य में किफायत ठीक नहीं।
2: पंडित परम सुख की बात से पंच प्रभावित हुए। रामू की माँ ने अपने चारों ओर देखा, सभी पंच पंडित जी के साथ। पंडित परम सुख मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा,
0: रामू की माँ, एक तरफ तो बहू के लिए कुंभीपाक नरक है और दूसरी तरफ तुम्हारे जिम्मे थोड़ा सा खर्चा है, सो उससे मुंह ना मोड़ो। हरे कृष्ण
3: सही कहा पंडित जी, अब तो जो नाच नचाओगे नाचना ही पड़ेगा।
0: रामू की माँ, ये तो खुशी की बात है, अगर तुम्हें यह अखरता है तो ना करो, मैं चला।
3: अरे पंडित जी, अरे आपके पैर पकड़ती हूँ भाई, अब जमकर आसन जमाइए, बताइए और क्या हो, क्या करना है।
0: 21 दिन के पाठ के 21 रुपए।
3: अच्छा।
0: और 21 दिन तक दोनों बखत 5-5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। सो इसकी चिंता ना करो, मैं अकेले दोनों समय भोजन कर लूंगा और मेरे अकेले भोजन करने से 5 ब्राह्मण के भोजन का फल मिल जाएगा।
3: ऐसा?
0: हरे कृष्ण।
1: हाँ, ये तो पंडित जी ठीक है कहते हैं। पंडित जी की तोन तो देखो।
0: अच्छा, तो फिर प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ। रामू की माँ, 11 तोला सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊं। 2 घंटे में मैं बनवा कर लौटूंगा, तब तक सब पूजा का प्रबंध कर रखो। और देखो, पूजा के लिए।
2: पंडित जी की बात खत्म भी ना हुई थी कि मेहरी हांफती हुई कमरे में घुस आई और सब लोग चौंक उठे।
5: अरे अम्मा जी, हाँ? ये तो
3: क्या हुआ, बोलो तो।
1: अरे हुआ का,
5: अरे
1: बताओ
5: का बताएं। अम्मा जी, वो बिल्ली जिंदा थी, उठ के भाग गई।
0: क्या? बिल्ली भाग गई? हरे कृष्ण।

0: अभी आपने सुनी भगवती चरण वर्मा की कहानी प्रायश्चित। पात्र परिचय इस प्रकार हैं: सूत्रधार जी श्याम, पंडित जी जयंत पात्रिकर, रामू की माँ रेणु चतुर्वेदी, मेहरी आकांक्षा सिंह, मिश्रानी ममता सिंह, छन्नू की दादी पूनम त्रिपाठी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।
1: आरती जी, 11 तोला सोने की मिली
2: और वो भी भाग गई।
1: पंडित जी का बड़ा नुकसान हो गया। और जब पंडित जी का नुकसान हो गया है तो पंडित जी को हम ये गाना सुना देते हैं।
2: बिल्कुल।
1: और

0: तो आरती स्वागत है फिर से सखी सहेली में। हाँ। और पंडित जी रूठ गए थे तो हमने उनको गाना सुना दिया, देखो रूठा ना करो, अब तक मान गए होंगे।
1: जी हाँ।
0: अब बिल्ली तो नहीं मिली 11 तोला की, क्या कर सकते,
1: क्या
0: हैं?
1: कर सकते हैं।
0: पर हाँ जी,
1: अब है फुटबॉल दिवस के बारे में कुछ बात करनी तो बनती है, क्योंकि आज है फुटबॉल दिवस। और फुटबॉल जो है विधि फुटबॉल दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल है और इस खेल की दीवानगी लोगों के सिर चढ़कर बोलती है। और इसमें हम बता देते हैं कितने खिलाड़ी होते हैं
0: जी।
1: तो इसमें 11-11 खिलाड़ियों की दो टीमें होती हैं, जो एक गेंद को हाथ के उपयोग के बिना शरीर के अन्य हिस्सों से, जैसे कि आप सिर से मार सकते हैं, पैर से मार सकते हैं, छाती से मार सकते हैं, बस आप हाथ का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो बहुत ही इसके रोचक मुकाबले होते हैं।
0: बिल्कुल, बहुत रोचक मुकाबले होते हैं। और खेलों के लिए किसी ने कहा भी है कि खेलों की दुनिया बड़ी निराली होती है, हार में भी यहाँ जीत की लाली होती है, जो मैदान में डटकर मुकाबला करता है असल में वही खिलाड़ी सबसे भारी होता है।
1: बहुत बढ़िया।
0: और ये
1: अच्छा।
0: जो भारी खिलाड़ी होता है वो हाथों का उपयोग नहीं करता,
1: बिल्कुल
0: शरीर के बाकी अंगों का प्रयोग कर रहा है। और फुटबॉल खेलने से शारीरिक फिटनेस भी बढ़ती है, संपूर्ण शारीरिक गतिविधि है जो पूरे शरीर की मांसपेशियों को सक्रिय करता है। तो अगर हम विश्व फुटबॉल दिवस की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 25 मई 1924 को पेरिस में, और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के दौरान पहला अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित किया गया था।
1: बिल्कुल। और इस टूर्नामेंट ने विश्व जो वैश्विक स्तर पर फुटबॉल की लोकप्रियता को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, जिसके उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थिति को चुना गया है। और फुटबॉल को वैश्विक स्तर पर संचालित करने वाली संस्था है फीफा, और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के सहयोग से विश्व फुटबॉल सप्ताह 21 से 25 मई तक मनाते हैं, जिसका विषय रहता है सक्रिय रहिए। इसका उद्देश्य लोगों को शारीरिक रूप से सक्रिय और स्वस्थ रहने के लिए प्रोत्साहित करना होता है।
0: बिल्कुल, ऐसे ही प्रोत्साहित करते रहते हैं और बढ़िया बढ़िया खिलाते रहते हैं। आरती देखिए, खेलना जीवन में बहुत जरूरी है,
1: बहुत जरूरी है।
0: और फुटबॉल जो खेल है वो जब हम स्वयं भी खेलते हैं या हमारे सामने बच्चे खेल रहे होते हैं तो हम खुद देखते हैं कि उनका पूरा शरीर उसमें लगा हुआ होता है, वो पूरी मांसपेशियां उसमें काम कर रही होती हैं। और कई बार तो ये देखा गया है कि बच्चों की ऊंचाई भी यानी हाइट भी इससे बढ़ती है,
1: और पूरी बॉडी का स्ट्रेंथ, पूरे बॉडी में मजबूती आती है क्योंकि वो, और दिमाग भी उसे सक्रिय होता है क्योंकि पूरा उनको ध्यान रखना होता है कैसे गोल करना है, कैसे निकालना है, कहाँ से निकालना है बॉल को। तो बहुत ही मज़ेदार ये खेल भी, देखने वाला भी एकदम देखता रह जाता है इसे।
0: हाँ, और हमारे श्रोता भी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें इस विषय पर कह रहे हैं, और जिनमें से एक बात और मुझे, एक कविता और मुझे याद आती है, जब हम बचपन में थे और खेला करते थे।
1: अच्छा।
0: तो बारिश की कीचड़ में पूरी तरह से सराबोर होकर चले आते थे।
1: इस खेल की कहिए तो सुंदरता ही यही है कि खूब कीचड़ में, मिट्टी में एकदम सराबोर होकर खेलने से।
0: बिल्कुल, हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, फुटबॉल खेलने में बहुत अधिक एनर्जी और स्टैमिना की आवश्यकता होती है, इसे दुनिया के सबसे थका देने वाले और शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण खेलों में से एक माना जाता है। एक पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी एक मैच के दौरान लगभग 1000 से 1500 कैलोरी तक खर्च कर सकता है, मतलब बहुत सारे रसगुल्ले खाए जा सकते हैं इसके साथ।
1: बहुत बहुत आराम से खा सकते हैं, क्योंकि आपको जो सोचें कि मोटापा चढ़ेगा तो वो हो ही नहीं सकता, इतना ज्यादा इसमें खेलने में
0: कैलोरीज यहाँ पे खत्म कर दी जाएंगी। जी बिल्कुल। तो आरती, ऐसे ही इसके साथ में एक कविता और मुझे याद आती है कि खेल सिखाते हैं हौसला और उड़ान, मुश्किल में भी रखना खुद का ध्यान, जीत मिले तो विनम्र रहना, हार मिले तो बन जाना तूफान।
1: वाह, बहुत बढ़िया बात।
0: ये

0: कविता जब मैं पढ़ रही थी ना, तो इसका अर्थ मुझे समझ में ये आ रहा था कि कभी कभी हम ना जीत पर घमंड करने लगते हैं और हार पर दुख। यहाँ पर बिल्कुल उल्टा कहा है कि अगर जीत मिले तो विनम्र बनो, सर झुकाकर जीत स्वीकार करो और हार जाओ।
1: पे ज्यादा फल लगे होते हैं वो झुक जाता है।
0: हाँ,
1: जिस पे कुछ नहीं लगा होता वही अकड़ के खड़ा रहता है।
0: जी बिल्कुल। तो ये जो विश्व फुटबॉल दिवस है ये बहुत बढ़िया खेल है, और इस खेल को हमारे श्रोताओं में से एक श्रोता ने और टिप्पणी लिखी है, वो जरा हम पढ़ते हैं।
1: तो एक हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि विश्व फुटबॉल दिवस का महत्व और उद्देश्य सांस्कृतिक एकता, फुटबॉल को किसी भाषा या सीमा में की आवश्यकता नहीं होती है, ये दुनिया भर के विभिन्न समुदायों और संस्कृतियों को आपस में जोड़ता है, शांति और कूटनीति को मान्यता देता है, लोगों को एक मंच पर लाता है जिससे कि लोगों में आपसी समझ और सहिष्णुता बढ़ती है, और साथ ही ये दिवस लैंगिक समानता को भी बढ़ावा देता है और महिलाओं को और लड़कियों को भी जो सशक्त बनाने का काम करता है, एक महत्वपूर्ण साधन होता है।
0: बहुत बढ़िया चीज है ना, देखिए बेटियां भी खेलती हैं, बेटे भी खेलते हैं, सब खेलते हैं, और खेलते खेलते अपने आप को एकदम बढ़िया मजबूत बना लेते हैं, और इस मजबूती को सच में स्वीकार किया जाना चाहिए। हम तो ये कहेंगे कि बच्चों को छोटी उम्र से ही फुटबॉल पकड़ा दो और वो खेलना शुरू कर दें।
1: बिल्कुल, वो मोबाइल से दूर रहेंगे, वो पकड़ेंगे भी नहीं मोबाइल अगर आपने एक बार से इस खेल में उनको डाल दिया तो।
0: और छोटे छोटे बच्चे अगर फुटबॉल में पैर मारते रहेंगे तो शायद उनके पैरों की ताकत बढ़ेगी और उस ताकत के कारण उनके शरीर का पूरा विकास भी होगा, और फिर धीरे धीरे जब वो बढ़ेंगे तो उनको कूटनीति भी आने लगेगी कि कहाँ से बॉल निकाल देना है, अगले किस दोस्त को पास करना है, शायद इस सबसे उनकी मित्रता भी बढ़ती है।
1: सहयोग की भावना इसी को तो कहते हैं, एक जब हम बॉल को पास करते हैं दूसरे तक पहुंचाते हैं, उस पर विश्वास रखें कि वो गोल कर देगा,
0: तो शायद यहीं से एक संगठन का विकास भी होता है।
1: बिल्कुल।
0: तो जब संगठन का विकास हो रहा है तो हम एक छोटा सा विराम लेते हैं, इसके बाद और बात करेंगे और गीत सुनेंगे।
1: जी

0: हाँ तो विधि, एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज है, एक कमेंट है। तो हमारे जो श्रोता है वो कहते हैं कि फुटबॉल दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल है, फुटबॉल टीम वर्क का सबसे बेस्ट उदाहरण है, एक फुटबॉल पूरी दुनिया को जोड़ देती है। जब मैच चल रहा होता है तो पूरी दुनिया की नजरें और धड़कनें सिर्फ एक ही फुटबॉल पर टिकी हुई होती हैं। ये तो सही बात है। टीवी के सामने सब जमे बैठे होते हैं, देख रहे होते हैं, सबके अपनी अपनी टीम होती है पसंद की, और किसी न किसी टीम के लिए सब दुआ कर रहे होते हैं, प्रार्थना कर रहे होते हैं।
1: बात है। और एक जब वो जो खेल रहे होते हैं और वो बादलों की तरह आसमान में कभी उड़ते हैं, कभी नीचे ज़मीन से निकल जाते हैं, कभी नीचे से निकलते हैं, कभी बीच से निकलते हैं, पता नहीं क्या करके उस खेल को खेलते हैं, लेकिन ये खेल बहुत रोचक है।
0: बहुत, बहुत।
1: और जब उन बादलों के बारे में बात कर रहे हैं जो खेल रहे होते हैं, तो उन सब के लिए ये प्यारा सा गीत सुनवा देते हैं।

0: तो अब बादल दीवाना हो चुका है और दीवाना बादल कह रहा है कि हमको घूमी घूमी जाना है, घूमने जाना है।
1: ठीक है, तो परिवार के साथ हम जब सफर पर निकलते हैं तो ये एक बेहद खूबसूरत और खुशनुमा अनुभव होता है। और परिवार के साथ किया गया सफर केवल एक यात्रा नहीं होती बल्कि यादों का खजाना बन जाता है, क्योंकि रोजमर्रा की भागदौड़ और जिम्मेदारियों के बीच जब पूरा परिवार एक साथ निकलता है तो रिश्तों में एक नई मिठास खुल जाती है।
0: बिल्कुल, और रिश्ते मिठास के साथ में जब साथ में निकलते हैं ना, तो आती रास्ते में वो हंसी मजाक चलती रहती है, कोई कुछ खेल रहा है, कोई कुछ साथ में बैठ के खा रहा है, उतनी सी जगह में बैठ के धीरे धीरे खाना निकाला जा रहा है, भोजन निकाला जा रहा है, दिया जा रहा है, मतलब वो छोटे छोटे पल कितना आनंद होता है ना। और साथ में कुछ समय के लिए ऐसा लगता है सारी चिंताएं कहीं चली गई हैं और हम खुशियों के साथ अपना समय जी रहे हैं, और छोटी मोटी परेशानियां जो बीच में आ रही है ना, अरे पैर मोड़ते नहीं बन रहा, अरे बैठते नहीं बन रहा, अरे थोड़ा सा सरक जाओ, ये परेशानियां कहीं एहसास नहीं होने देती।
1: बड़ा लगता है कि ये भी वो पल हैं जिन्हें हमें सहेज लेना चाहिए। और जब साथ में खा रहे होते ना तो वो जो स्वाद है ना वो एक अलग होता है, जब साथ में बैठ के ट्रेन में या इस तरह से किसी सफर में खा रहे होते हैं, जबकि जब हम घर में वही चीज़ खा रहे होते हैं तो इतना पता नहीं चलता जब अकेले।
0: और आरती एक चीज़ और अच्छी लगती है कि अगर हम ट्रेन से चल रहे हैं मान लीजिए, तो थोड़ी दूर पे किसी की आलू पूड़ी का डब्बा खुलता है, किसी का चार खुलता है, सारी खुशी हमारे तक आ जाती है।
1: जी हाँ, और जो लगातार निकलते रहते हैं लोग ना, ये ले लो वो ले लो, तो लगता है अच्छा हम भी ऐसे बोलने लग गए।
0: जी बिल्कुल, और उस सबके साथ बच्चों की जिद करना, उनको डांटना, मनाना, सब कुछ बहुत खूबसूरत होता है। और इसमें कई बार ऐसा होता है जब हम अकेले ट्रिप पे जा रहे होते हैं तो हमें अपना ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन कभी कभी हम अपने दोस्त अपने परिवार के साथ जा रहे होते हैं तो उसमें हम पहले से प्लानिंग करते हैं, क्या क्या कपड़े जाएंगे, क्या क्या सामान जाएगा, तो वो प्लानिंग में क्या क्या प्लानिंग करनी चाहिए, ये बारे में तो चर्चा जरूर बनती है।
1: बिल्कुल, सबके हिसाब से हमें लेना चाहिए। और लेकिन ध्यान रख, जब अगर क्योंकि अगर कोई हमारे साथ में कोई बुजुर्ग जा रहा है तो हमें उसके हिसाब से सामान लेना होगा, कपड़े उनके हिसाब से, जो जो चीज़ें उनको जरूरत लगती है, उनकी दवाइयाँ, सब कुछ उसी हिसाब से लेना होता है। जबकि बच्चे जा रहे हैं तो बच्चों के हिसाब से उनके सामान लेने होते हैं, तो जो भी जा रहा है हर परिवार के हर सदस्य को कोई परेशानी तो नहीं है, तो उस तरह से सामान लेने होते हैं। साथ ही दवाइयाँ ये ज़रूर आप पैक करके रखें, कम से कम जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं उनके लिए जो दवाइयाँ रहती हैं वो आप ज़रूर अपने साथ में लेकर चलें, बहुत जरूरी
0: है। लेकर चलने के पहले आरती हमको एक काम करना पड़ता है।
1: क्या?
0: वो होता है टिकट बुकिंग, होटल बुकिंग।
1: सबसे पहला काम
0: अगर वही सही नहीं किया तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो आप जहाँ जा रहे हैं वो सब चीज़ें अच्छे से पता कर लें। और सामान्यतया जब हम परिवार के साथ घूमने जाते हैं आरती, तो हम क्या करते हैं कि बहुत दिन पहले ही, जिस दिन 2 महीने पहले अगर टिकट बुक होती है ना, तो 2 महीने पहले ही एक डायरी उठ जाती है, और उस डायरी में जैसे 4 लोग जा रहे हैं तो 4 पेज बन जाते हैं। हाँ। और सबके पेज पे सबका लिखना शुरू हो जाता है कि कौन किस रंग की कौन सी शर्ट लेके जाएगा, ये भी लिख दिया जाता है, ताकि आखिरी समय में ऐसा ना हो कि 2 दिन पहले वही शर्ट पहन ली जाए और फिर हम परेशान हो जाए।
1: बिल्कुल,
0: पहले से ही ये लिख लेना एक बहुत अच्छी आदत होती है श्रेणी, क्योंकि और एक और फायदा इसका क्या होता है, जब हम सामान्य लिख के ले जाते हैं और जब लौट के आते हैं तो उसमें चेक कर सकते हैं क्या कौन क्या छोड़ के आया है।
1: बिल्कुल, ये तो सबसे जरूरी चीज बताई, बहुत अच्छी चीज है ये, ऐसा करना भी चाहिए। और हम इसी के साथ में एक कमेंट ले लेते हैं अपने श्रोता का, जो कहते हैं कि सफर पे जाने से पहले सबको अपनी जिम्मेदारी समझ लेनी चाहिए कि कौन सदस्य कौन सी बैग उठाएगा, जिसपे झगड़े होते कि हमें नहीं पकड़ना है, हमें नहीं पकड़ना है, और पैसे और टिकट्स किसके पास रहेंगे ये पहले डिसाइड कर लेना चाहिए, और गोल्ड और सिल्वर के कीमती गहने नहीं पहनने चाहिए। ये तो,
0: और अगर पहन भी रहे हैं तो आप उनको बहुत संभाल के रखिए, यानी आप उनको बाद में संभाल के रख सकें इस बात का आप ध्यान रखें। और इसके साथ ही जब परिवार के लिए निकल रहे हैं तो हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, परिवार के साथ सफर पर निकलना ना केवल एक बेहतरीन ब्रेक है बल्कि यह तो आपसी रिश्तों को मजबूत करना और नई यादें संजोने का एक बड़ा शानदार सा तरीका है। तो अगर हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, और आपने कहा बड़े बुजुर्ग अगर साथ में ले जा रहे हैं तो उनका जो विशेष भोजन होता है, और अगर बच्चे साथ में ले जा रहे हैं तो उनके विशेष भोजन की, हम तो कहते हैं अगर 8 दिन के लिए घूमने जा रहे हैं तो 12 दिन की व्यवस्था करनी चाहिए।
1: बिल्कुल, ये सही कहा,
0: जाने कब कहाँ कौन सी घड़ी में क्या आवश्यक पड़ जाए, और आपके साथ भोजन और जल यानी पानी, ये 2 चीज़ें
1: जरूर
0: होना चाहिए।
1: और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि जब परिवार के साथ सफर में निकलते हैं तो प्री प्लान करते हुए सभी की सुरक्षा, स्वास्थ्य और जरूरी आराम का ध्यान रखना जरूरी है। साथ में खान पान में भी ध्यान रखना जरूरी है, पूरे सदस्यों के अलावा मेरे जैसे, जो वो अपना बता रहे हैं कि मेरे जैसे बड़े बुजुर्गों के लिए मेडिकल फर्स्ट एड बॉक्स भी रखना चाहिए। सफर से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज, आधार, पैन कार्ड और टिकट की हार्ड कॉपी के साथ डिजिटल कॉपी भी सुरक्षित रखिए। बाकी की सारी जानकारी तो आपसे मिलेगी, बोल रहे हैं जैसे कि इन्होंने बाकी सारी की जानकारी दे ही दी है कि बहुत ज़रूरी है आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास रखिए, उन्हें चाहे हार्ड कॉपी हो चाहे सॉफ्ट कॉपी हो।
0: जी बिल्कुल। और हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, परिवार के साथ सफर पर निकलते समय सुरक्षा, आराम, मनोरंजन का विशेष ध्यान रखें। यात्रा से पहले कंफर्म टिकट और होटल बुकिंग, आपातकालीन दवाओं, फर्स्ट एड किट, पर्याप्त पानी, घर के बने स्नैक्स, इन्होंने बिल्कुल स्थायी रूप से लिखा है, घर का बना आहार जो है वो रखें, तथा सभी सदस्यों के आईडी कार्ड साथ रखना सुनिश्चित करें। परिवार के साथ सुरक्षित आनंददायक यात्रा के लिए प्रमुख बातों की सावधानी रखें। यात्रा के दौरान होने वाली आम समस्याएं जैसे उल्टी, दस्त, बुखार, पेट खराब, बुखार की दवा, ORS की दवा, मेडिकेटेड बैंडेज, दर्द निवारक पेन बाम जरूर रखनी चाहिए। इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहती हूँ आरती, कि जब आप पहाड़ी क्षेत्रों पर घूमने जा रहे हैं तो डॉक्टर से पूछ के कि पहाड़ी क्षेत्रों पर सामान्यतः गाड़ियाँ जब घूम घूम के जाती हैं तो मतली आती है, समस्या होती है, तो डॉक्टर से पूछ के उसके लिए भी कोई निदान आप अवश्य रख लें।
1: बिल्कुल।
0: और चॉकलेट टॉफी अवश्य रखें कि वो आप मुँह में डालें तो उससे आपको मतली या कई समस्याएँ नहीं होंगी।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि चाहे हम तीर्थ स्थान पर दर्शन के लिए जाएं या घूमने के लिए जाएं, परिवार संग सभी सदस्य साथ हों तो वो सफ़र सुरीला हो जाता है, और अगर सफ़र ट्रेन से हो तो सोने पे सुहागा हो जाता है। इसी महीने मैं स्वयं सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्मपत्नी और बच्चे अजमेर से द्वारकाधीश जी और द्वारका, नागेश्वर, ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ जी, डकौर, मतलब जिन्होंने जहाँ जहाँ लिखा है तो ये सब दर्शनों के लिए गए, तो सब साथ में गए थे।
0: बिल्कुल सही। हमारे श्रोता लिख रहे थे कि हम अभी सब परिवार महाराष्ट्र घूमकर आए हैं, बस ढेर सारा नाश्ता, खाने का सामान, बड़ी कैन, पानी की बड़ी कैन, आवश्यक वस्तुएं, आधार कार्ड, लाइसेंस, गाड़ी के कागजात, ये सब जरूरी सामान रखे थे उन्होंने। बच्चे बड़ों के कपड़े रखे थे आवश्यकता अनुसार। जहां जा रहे थे वहां की सारी जानकारी पहले निकाल ली थी ताकि परेशानी ना हो।
1: बहुत अच्छा। अगर सबसे पहले तो ये करना चाहिए, जो आप जहां अगर आप जा रहे हैं तो पहले से आप प्लान कर लें, और उसके बाद अगर आप ये चीज़ कर सके तो पहले से ही जहां पे आपको रहना है उस जगह को आप बुक कर लीजिए, और साथ ही एक वाहन को भी, अगर आप अपने वाहन से नहीं जा रहे हैं तो साथ तो वहां पे आप किसी वाहन को भी चाहे रेंट पे ले सकते हैं किराए पे, उसको भी बुक कर लें, क्योंकि अगर आप इस ये सहूलियतें रहेंगी ना तो आप बस ट्रेन से उतरे या जहां से भी आप जिससे भी जा रहे हैं तो आप फटाफट उस जगह पे जा सकते हैं, थोड़ा आराम कर सकते हैं। बिल्कुल आराम कर सकते हैं जाके, और साथ ही फ्रेश होकर फिर आप बाहर घूमने निकल सकते हैं क्योंकि आपके पास वाहन उपलब्ध रहेगा पहले से ही। तो बच्चे अगर साथ में, परिवार जा रहा है साथ में, तो ये बहुत सहूलियत करनी जरूरी होती है।
0: बिल्कुल सही आरती। और मैं इसमें दो चीज़ें और जोड़ना चाहूँगी। पहली चीज़ तो जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ का मौसम और वहाँ के भोजन, इनका आनंद ज़रूर लीजिए। जैसा मौसम है उस मौसम का आनंद लीजिए और उसके अनुरूप ही अपना सामान रखिए। अब हम देश की यात्रा के साथ अगर विदेश की यात्रा की भी बात करें तो विदेश की यात्रा में एक चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाती है, अति आवश्यक हो जाती है, आप सभी के पासपोर्ट।
1: बिल्कुल।
0: उन पासपोर्ट को किसी ऐसी जगह पर इतना संभाल कर रखें कि कोई चाहकर भी उन्हें ना चुरा पाए, क्योंकि पासपोर्ट ही वहां पर रहना और वहां से वापस आने का सबसे बड़ा साधन आपका होता है। तो विदेश यात्रा पर जाएं तो बाकी चीजों का ध्यान वैसे ही रखें जैसा देश में घूमने के लिए जा रहे हैं, पर पासपोर्ट के लिए विशेष कोई व्यवस्था करके, अपने कपड़ों के अंदर कोई चैन लगाकर बनाकर या किसी ऐसी व्यवस्था के तहत रखें। सामान्यतः जब हम घूमने जाते हैं तो हम पासपोर्ट को अपने कपड़ों में किसी एक चैन का थैला बनवा के अंदर के तरफ ही रखते हैं ताकि वो किसी के हाथ ना लगे और वो सुरक्षित रहे।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी है
0: जी।
1: तो विधि एक गीत सुन ले।
0: बिल्कुल। और जब घूमने फिरने की बात चल रही है तो हम आपको लेके चलते हैं।

0: तो आरती, कैसे गगन के तले अगर जा रहे हो तो सुरक्षा रखना बहुत जरूरी है। तो जब सुरक्षा की बात आती है ना, तो मुझे मेरे दादाजी की वो एक बनियान याद आती है जो मेरे पापा के पास भी एक दो थी, मेरे ससुर जी भी वो पहना करते थे। उसमें अंदर ही एक जेब होता था और अच्छा। जब हम कहीं जाते थे तो वो हमें थोड़ा थोड़ा पैसा दे देते थे। यहाँ तक मैं ससुर जी के साथ जब जाती थी तो वो भी मुझे थोड़ा सा पैसा हाथ दे देते थे, ये अपने पर्स में रख लो, बाकी सारा पैसा वो उसमें अंदर रख लेते थे। और समय समय पे जब हम मांगते थे तो धीरे से कहीं किसी बाथरूम में जाते थे और निकाल के ले आते थे। तो मेरे सोने के गहने या कुछ हमने पहना है तो वो सब पापा के उसी जेब में, उसी खीसे में बोलते थे, रख जाता था। तो ये एक व्यवस्था की जा सकती है कि परिवार का एक व्यक्ति, पहले के लोग बहुत समझदार होते थे और वो समझदारी अगर हम अपना लें तो हमारी कोई चीज चोरी हो ही नहीं सकती।
1: और एक हमारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि परिवार के साथ यात्रा में मौज मस्ती के अलावा निश्चिंतता भी बढ़ जाती है। पूरे परिवार के साथ घूमने फिरने में जो मज़ा और निश्चिंतता होती है, क्योंकि परिवार के सदस्यों के साथ किसी भी तरह की औपचारिकता नहीं करनी पड़ती है। परिवार का साथ हो तो खर्चे में भी राहत मिल जाती है। वहीं मन में ये भी भाव होता है कि वेकेशन के दौरान, छुट्टियों के दौरान अगर किसी चीज़ में एक्स्ट्रा खर्च आता है तो एक साथ मिलकर संभाल लेंगे। और इसके अलावा परिवार के साथ जीवन भर की यादें भी बस जाती हैं मन में।
0: कुछ चीज़ें और मैं सतर्कता की बोल रही हूँ, तो सकारात्मक बात हमारे श्रोता कह रहे हैं। अनजान लोगों पर जल्दी से भरोसा नहीं करना, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर सतर्क रहना, बच्चों को अकेले कहीं नहीं जाने देना और सभी सदस्य एक दूसरे के संपर्क में रहें। और कहीं कई जगहों पर ऐसा होता है, पहाड़ी होती है या नदी होती है, तो उन जगहों पर विशेष ध्यान दें क्योंकि आपको उस स्थान के बारे में नहीं पता है। तो विशेष ख्याल रखें, और अगर वाहन से यात्रा कर रहे हैं तो वहां के जो यातायात के नियम है उनका पालन करें।
1: बिल्कुल,
0: रात्रि में यात्रा करने से बचें और रात्रि में सुनसान स्थानों से भी आप बहुत बचें। अगर ऐसी नई जगह पर जा रहे हैं तो सावधानी से सफर करो, सही योजना से,
1: ताकि आपका सफर अच्छा बना रहे। आप एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि जब परिवार के साथ सफर पर निकलें तो दिल में ढेर सारी खुशियां और बैग में सुरक्षा की पूरी तैयारी होनी चाहिए। और रास्ते में अंताक्षरी, घर का बना स्वाद और अपनों का साथ हर सफर को बेहद खूबसूरत और यादगार बना देता है।
0: आपने स्वाद की बात की ना, तो मुझे स्वाद से खाजा याद आ गया। मुझे तो मेरे श्रोताओं को खाजा के बारे में बताने का मन कर रहा है क्योंकि ये मेरा भी पसंदीदा रहा है। ये जो खाजा है ना, ये मुझे भी बड़ा पसंद है और इस खाजा को मैं दही के साथ खाती हूँ। अच्छा। बड़ा आनंद आता है,
1: सच में अच्छा लगता है क्योंकि मीठा है ना, और मीठा के साथ किसी जब दही मिल जाता है ना तो बहुत बहुत
0: बहुत आनंद आता है। और ये जो खाजा है ना, इसे बनाना बड़ा आसान है। मैदा, चीनी और घी, और जहाँ शुद्ध घी डल जाता है वहीं मजा अलग ही आ जाता है। तो जब अपन हम जब खाजा बना रहे होते हैं तो परतदार और कुरकुरी मिठाई जो खाजा है वो बनती है, और इसे इसे तलना होता है। तो घी, जब जब मैदा होती है या आटा होता है जिसमें आप बना रहे हैं, उसमें घी डाल के उसे मोयन डालना बोलते हैं। तो आप मोयन डालते हैं, और हम लोग कहते थे मम्मी मौन हो गई थोड़ी देर के लिए। अच्छा। मोयन डालते समय मोयन डाला जाता है और फिर परतों में बेल कर मोड़ा जाता है, और इसके बाद विशेष तरीके से उसे तला जाता है, और जब वो तल जाता है तो चाशनी में डुबो दिया जाता है। और अगर आप इसे चाशनी में ना डुबोएं तो भी आप इसे खा सकते हैं, बहुत स्वादिष्ट लगता है। और चाशनी में डुबो लें तब भी यह बहुत अच्छा लगता है। ये सिलाऊ नालंदा बिहार का ये पसंदीदा भोग है, और इसे भगवान को भोग या प्रसाद के रूप में भी चढ़ाया जाता है। और मीठा और नमकीन दोनों तरह का होता है, जो मैंने कहा मीठा वाला भी दही के साथ अच्छा लगता है और नमकीन वाला तो यम यम दही के साथ बहुत आनंद आता है।
1: बिल्कुल, और साथ ही हम आपको बता दें, एक हमारे जो श्रोता हैं उन्होंने भेजा है रसिया जो होता है ना, उसकी रेसिपी भेजी है। तो वो बताते हैं कि गुड़ का पानी तैयार करें, इसके लिए आपको एक बर्तन में 2 कप पानी और गुड़ डालकर उबालना है, और जब तक कि गुड़ पूरी तरह से पानी में घुल ना जाए इसे छानकर अलग रख लीजिए। उसके बाद जब गुड़ घुल जाता है, उसके बाद एक पैन में प्रेशर कुकर में भीगे हुए चावल और गुड़ का पानी डालिए और इसे मध्यम आंच पर पकाइए, तब तक कि जब तक कि चावल एकदम नरम नहीं हो जाता है और पानी पूरी तरह सूख नहीं जाता। इलायची और मेवे इसमें मिला सकते हैं, और जब चावल पक जाए तब इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट्स जो हैं और इलायची, जो भी आपको पसंद है वो ड्राई फ्रूट्स डालिए और इलायची का पाउडर डालिए और बहुत अच्छी तरह से इसको मिला लीजिए। और इसके बाद आप गैस को बंद कर दीजिए और मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने दीजिए, और इसके बाद इसमें ठंडा या फिर सामान्य तापमान वाला दूध मिलाइए और अच्छी तरीके से इसको चला लीजिए। और अगर इसमें क्या कहते हैं, स्वादिष्ट आपका तैयार है रसिया, और इसे गर्मा गर्म भी खा सकते हैं और इसे ठंडा करके भी परोस सकते हैं।
0: हाँ, ये फ्रिज में रख के निकालने के बाद इस गर्मी में कितना सही लगेगा,
1: बहुत अच्छा लगेगा,
0: इतना आइसक्रीम जैसा गले में, सूदिंग सूदिंग
1: बाहर की आइसक्रीम जो आप खाते ना बिल्कुल भूल जाएंगे इसको खाने के बाद
0: बिल्कुल। और वैसे ये जो स्वादिष्ट व्यंजन या पकवान है ये हमारे स्वास्थ्य को देख कर बनाए जाते हैं अरिस्तान के हिसाब से, तो हमने स्वाद वाले पकवानों की तो बात कर ली है, और अब हम क्या एक गीत सुनवा सकते हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल, सुनते हैं गीत
0: जी।

0: तो आरती,
1: अब हमारे श्रोताओं ने और भी कुछ बोला है। हाँ। कहा है जो आपको सावधानी बरतनी चाहिए वो ये है कि बच्चों के गले में आपका पूरा पता और मोबाइल नंबर और आई कार्ड आप उसमें लेके किसी कार्ड में ऐसा बना के उनके गले में डाल दीजिए।
2: हाँ।
1: बिल्कुल, जिससे कि अगर उनको कोई परेशानी या कहीं इधर वो खो जाते हैं या कोई इधर उधर हो जाते हैं वो, तो आपको सहायता मिल जाएगी, जो भी उनको लेगा वो आप तक पहुंचा देगा।
2: बिल्कुल, हमारी एक और श्रोता लिखती है आरती और निधि, तो मैंने बताना चाहती हूँ मेरा नाम विधि है।
1: हाँ, विधि
2: है, वी विक्ट्री विधि। सो वो कहती हैं कि क्या क्यों कहूँ, मुझे भी बाहर जाना है अकेले और मैं भी तुरंत पैन कार्ड इत्यादि पर्स में रख ली हूँ, हंस रही हूँ चूंकि तैयारी हो चुकी है, एक दिन हाथ में है फिर भी। ये तो बहुत अच्छी बात
1: बहुत,
2: है, ऐसे ही तैयारी करके चलना चाहिए और ऐसे ही आराम से घूमिए, बढ़िया बढ़िया खाइए और बढ़िया एंजॉय कीजिए, जिंदगी खुश रहने के लिए है। और सखी सहेली सुनते रहिए
1: सुनते रहिए।

FM बैंड 103.4 MHz पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 4 बजने को हैं और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती कार्यक्रम।

0: सेहतनामा कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को राजेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं मुंबई की सुप्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर लीजा बनर्जी से। और आज के कार्यक्रम में जो विषय है वो है थायराइड, होम्योपैथी में इसका उपचार। तो डॉक्टर साहब, विविध भारती के स्टूडियोज में आपका सेहतनामा कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार, मैं डॉक्टर लीजा बनर्जी। धन्यवाद विविध भारती को कि मुझे आमंत्रित किया गया।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका। वैसे विविध भारती का जिक्र आपने शुरू में ही किया, तो कितना पुराना नाता है डॉक्टर साहब विविध भारती से आपका?
1: सुर पहचानती हूँ तब से विविध भारती पहचानती हूँ, ये बोलना भी गलत नहीं होगा। मेरे घर पे आज भी इसका चलन है, हम बजाते हैं, सुनते हैं और ये रहेगा।
0: जी, मनोरंजन का एक बहुत ही बेहतरीन और नंबर वन माध्यम है आज के दौर में। अब हम अपने विषय पर आते हैं। आज का जो विषय प्रोग्राम शुरू होने से पहले हम जिक्र कर रहे थे थायराइड और होम्योपैथी में इसका उपचार, तो ये विषय रहेगा। दरअसल ये थायराइड जो बीमारी है इसके बारे में कई भ्रामक स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं। हर कोई दूसरा इंसान जब कुछ विपरीत अपने शरीर में लक्षण दिखाई देते हैं तो कोई भी व्यक्ति उसको सलाह देता है, कहीं थायराइड तो नहीं हो गया, इस वजह से कमजोर तो नहीं हो गए, इस वजह से मोटे तो नहीं हो रहे हो, तो ये थायराइड है क्या? इसको बड़े आसान से शब्दों में आप बताइए हमारे सुनने वालों को।
1: थायराइड एक्चुअली एक ग्रंथ ही है, मतलब ग्लैंड्स जो कि गले के सामने के भाग में पाई जाती है, स्थित है, और इसमें से सिक्रीट होती है थायरोक्सिन T3 एंड ट्राईआयोडोथायरोनिन T4।
0: जी,
1: T3 T4 ये दोनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण है विकास के लिए एंड मेटाबॉलिज्म, पाचन क्रिया।
0: जी,
1: इसका मेन फंक्शन या इसका मेन थायराइड की क्रिया ही होती है बच्चों में एवं बड़ों में विकास की, दिमागी शारीरिक दोनों विकास। मेटाबॉलिज्म मतलब पाचन क्रिया, जो आप रोजाना खाते हैं ये सारी चीजें पाचन होनी चाहिए। जब तक पाचन नहीं होगी आपके शरीर को उनके कोशिकाओं को जो चीज मिलनी चाहिए वो मिलेंगी नहीं। इसमें थायराइड का एक बड़ा रोल होता है। और ये होता कैसे है? दिमाग में एंटीरियर पिट्यूटरी करके एक
0: ग्रंथी
1: होती है, वहां से TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये सिक्रीट किया जाता है। वो ब्रेन को बोलता है कि T3 T4 कम हो गए हैं भाई, इनको शुरू करो,
0: आदेश देता है।
1: हाँ, तो जैसे T3 T4 शुरू होता है

0: ये ब्लड में जाते हैं, ब्लड से अपना जो क्रियाएं होती है वो करते हैं। एक लेवल पे आने के बाद वापस हाइपोथैलेमस कहता है कि बस हो गया, आप TSH तुम बंद हो जाओ ताकि T3 T4 अपने लेवल पे काम कर सके।
1: जी
0: जब ये बैलेंस खराब हो जाता है तब होता है थायराइड। पढ़ना, सुनना या गूगल सर्च, सोशल मीडिया काफ़ी आ गए हैं। बेटर है कि हम इनसे जितना हो सके दूर रहे, क्योंकि इंग्लिश में कहावत है फियर्स कम फ्रॉम ईयर्स, मतलब डर सुनने के माध्यम से आता है।
1: जी
0: तो आप जितना गलत सुनोगे सही सुनोगे आपको स्वयं को नहीं पता है। तो जो एक्चुअली ये सारी चीज़ों में विशेषज्ञ है उनके पास जाइए।
1: अच्छा, ये कितना सच है डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि थायराइड वाकई में हो जाता है? ऐसे चिकित्सक तो आप बताएंगी ही, लेकिन कोई व्यक्ति अगर मोटा होता है और उसका मोटापा दूर ही नहीं होता, या कोई बहुत दुबला है और दुबला होता रहता है, तो वाकई में थायराइड ग्रंथि का कोई कमाल होता है इसमें?
0: नहीं, ये तो डिपेंड करता है आपका डाइट कैसा है, मतलब आप कितना खान पीने में ध्यान दे रहे हो, कितना एक्सरसाइज कर रहे हो। मैं सोचिए पूरे दिन भर एक जगह पे बैठी हूँ और मैं खा ही रही हूँ, तो ऑब्वियसली कोई भी इंसान मोटा ही होगा। इसमें थायराइड कुछ नहीं कर रहा, तो
1: अच्छा
0: ऐसा नहीं है। डायबिटीज़ में भी इंसान पतला होता रहता है, होता रहता है। तो वही मैंने बोला ना कि सुनने पे ये मत जाइए, क्योंकि अभी डॉक्टर्स को पता है कि ये डायबिटीज़ वाला है इसलिए पतला हो रहा है, या ये थायराइड वाला है इसलिए पतला।
1: तो देखिए, कुल मिला के इस प्रश्न के उत्तर में आपने ये कहा है कि चिकित्सक से मिलिए और कंफर्म कीजिए, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि खुद ही तय ना कर लें किसी के कहने सुनने पर। और यहाँ पर ये तय करना होगा कि प्रोग्राम में बातचीत तो हमारी जारी हो चुकी है, लेकिन यहाँ वक्त है कि एक गाना सुन लिया जाए।
0: एक मेरा बहुत ही पसंदीदा गाना है, छू कर मेरे मन को किया तूने, इससे अगर शुरुआत की जाए।
1: याराना फिल्म का गाना है,
0: याराना
1: किशोर कुमार की आवाज़ में सुनते हैं।

0: गीत तो वाकई मन को छू गया है, लेकिन अगला प्रश्न हमारे दिमाग में उभरता है कि थायराइड जो है क्या कार्य करता है।
1: आज के वातावरण में इतने दौड़ भाग जिंदगी में हम क्या करते हैं, खाने पीने को साइड में रखते हैं, नेचुरल कोई भी चीज़ों को साइड में रखते हैं। हमको कैंड फूड चाहिए, हमको जंक फूड चाहिए, हमको फटाफट फास्ट फूड चाहिए, मगर हमें गर्म घर का खाना ये हम जल्दी नहीं लेते, हम अवॉइड कर जाते हैं। इसकी वजह से होता क्या है, शरीर को जो मिलना चाहिए, कोशिकाओं को जो मिलना चाहिए वो मिलते नहीं है। इसको थोड़ा बैलेंस करने के लिए अमुक विटामिन, तमुक कैल्शियम, तमुक आयरन, अमुक ये तमुक वो, ये करके करके हम जो खाते हमको लगता है कि हाँ अरे हमने खा लिया ना, मैंने रोज़ कैल्शियम के ये खाया, मैंने रोज़ वो किया है
0: सप्लीमेंट्स,
1: मगर ये सप्लीमेंट्स एक्चुअली बॉडी को मिल रहा है मुझे नहीं लगता, और ये होता भी नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी आपका शरीर एक ऐसे सिस्टम से बंधा हुआ है जहाँ पे आप जो नेचुरली चीज़ें खाते हो वो एब्जॉर्ब होती है। जो सप्लीमेंट्स, हाँ सप्लीमेंट्स कहीं ना कहीं ज़रूरी होते हैं, मगर हम आधे खाने को, आधे बैलेंस डाइट को सप्लीमेंट्स के साथ ऊपर नहीं डाल सकते, ये हम करते हैं। और ये सप्लीमेंट्स जब हजम नहीं होती है तब शुरू होता है 10 प्रॉब्लम्स। और यहाँ पे एक बार कोई चीज़ एक डिसऑर्डर में चली गई, ऑर्डर से बाहर चली गई, ऑटोमेटिक पूरा का पूरा सिस्टम बिगड़ता है। और जैसे ही सिस्टम बिगड़ता है, ब्रेन अपना सिस्टम उसको ठीक करने के में लग जाता है, तब या तो TSH बढ़ जाता है, या तो T3 बढ़ जाता है, या तो T4 बढ़ जाता है, तो उसमें आप हमारा जो विकास है दिमागी या शारीरिक विकास वो साइड में रह जाता है, क्योंकि बॉडी ज़्यादा ध्यान दे रहा है कि इसमें गड़बड़ ना हो।
0: तो देखिए, आपने जो आहार की बात की कि कई बार हम जल्दबाजी में अपना रूटीन जो प्राकृतिक आहार है, जो नेचुरल हमारी डाइट है, उससे हट के सप्लीमेंट्स पर भी डिपेंड हो जाते हैं और मन से ही हो जाते हैं कई बार, तो ये बहुत ही गलत प्रक्रिया है और इसको रोकना है, थामना है। आपके पास भी कई मरीज ऐसे आते होंगे कि अचानक बहुत जब बढ़ जाती है बीमारी तभी आते हैं।
1: हाँ, मेरे पास ज़्यादातर तभी आते हैं जब एकदम बढ़ी हुई रहती है, मतलब 10 जगहों से बोला जाता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तभी आते हैं। मैंने आज तक कोई भी एक अच्छा केस देखा नहीं है जहाँ पे मैं खुश हो जाऊँ कि ये अभी रिसेंट है
0: जी,
1: कर सकते हैं। तो मेरा सुझाव ये एक और रहेगा लोगों को कि जब भी आपको लग रहा है कि कुछ अलग हो रहा है आपके शरीर में, कुछ नॉर्मल से बाहर हो रहा है, तो अपना इलाज खुद मत कीजिए, हो सके तो अच्छे होम्योपैथ के पास जाइए, क्योंकि होम्योपैथ को एक प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ कहा जाता है, जो कि हम आगे जब डिस्कस करेंगे ये मैं और क्लियर करती जाऊंगी।
0: जी जी, आपने कार्यों के बारे में बताया कि कार्य प्रणाली किस तरह से काम करती है, लेकिन हम इसके प्रकारों पर भी एक प्रकाश डालना चाहेंगे यहाँ पर, तो उसमें कई बार आप अपने हिसाब से बताएंगी, परीक्षण भी इसमें शामिल हैं, जैसे T3 T4 के परीक्षण आप करवाती हैं, तो किस परिस्थिति में होता है, तो ये हम चर्चा करेंगे एक गाना सुनने के बाद।
1: नमो नमो जी शंकरा, केदारनाथ से।
0: जी, केदारनाथ फिल्म का बहुत ही मशहूर गाना है।

0: डॉक्टर साहब, गीत वाकई अच्छा सुनवा दिया आपने और बहुत ही माकूल था प्रोग्राम में इस समय, लेकिन प्रकारों की जहां तक बात है तो उसके बारे में आप विस्तार से अपने हिसाब से बताइए कि कितने प्रकार के इसमें थायराइड की ग्रंथियों का काम भी होता है, और फिर निदान की बात आती है तो क्या क्या परीक्षण करने आवश्यक होते हैं मरीज के लिए।
1: थायराइड, ये नाम हमने काफ़ी टाइम सुना हुआ है, बट एक्चुअल थायराइड होता क्या है ये इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है। और टाइप्स मतलब प्रकार, एक हाइपर थायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म है, काफ़ी प्रकार, जैसे ग्रेव्स डिजीज हो गया, गॉइटर हो गए, टॉक्सिक एडिनोमा हो गया, ठीक है, थायरॉयड कैंसर हो गया। बट मूलतः जो भारत में या बाकी देशों में भी जो ज़्यादातर पाई जाती है वो ज़्यादातर हाइपर थायरॉयडिज्म ही होते हैं। हाइपर थायरॉयडिज्म में होता ये है कि T3 T4 लेवल ज़्यादा हो जाता है। अभी हमें पता कैसे चले?
0: हाँ, उसके लक्षण भी दिखाई देते होंगे बॉडी पे।
1: लक्षण तो दिखाई देते हैं, मगर उसको कंफर्म करने के लिए इन्वेस्टिगेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इन्वेस्टिगेशंस का अलग एक महत्वपूर्ण बताया गया है
0: निदान।
1: इसमें आता है ब्लड। पहला जो थायराइड टेस्ट रहता है, फर्स्ट ही होता है ब्लड टेस्ट, ब्लड सीरम, T3 T4 TSH का।
0: जी।
1: अब इसमें भी दो प्रकार होते हैं, एक है टोटल T3 T4, एक होता है फ्री T3 T4। TSH वैसा ही रहता है। टोटल T3 T4 होता है जो टोटल बॉडी में आपके संचालित होती। इसमें क्या हो जाता है, TBG, थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, अगर बॉडी में ज़्यादा कम होती है तो T3 T4 भी ऊपर नीचे रहेगा।
0: अच्छा।
1: तो ये पहले के डॉक्टर्स किया करते थे, मगर इससे भी ज़्यादा एक्यूरेट फ्री T3 T4 है, क्योंकि ये डिपेंड नहीं करती किसी भी अन्य रासायनिक पे।
0: अच्छा।
1: फ्री T3 फ्री T4 ये आपको एग्जैक्टली बता सकती है कि जो पेशेंट है इसका T3 या T4 फ्री कितना है, मतलब बॉडीज में जो अत्यधिक है वो कितना है, जो कि डायग्नोसिस में हेल्प करता है। हमको पेशेंट को ठीक करना है, अंधेरे में तीर नहीं चलाना। इसके लिए इन्वेस्टिगेशन, मैं फिर कहती हूँ, होम्योपैथी में भी इन्वेस्टिगेशन बहुत महत्वपूर्ण है। अब ब्लड के बाद आ गया अल्ट्रासोनोग्राफी।
0: अच्छा।
1: फिर आता है रेडियो एक्टिव स्कैनिंग, मगर ये सारे बाद में, मतलब जैसे थायराइड कैंसर हो गया, मल्टी नोड्यूलर ये हो गए, नोड्यूल्स हो गए, इसमें सारे ये अल्ट्रासाउंड या स्कैन्स ये सारे वहाँ पे इम्पोर्टेंट होते हैं। हमें जब पता करना है कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरथायराइड या हाइपोथायराइड, ब्लड टेस्ट इज द फर्स्ट थिंग। प्राथमिक निदान जो रहेगा वो ब्लड टेस्ट है।
0: अच्छा।
1: और ये अनिवार्य है।
0: लेकिन मान लीजिए T3 या T4 में से कोई पॉजिटिव आ गया, जैसे कि आपकी यूनिट के बाहर या कम,
1: हाँ, रेंज के बाहर,
0: रेंज के बाहर, तो आप क्या मानती हैं उसको?
1: नहीं, इस पे तीन चीज डिपेंड करता है, सिर्फ T3 T4 देख के नहीं होगा, TSH भी चाहिए।
0: अच्छा, तो उसमें अगर मान लीजिए है तो क्या रेंज रहती है और क्या उसके लक्षण दिखाई देते हैं?
1: T3 और T4 अगर हायर साइड में है और TSH रेंज से नीचे है
0: जी,
1: इसको हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं।
0: अच्छा।
1: हाँ, ठीक है। और जब T3 T4 लो है और TSH हाई है तो इसे हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं।
0: जी, जी जी।
1: तो उस हिसाब से हमारे चिकित्सा जो है वो शुरू होने चाहिए।
0: हाँ, क्योंकि निदान में पता हो जाता है कि ये लेवल क्या है,
1: लेवल क्या है और पेशेंट कौन सा पेशेंट है, हाइपरथायरॉयडिज्म का पेशेंट है कि हाइपोथायरॉयडिज्म का पेशेंट, और शुरू होता है हमारा चिकित्सा।
0: जी जी। तो हम चिकित्सा की ओर बढ़ेंगे, उससे पहले आपके प्रकारों में और भी जो बातचीत है उसको लेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक वातावरण को संगीतमय बनाना होगा।
1: शुरू करते हैं, एक बहुत ही मेरा पसंदीदा गाना है, खोया खोया चांद,
0: काला बाजार,
1: काला बाजार,
0: मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत सुनते हैं।

0: डॉक्टर साहब, गाना वाकई में बहुत ही पुराने दौर में हमें लिए गया और एक पुराने मंजर को हमारे सामने ला दिया गाने ने। तो हम यही कहेंगे कि होम्योपैथी भी एक बहुत पुरानी चिकित्सा है, आज की नहीं है। तो इसमें
1: बिल्कुल
0: तो कई प्रकार के निदान के साथ साथ जब चिकित्सा में हम आगे बढ़ते हैं तो कन्फर्म हो जाते हैं कि नहीं, मरीज़ ठीक होगा ही। तो जब आपके पास जो प्रकार आप बता रही थी, इस तरह के मरीज़ ज़्यादा आपको मिले या कम वाले मिले?
1: पेशेंट हमको कभी बोल के नहीं आता कि हम हाइपरथायराइड के हैं या हाइपोथायराइड। अपने हिसाब से पेशेंट्स को सुनिए, वो क्या बोल रहे हैं। उनका जो बोलना होता है वो आधे से ज़्यादा आपको बता देगा कि क्या एग्जैक्टली चिकित्सा का तरीका जाना चाहिए। जैसे ज़्यादातर जब पेशेंट्स ये जो हाइपरथायरॉयडिज्म में होते हैं, ये 6 महीने पहले से ही इनके लक्षण शुरू हो जाते हैं।
0: अच्छा,
1: मगर लक्षण कैसे होते हैं, कहीं खाज हो गई, कहीं खुजली हो गई, कहीं बाल गिरने का जो समस्या है एलोपेशिया,
0: जी,
1: विटिलिगो मतलब सफ़ेद पैचेस, किसी को एंजाइना पेन हो रहा है, किसी का वेट एकदम कम हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, कहीं डायरिया बहुत ज़्यादा है मतलब लूज
0: अच्छा
1: मोशंस।
0: जी,
1: अब जब ये सारे पेशेंट्स डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसे समझ लीजिए मुझे चेस्ट में पेन हो रहा है, अब वो पेन अंजाइना का भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, सांस में तकलीफ हो रही है, पेशेंट जाता है कार्डियोलॉजिस्ट के पास। मैं ये
0: जी
1: बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि ये गलत है।
0: जी
1: कहीं पे किसी को डर्मेटोलॉजी का प्रॉब्लम
0: त्वचा
1: होगा,
0: रोग,
1: त्वचा रोग, तो वो त्वचा विशेषज्ञ के पास जाएगा, तो वो देखेंगे कि हाँ चलो बाल गिर रहे हैं, सिर्फ उतने तक दवाई दे के छोड़ देंगे। मगर यहाँ पे ही होम्योपैथ अपना खुद का एक अलग छाप छोड़ता है। जब एक पेशेंट मेरे पास आ रहा है और मुझे ये सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं, मुझे ये ऑलरेडी सोचना चाहिए, ये ऑलरेडी मेरे दिमाग में शुरू हो जाता है कि इसका जड़
0: इसका
1: क्या
0: रूट
1: है।
0: किधर है?
1: एग्जैक्टली रूट, जो कहते हैं ना होम्योपैथी जड़ से निकलती

0: डालता है, क्या होता है, यही होता है। मुझे दिख रहा है मेरे सामने एक पेशेंट बैठा है, वो बोल रहा है कि मेरे बदन में खुजली है, मेरा वेट लॉस हो रहा है, मतलब वज़न कम हो रहा है, मुझे भूख नहीं लग रहा है। लोगों को लगेगा कि अच्छा भाई इसको थोड़ा पेट का समस्या होगा, थोड़ा बाल का कुछ शिकायत होगा। नहीं, इसको अगर आप बैक ट्रैक करो, मतलब आप सोचते जाओ इसका जड़, तो कहीं ना कहीं आपको 10 चीज़ें रहेंगे, उसमें से आपका एक्सपीरियंस, आपका खुद का नॉलेज आपको बताएगा कि कहाँ जाना है, वो आपको दिशा देगा। तो ये होता है जड़। तब मुझे सोचना चाहिए कि थायराइड एक कॉज हो सकता है
1: जी,
0: क्योंकि डायबिटीज़ में भी ये होते हैं, मगर थायराइड एक कॉज हो सकता है। इस प्रकार से अगर हम निदान करें उस पेशेंट का उस वक्त, काफ़ी टाइम, ऑलमोस्ट मेरे केसेस में 80% तक ऐसे हो चुका है कि थायराइड इनिशियल स्टेजेस पे डिटेक्ट हो गया, तो या तो हम उसको स्लो डाउन कर ले, या तो एक्चुअली वो क्योर हो जाता है। हाँ, अगर लेटर स्टेज में जब पेशेंट्स आते हैं कि बकायदा हाइपर थायरॉयडिज्म के सिम्टम्स लेके, जो लक्षण है वो मैं बता दूंगी, तो ये लक्षण लेके तब तो उसको क्योर करना ही करना है
1: जी।
0: मैं बोल रही हूँ कि 6 महीने पहले से जब लक्षणें दिखाई देती है तब अगर ध्यान दिया तो ट्रीटमेंट या जो चिकित्सा है या उसका
1: आसान
0: जो
1: हो जाती है।
0: हाँ क्योर है वो जल्द हो जाएगा।
1: तो ये तो आपने बहुत ही गंभीर बात बताई है, लेकिन बहुत ही आसान से शब्दों में सुनने वालों को भी समझना होगा, और जो इसके मरीज़ हैं वे भी ये जान सकते हैं कि कितना आसान है। लेकिन प्रारंभिक लक्षण दिखाई देते ही चिकित्सक से सलाह लें। और अब हम यहाँ पर बढ़ेंगे अगले गाने के साथ, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
0: एक बहुत ही पुराना गाना है, मन रे तू काहे न धीरे धरे,
1: चित्ररेखा फिल्म का गाना है ये।
0: हाँ।
1: और वाकई में धैर्य रखने की जरूरत है,
0: जरूरत
1: लेकिन
0: है।
1: प्रोग्राम में तो इस गीत को अभी बजाना पड़ेगा।

0: वाकई एक बहुत ही संदेशात्मक नगमा जो आपने सुनवाया अपनी पसंद पर, मोहम्मद रफ़ी ने गाया। और चित्रलेखा, फिल्म के इस गाने को आत्मसात करते करते कई प्रश्न होम्योपैथी क्या क्या होता है वो सब मंजर सामने आने लगा। लेकिन थायराइड और होम्योपैथी में उपचार विषय पर हमारी चर्चा जारी है डॉक्टर लिजा बनर्जी के साथ। डॉक्टर साहब, इस गीत के बाद जो एक प्रश्न उभरता है वो ये है कि निदान के बारे में अभी और कुछ कहना चाहेंगी आप?
1: शुरुआत में ही आप किसी भी अच्छे होम्योपैथ के पास जाइए, तुरंत वो ठीक हो जाए। अब हमारे होम्योपैथी में तीन चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है।
0: क्या क्या है?
1: एक होता है जो चीफ सिम्टम्स है या प्रेजेंटिंग सिम्टम, मतलब तात्पुरता आप जब डॉक्टर के पास आए हो किस लक्षण के साथ आए हो। सेकंड होता है पास्ट हिस्ट्री, मतलब बचपन से लेके अभी तक आप क्या क्या बीमारी आपको हो चुकी है,
0: हिस्ट्री क्या है,
1: हिस्ट्री क्या है इसमें आपको। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगी कि आज के दिनों में हम ध्यान नहीं देते हैं, मगर कैसे होता है कि कोई भी चीज़ होम्योपैथ में कहा जाता है कि सप्रेस अगर हो गई तो वो जब बाहर निकलना ही निकलना है, जब बाहर निकलती है और बड़ा होके, मतलब और ज़्यादा होके वो आपके शरीर पे घातक होता है। एग्जाम्पल, कभी अगर हमको भूख लगती है, पेट में दर्द होता है, हम बहुत टाइम तक वो भूख को मतलब नहीं, अभी खाने का टाइम नहीं आया, जो भी है, या कभी किसी के ऊपर गुस्सा आ गया, कहीं जा रहे, डर लगा, ये थोड़ा भी हमारा जब माइंड चेंज होता है या सोचने का प्रक्रिया हमारी चेंज हो जाती है तब रासायनिक क्रियाएं शुरू हो जाती है बॉडी में। कभी हमें ध्यान में आता है, कभी नहीं आता है। तो यही सारी चीज़ें जब हम सप्रेस करते हैं, मतलब दबा देते हैं
0: जी,
1: तो वो आगे जाके बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाती है हमारे खुद के शरीर को या हम को। इसमें से आता है दो तरह के सप्रेशंस,
0: वो कैसे?
1: एक है मेंटल, मानसिक, और एक है फिजिकल।
0: जी,
1: मेंटल में कैसे होता है कि अगर मुझे अमुक व्यक्ति पे गुस्सा आया, समझिए आप पे गुस्सा आ गया, मैं वो अंदर ही अंदर रख लूँगी कि नहीं जी, मैं तो तिवारी जी को नहीं बोल सकती, बड़े है, चलो वो गुस्सा मैंने सप्रेस कर लिया। इससे होता क्या है कि कभी देखा होगा कि हिंदी में एक कहावत है, आग बबूला होना।
0: जी जी
1: तो वो आग बबूला होना या हाथ वो जो लाल हो जाता है, कान लाल होती है गुस्से से थोड़ा, तो वो होता ये है ऑलरेडी केमिकल चेंजेस या रासायनिक क्रिया आपके बॉडी में शुरू हो गई है।
0: जी जी
1: आपका ब्रेन आपको बोल रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ है, सावधान।
0: जी,
1: अब आपको कहीं किसी से डर लग रहा है या कहीं नए जगह पे जाने पे एक अलग सा एक
0: फोबिया,
1: हाँ, धड़धड़ाहट होती है, सबको होती है। तब क्या होता है, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, धड़धड़ सुनाई देती है दिल की। एक्चुअली होती है क्योंकि तब हमारा बॉडी उस हिसाब से काम करना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे किसी पे गुस्सा है तो मैं उसे मारूं या चिल्लाऊं, नहीं, ऐसा नहीं होता। मानसिक चीज़ों में सप्रेस करना मतलब है अगर आपको कुछ चीज़ें बुरी लग रही है या जो भी है उसको एक अलग ढंग से प्रस्तुत कीजिए, नहीं तो सबसे अच्छा माध्यम मेरे हिसाब से ये है गाने, म्यूज़िक इज़ अ बेस्ट थेरेपी फॉर एनीथिंग।
0: और ये भी हो सकता है कि उस माहौल से थोड़ा हट जाएं।
1: तब क्या होता है तब थ्री इडियट्स में जैसे हमने एक डायलॉग सुना होगा, हम बेवकूफ़ बनाते, ऑल इज़ वेल, वो हो जाता है, हम ब्रेन को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि भाई कुछ नहीं हुआ है,
0: सब ठीक है।
1: तो तात्पुरता ब्रेन जब नॉर्मल हो जाता है, वो केमिकल रिएक्शन सारे गड़बड़ जो हो रहे हैं वो नॉर्मल हो जाते हैं, तब देखना आपका गुस्सा भी ठंडा हो रहा है, आपके बॉडी पे असर नहीं पड़ रहा है। ये हो गया मेंटल
0: जी।
1: अब अगर हम शारीरिक बातों पे आए,
0: फिजिकल,
1: उसमें क्या होता है कि टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में रहते हैं, जैसे मैंने कहा कि जंक फूड, ये वो अलाना फलाना,
0: सारी विषैली चीजें,
1: हाँ,
0: तत्व जो है अंदर रहते हैं।
1: हाँ, तो ये सारी टॉक्सिक चीजें जब अंदर से बाहर आने की कोशिश करती है, याद रखिए नेचर, प्रकृति हमेशा अपने आप को बचाना चाहती है। कोई चीज अगर क्रिएट हो रही है या बन रही है, उसको जल्दी से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश नेचर कभी नहीं करता, प्रकृति कभी नहीं करती, शरीर भी वही है। तो जैसे ही कोई टॉक्सिक बॉडी के अंदर है, विषैली चीज़ें, वो बाहर निकलेगी। कैसे निकलेगी? ऑर्गन्स इंपॉर्टेंट है, तो ऑर्गन्स को फर्स्ट हाथ नहीं देती नेचर। बाल हो गए, फेस हो गया, मतलब स्किन हो गया, ये दो ऐसी चीज़ें हैं कि अगर थोड़ा बहुत ख़राब भी हो गया तो आपके शरीर में या ऑर्गन्स में जो महत्वपूर्ण है आपके जीवन शैली में, वहाँ पे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस वजह से जब हॉर्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं या टॉक्सिन्स बाहर निकालने होते हैं, फर्स्ट होता है स्किन, रिंग वर्म हो गया, एक्नी हो गया, सिंपल पिंपल हो गया,
0: रोम छिद्रों से निकल जाते हैं।
1: हाँ, यहाँ पे हम क्या करते हैं, 10 क्रीम लगाओ, 50 लोशंस लगाओ, पहले उसको ठीक करो भले कुछ हो जाए। अब वापस नेचर ट्राई करता कि फिर उसको निकाले, फिर हम उसको अंदर डाल देते, क्योंकि हमको बाहर से अच्छा दिखना है, अंदर कुछ भी हो जाए।
0: जी जी, जी।
1: तो यहाँ पे हो जाता है क्या कि लिवर या कोई भी ऑर्गन्स इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जैसे लिवर, किडनी, गुर्दा, मसल्स, ब्रेन, हार्ट, ये सारे एक प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो ये जब प्रॉब्लम में आ जाते हैं वो कहीं ना कहीं तो आपको इफेक्ट करने ही वाले हैं
0: जी,
1: और वहाँ से शुरू होता है प्रॉब्लम्स की सारी प्रक्रिया है, जड़, जैसे मैंने बोला था होम्योपैथी का जड़। तो इसलिए पास्ट हिस्ट्री मैंने इसलिए इतना डिटेल्स में बोला कि ये होता है पास्ट हिस्ट्री, ये भी हमें ध्यान रखना है। एंड लास्टली मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फैमिली हिस्ट्री,
0: इतिहास क्या है परिवार का।
1: परिवार का अभी जैसे आम के बीच से आम ही होगा, केला होगा नहीं, केले के झाड़ में केले ही आएंगे,
0: हेरिडिटी कैरेक्टर,
1: हेरिडिटरी। अभी जैसे अगर फैमिली में थायराइड का हिस्ट्री है, थायराइड का हिस्ट्री अगर है, जो यंग गर्ल्स होती है, जो लड़कियां जो प्यूबर्टी में जाती है, उनके चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं कि आगे के दिनों में उनको भी थायराइड होने के चांसेस है। तब होम्योपैथ का काम ये होता है कि ये भी ध्यान में रखे, अगर है तो उसको ठीक करे, अगर नहीं है तो उसको होने ना दे, प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ। ऐसे में काफ़ी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो बोलते हैं कि अरे डॉक्टर साहब आपने दवाई दी थी मगर अमुक चीज़ तो ठीक है, मगर अरे इसको फेस पे पिंपल्स आ रहे हैं। मैं बोलती हूँ आने दो, क्योंकि टॉक्सिन्स निकल रहा है, जितने टॉक्सिन्स बॉडी से निकल जाए ऑर्गन्स उतना ही ठीक रहेगा। ऑप्टिमम लेवल, मतलब जो एक्चुअल लेवल में रहना चाहिए, बैलेंस में रहना चाहिए, वो लेवल में रहेगा। और जैसे ही बैलेंस में आ जाता है ऑटोमेटिक पूरा सिस्टम बैलेंस में आता है।
0: तो फिलहाल तो हमें अपने प्रोग्राम को भी बैलेंस करना होगा, संतुलित रखना होगा। चर्चा को थोड़ा सा विराम देंगे और आपकी पसंद का एक अच्छा सा गाना यहाँ सुनेंगे।
1: अभी तो मुझे एक ही गाना याद आ रहा है, वो है तू गंगा की मौज में,
0: बैजू बावरा। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: बैजू बावरा फिल्म का ये नगमा वाकई आनंदित कर गया। और देखिए जिस तरह से गंगा की मौज में जो एक पवित्रता झलकती है, तो शरीर भी पूरी तरह से कुदरत का दिया हुआ एक पवित्र रचनात्मक पूरा व्यक्तित्व होता है। हम इसे बिगाड़ देते हैं विषैले तत्वों को आत्मसात करके, तो होम्योपैथी उससे भी बचाती है। और आहार के बारे में भी अब जानेंगे आपसे, लेकिन थोड़ा सा चिकित्सा का और आप विस्तार दे रही थी, वो क्या है?
1: अच्छा, अब आते हैं हम दवाइयों पे। हाँ, मेरा एक सुझाव रहेगा सभी से, कृपया कर खुद का इलाज खुद मत कीजिए, या दूसरों का भी सिर्फ पढ़ के गूगल पे सर्च करके सोशल मीडिया पे जाके मत कीजिए, इतना आसान नहीं है। मगर ये नाम सुनने को इजी या लक्षणें जब पढ़ेंगे, अरे हाँ ये है ना, ये अमुक में है, अरे ये तो अमुक में है, दे देते हैं, इतना आसान नहीं होता। क्योंकि जैसे मैंने कहा था, पास हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री सब जानना ज़रूरी है, प्लस इन्वेस्टिगेशन का जो ये भी जानना ज़रूरी है। हर एक दवाई हर एक जगह पे काम नहीं करती, तो हम कैसे सिलेक्ट करते हैं दवाई?
0: सही बात है,
1: दवाई तो वही है, लक्षणें भी वही है, वेट लॉस होगा, वेट गेन होगा, यहाँ पे हाइपर थायरॉयडिज्म में स्वेटिंग मतलब
0: पसीना
1: बहुत ज़्यादा आएगा, डायरिया होगा, हाइपो में उल्टा होगा। तो कैसे सिलेक्ट करते हैं कि कहाँ पे किसको देना है?
0: लक्षण देख के
1: लक्षण में भी एक स्पेशल इंगित होती है, हर एक पेशेंट एक स्पेशल इंगित स्वयं देता है, सुनने की देरी है,
0: एक इंडिकेशन होता है,
1: एक इंडिकेशन। जैसे थायरॉक्सिन का पेशेंट है, एक आयोडीन का, हम मान के चलते हैं, ये अपने ऊपर ट्राई मत कीजिएगा, मैं बता रही हूँ एज एन एग्जाम्पल। थायरॉक्सिन का पेशेंट दिखने में कैसे होता है? गोल मटोल सा, बहुत स्वेट करता हो, थोड़ा भी कुछ काम किया तुरंत उसको पसीना आता है, तुरंत वो वीक हो जाता है, ठीक है।
0: थोड़ी मेहनत करने पे ही वो थक जाता है,
1: बहुत जल्दी थक जाता है, ठीक है। मैंने जैसे पहले कहा था, ब्लड टेस्ट इन्वेस्टिगेशन आ गया, अब होता है पेशेंट डायग्नोसिस, मुझे ये पेशेंट डायग्नोस करना पड़ेगा।
0: क्या बात है,
1: पेशेंट डायग्नोसिस होम्योपैथी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि अमुक पेशेंट अमुक मेडिसिन का है, तमुक पेशेंट तमुक मेडिसिन का है। तो ये कैसे पता चलेगा? पेशेंट के हिस्ट्रीज लेके और पेशेंट के प्रेजेंट सिम्टम्स लेके, और वो जिस तरीके का मानसिक विचारधारा रखता हो। थायरॉक्सिन का पेशेंट बहुत उग्र होगा, गुस्सेल, आयोडीन का पेशेंट उसी, अगर उससे देखा जाए, वो बेचारा सा
0: मायूस
1: सा बेचारा, हर एक चीज पे थोड़ी थोड़ी चीजों पे मेरा कुछ नहीं हो सकता, ये सारी चीज़ें उसमें होती। अब यहाँ पे आता है, जब मुझे पेशेंट डायग्नोसिस करना पड़ता है, मैंने थायरॉक्सिन को आयोडीन और आयोडीन को थायरॉक्सिन अगर दे दिया तो मेरे काम बिगड़े, मगर पेशेंट सफरर है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि सेल्फ मेडिकेशन या स्वयं को दवाई देना प्लीज बंद कर दीजिए।
0: डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक प्रश्न और उभरता है, हम कई बार देखते हैं बहुत ही मोटा सा व्यक्ति है, बहुत उसको पंचकर्म की क्रिया दे दी गई है, नेचुरोपैथ ये वो, लेकिन वो मोटा ही रहता है, और वो जब भी पूछते हैं तो बोला थायराइड का प्रॉब्लम है। तो एक तो ये बात, तो ये थायराइड में मोटा होना या एकदम अत्यंत दुबला या कृश हो जाना, ये क्यूरेबल है?
1: क्योंकि जैसे ही आप थायराइड क्यों है, कारण क्या है, ये जैसे ही आप ठीक कर रहे हो, ऑटोमेटिक वो अपने नॉर्मल में आ रहा है, नॉर्मलसी जिसको कहते हैं, मतलब
0: सामान्य अवस्था में आ रहा है।
1: सामान्य अवस्था। डिजीज होता क्या है? डिस ईज, जब आपका ईज या आपका कंफर्टेबल लेवल जब खराब होता है, ईज

0: ईजनेस खराब होता है उसको डिस ईज कहा जाता है। तो जैसे ही वो जड़ से ठीक होने लगता है, जब उसके ऑलरेडी जो गड़बड़ चल रही है वो ब्रेन में चले, माइंड में चले, कहीं पे भी चले
1: जी,
0: ये जैसे ही ठीक किया जाता है, वैसे ही ऑब्वियसली उसका जो सामान्य रूप से पूरी तरह से वो ठीक होके अपना सामान्य जीवन यापन कर सकता है।
1: जी जी। और अब देखें कि इसमें कई बार आहार भी काम करता है, जो इस तरह की थायराइड की आने वाली आगामी जो बीमारियां हैं उससे बचाव भी होता है उसका। तो आप क्या कहेंगे कि डाइट और प्रिवेंशन के बारे में क्या कहना?
0: कोई भी पैथी अगर कहे कि मैंने ही सब कर लिया, एकदम गलत, क्योंकि सिर्फ पैथी, सिर्फ दवाइयाँ कुछ नहीं करती, कर ही नहीं सकती। इसमें डाइट का मतलब आहार का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता ही है। सिर्फ डाइट अगर बोलूँ तो गलत होगा, साथ में होते हैं एक्सरसाइज मतलब व्यायाम। व्यायाम मतलब ये नहीं कि आप जिम में जाओ, अमुक वेट्स लो, तमुक करो, कोई ज़रूरत नहीं है। आप रोज़ाना 5 से 7 किलोमीटर चलो, सीजनल फ्रूट,
1: कोई भी मौसमी एक जो फल है खाना, वो खाना चाहिए,
0: खाना हो या फल हो ये खाइए, और पानी। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगी, लोग पानी जब बोलते हैं तो बोलते हैं ज़्यादा पानी पियो, ज़्यादा पानी पियो, शरीर ठीक रहेगा, बिल्कुल नहीं। 2.5 से 3 लीटर काफ़ी है आपके बॉडी के लिए। इससे जब ज़्यादा पानी पियोगे, एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी, आपकी खुद की कैपेसिटी अगर होगी, मेरी खुद की कैपेसिटी है 2 किलो चीज़ उठाने की, मुझे 3 किलो दे दिया जाए मैं उठा लूँगी, मुझे 10 किलो दे दिया जाए क्या मैं उठा पाऊँगी?
1: बहुत प्रेशर पड़ेगा।
0: यही प्रेशर हमारे इंटेस्टाइन्स, किडनीज पे स्पेशली पड़ता है जब हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करते हैं। किडनीज सिर्फ फिल्ट्रेशन का काम नहीं करता, T3 किडनीज लिवर से भी प्रोड्यूस होती है।
1: ओहो,
0: यस, इसलिए मैंने ये यहाँ पे जिक्र किया। और जब किडनीज अगर काम नहीं कर रही है तो 10 चीज़ें होंगी ही होंगी, T3 पे भी असर पड़ेगा।
1: तो ये सावधानी बहुत ज़रूरी है रखना। और आपका जो टोटल इन ऑल कहना ये है कि वो कॉमनली कहा जाता है कि ज़्यादा पानी पिए, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार
0: उतना ही।
1: लेकिन आहार में ये बात तो मानती है, आज की जो लाइफ स्टाइल है, जीवन शैली है, उसमें जंक फूड वगैरह भी इसमें
0: सबसे पहला चीज़ जो लोगों को बंद करना चाहिए वो है अजीनोमोटो,
1: जो चाइनीज फूड में ज्यादा इस्तेमाल होता है। बिल्कुल सही बोला,
0: अजीनोमोटो बंद कर दीजिए, फास्ट फूड्स कम कर दीजिए,
1: और कुछ नहीं तो सामान्य खाना खाइए।
0: हाँ, कम कर दीजिए, मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि बंद कर दीजिए, एक्चुअली बंद करनी चाहिए, अगर नहीं हो रहा है कम कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप कम करेंगे ऑटोमेटिक आपका शरीर पॉजिटिव दिशा में जाएगा। और मेरा सुझाव एक रहेगा लोगों से, जितना हो सके अपने माइंड को थोड़ा नियंत्रण पे रखिए, मतलब थोड़ा सैक्रिफाइस अगर हम करना शुरू हो जाए,
1: कंट्रोल
0: करना शुरू हो जाए, सैक्रिफाइस मतलब अपना स्वार्थ थोड़ा सा हटके देख लेना, जैसे ही आपका मन शांत रहेगा, आपकी सोच अच्छी होगी, शरीर ऑटोमेटिकली उसी दिशा में उस हिसाब से अच्छा ही चलेगा,
1: क्योंकि उसी हिसाब से उसको आदेश प्राप्त होंगे।
0: हाँ, हम जैसे बोलते हैं कि ब्रेन ने वो आदेश दिया, मैंने जैसे पहले कहा कि ब्रेन को आदेश मिलता है कि TSH चालू करो, बंद करो, एक्चुअली ब्रेन देता है क्या, मन देता है। मन को आप ब्रेन के अंदर रिलेट मत करना, वो अलग चीज होती है।
1: हमारे जो कार्यक्रम का मन इस समय कह रहा है कि आदेश दे रहा है दरअसल कि एक गाना अच्छा सा हो जाए,
0: एक अच्छा सा गाना चलते चलते मैं हूँ।

0: डॉक्टर साहब, बहुत ही झूमता मचलता बहलाता कदमों को थिरकाता नगमा आपने सुनवाया झुमरू फिल्म से और किशोर कुमार की आवाज़ में। देखिए, समापन की ओर बिल्कुल नज़दीक है हमारा प्रोग्राम। चलते चलते आज के हमारे विषय पर हमारे सुनने वालों को आप क्या मैसेज, संदेश या सलाह देना चाहेंगी?
1: एक है कि पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए, दूसरों के लिए नहीं तो खुद के लिए, खुद के शरीर के लिए। दूसरों के लिए भी अच्छा सोचिए, खुद के लिए भी अच्छा सोचिए। आप जितना अच्छा सोचोगे, आपके शरीर की जो रासायनिक क्रिया है उतनी ही पॉजिटिव आएगी। और इससे होगा क्या, हमारे आने वाले जेनरेशंस को हम एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट या एक अच्छा जगह दे पाए जहाँ पे वो पनप सके। मेरे जो गुरु है, जिन्होंने आज मुझे सिखाया है कि होम्योपैथी का मतलब क्या, कैसे सेवा की जा सकती है, कैसे ठीक करके हम, ये एक अलग ही खुशी मिलती है पेशेंट को ठीक करने की। ये जो खुशी मिलने का जो राह है वो मेरे गुरु ने मुझे दिखाया है। मेरे गुरु और कोई नहीं, मेरे डैड है, डॉक्टर एस बैनर्जी, एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। और एक बार फिर विविध भारती को तहे दिल से शुक्रिया करूँगी मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी मुलाकात मुंबई की सुप्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर लीजा बनर्जी के साथ। आज के प्रोग्राम में चर्चा का विषय था थायराइड होम्योपैथी में उपचार। इस विषय पर ये कार्यक्रम आपने सुना और उम्मीद है आप प्रतिक्रिया देंगे तो हमें पता चलेगा प्रोग्राम आपको कैसा लगा। चलते चलते आपको बताना चाहेंगे, आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोगी भावना सिंदल, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रामकरण मीणा। और अब दीजिए आज के सेहतनामा कार्यक्रम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।

आज के पिटारे में था सेहतनामा, जिसकी बारी पिटारे में हफ्ते में सिर्फ एक दिन आती है। वैसे पिटारा तो सातों दिन खुलता है, हर रोज सुनिए।

0: और ये गाथा कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की।
1: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 5 बजने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार और 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में अब से कुछ देर में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित हैं। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
3: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जन सेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
2: सरकार देश में पेट्रोल उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही।
4: रिफाइनरी प्रोडक्शन एलपीजी का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले 4 दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले 4 दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
2: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के कुशल मंगल के लिए लगातार उनके संपर्क में है। श्री जायसवाल ने कहा कि मंत्रालय खाड़ी क्षेत्र में बड़ी संख्या में मौजूद अपने नाविक समुदाय को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। उर्वरक विभाग की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारतीय खेल प्राधिकरण अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा समूह की अध्यक्ष डॉक्टर शिल्पी साहू के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री प्रधान ने बताया कि उन्होंने आधारभूत शिक्षा को मजबूत करने, शिक्षा को अधिक कौशल उन्मुख बनाने और भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर चर्चा की। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा कि ये दुख की बात है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा है। न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा और आलोक अराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए परीक्षा एजेंसी की जगह किसी ज्यादा मजबूत और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका और ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध को फिर से खोलने के लिए वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति की है। संवाददाताओं से बातचीत में मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रारंभिक समझौता व्यापक वार्ता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अमरीका के विदेश मंत्री 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में अब पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये वृद्धि हुई है। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता का शुभारंभ आज नॉर्वे के ओस्लो शहर में हो रहा है। टूर्नामेंट भारतीय समय

अनुसार रात 8:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए 3 दिन का लू का येलो अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी में तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Good evening. This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. President Draupadi Murmu is presenting the Padma Awards at the first civil investiture ceremony at the Rashtrapati Bhavan. Padma Awards, one of the highest civilian awards of the country, are conferred in three categories: Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri. In the first civil investiture ceremony of 2026 today, the President is to confer 66 Padma Awards, including 2 Padma Vibhushan, 6 Padma Bhushan and 58 Padma Shri. The remaining Padma Awards will be given in the second round of the civil investiture ceremony to be held later. The government is making all efforts to ensure smooth supply of petroleum products within the country. Addressing the interministerial briefing in New Delhi today on the recent developments in West Asia, Joint Secretary in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Sujata Sharma, said that refinery production of LPG in the country has been increased to 50,000 tons per day. Ministry of External Affairs spokesperson Randhir Jaiswal said that the ministry is extending all possible help to its seafaring community, which is in large numbers in the Gulf region. Mr. Jaiswal also highlighted Prime Minister Modi's visit to the United Arab Emirates.
1: Several key agreements were signed during the visit, which have given a boost to India's energy security, in particular on supplies of LPG, as also strengthening our strategic petroleum reserve. There were agreements on investments, so flow of fresh investments from Abu Dhabi, from UAE to Indian entities in infrastructure and other sectors. In addition, we also signed a framework for the defense strategic partnership, which has again given a boost to our defense partnership with UAE.
0: Additional Secretary of the Department of Fertilizers, Aparna Sharma, said that the overall stock position of fertilizers in the country remains comfortable. In Tamil Nadu, political developments within the opposition AIADMK took a dramatic turn today, as three MLAs belonging to the dissent group led by senior leader S.P. Velumani tendered their resignations from the assembly and joined the ruling Tamaraga Vetri Karagam or TVK. The resignations were submitted by Maragartham Kumaravel from Madurantakam, Jaya Kumar from Perundurai and Satyabam from Dharapuram. Supreme Court has issued notice to the Union Government on a PIL seeking stricter prohibition of child labour in entertainment and hospitality-linked establishments. A bench comprising Chief Justice Suryakant and Justice Joy Malia Bakchi and Justice Vipul M. Pancholi took note of the submissions made by Child Rights Collective, Just Rights for Children Alliance. The bench also directed the NCPCR to formulate a standard operating procedure for rescue and rehabilitation of children while terming the situation as serious. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman today called for increased focus on the three Fs, that is fuel, fertilizer and forex, amid the ongoing West Asia crisis, while asserting that the Indian economy remains resilient. Speaking at an event in Mumbai to mark the 37th anniversary of the Small Industries Development Bank of India, or SIDBI, Ms. Sitharaman launched a set of strategic portals and initiatives aimed at strengthening the MSME ecosystem, enhancing last-mile credit delivery, and accelerating the modernization of rural industries. Indian tourists will continue to enjoy visa-free travel to Sri Lanka without paying tourist visa fees after the Sri Lankan government introduced a free electronic travel authorization or ETA scheme for citizens of 40 countries, including India, from today. Till now, Indian travelers were required...
2: Shrimati Hema Malini, Padma Vibhushan prapt karne jaati hui.
3: Shri Dharmendra served as a Member of Parliament in the 14th Lok Sabha, representing the Bikaner constituency in Rajasthan from 2004 to 2009. And he was known for his emotional bond with his constituents.
4: Dr. Shrimati N. Rajam, Kala Violin.
2: 87 varshiya Dr. Shrimati N. Rajam Bharatiya Shastriya Sangeet ki pehchan hai aur violin ke kshetra mein.
3: Beyond her illustrious performing career, Dr. Rajam served with distinction as a professor in the Faculty of Performing Arts at the Banaras Hindu University for nearly 4 decades and rose to become the head of department and subsequently dean of faculty, earning the prestigious title of Emeritus Professor by BHU.
4: Padma Bhushan, शतावधानी डॉक्टर आर गणेश कला अवधान।
2: अवधान के विशेषज्ञ 64 वर्षीय शतावधानी डॉक्टर आर गणेश कलम और कागज की किसी भी सहायता से उसकी सहायता के बिना छंद लिखते हैं और इन्होंने 1300 से ज्यादा अष्टावधान और 5 शतावधान लिखे हैं और 70 से ज्यादा पुस्तकें भी।
3: Dr. R. Ganesh is also a prolific author, having more than 70 books to
4: Shri
3: his credit.
4: Shri Bhagat Singh Koshyari, Lok Karya.
2: Bhagat Singh Koshyari, जिन्हें भगत दा के नाम से जाना जाता है, आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे, 74 वर्षीय और लोक सेवा का अनूठा काम किया है, राष्ट्रवादी नेता हैं।
3: श्री कोश्यारी स्टार्टेड टीचिंग एट सरस्वती शिशु मंदिर कासगंज उत्तर प्रदेश वेयर ही वर्क्स टू इंपार्ट भारतीय वैल्यूज अलोंग विद मॉडर्न एजुकेशन टू यंग चिल्ड्रन।
4: श्री उदय सुरेश कुमार कोटक, व्यापार एवं उद्योग।
2: 67 वर्षीय कोटक, आपने कोटक महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड से शुरुआत की और आज कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड जैसा एक बड़ा आयोजन इन्होंने किया है।
3: श्री कोटक हैज प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिफाइनिंग एंड डेवलपिंग इंडियाज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर ओवर 4 डेकेड्स एंड ही लीड्स सेवरल की बॉडीज सर्विंग एज को चेयरमैन ऑफ द इंडो यूके फाइनेंशियल पार्टनरशिप।
4: कुमार मल्होत्रा मरणोपरांत लोक कार्य, उनके पुत्र श्री अजय कुमार मल्होत्रा।
2: बीते 30 सितंबर 2025 को श्री मल्होत्रा का निधन जरूर हो गया था, लेकिन आप एक खेल प्रशासक थे और एक राजनीतिज्ञ और अकादमिक भी थे। उनके बिहाफ पर अजय कुमार मल्होत्रा पद्म भूषण प्राप्त करते।
3: A pioneer in sports, Professor Malhotra served over 40 years as the president of Archery Association of India.
4: Ramaswamy Palniswamy, Chikitsa Gastroenterology.
2: 77 वर्षीय डॉक्टर पलनी स्वामी देश के प्रतिष्ठित गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट हैं। आपने 2007 में पद्मश्री सम्मान भी प्राप्त किया था।
3: He also served as president of the Society for Gastrointestinal Endoscopy of India, where he initiated a task force to form
4: श्री
3: guidelines.
4: श्री पीयूष पांडे मरणोपरांत कला विज्ञापन, उनकी पत्नी श्रीमती नीता जोशी।
2: पीयूष पांडे कौन नहीं जानता उन्हें, विज्ञापन की दुनिया में एक अनूठा नाम। 70 वर्ष की उम्र में 24 अक्टूबर 2025 को इनका निधन हो गया। नीता जोशी उनके बिहाफ पर ये पुरस्कार प्राप्त करती हैं।
3: श्री पांडे वाज नेम्ड एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एडवर्टाइजिंग मैन इन इंडिया बाय द इकोनॉमिक टाइम्स।
4: श्री विश्वबंधु मरणोपरांत कला लोक नृत्य, उनकी पत्नी श्रीमती इंदु देवी।
2: विश्वबंधु जी लोक कला के एक बड़े अनूठे हस्ताक्षर थे और बिहार में लोक कलाओं की, खास तौर पर लोक नृत्यों की बहुत सेवा की। 95 वर्ष की उम्र में आपका निधन जरूर हो गया, लेकिन राष्ट्र आज कर रहा है उनका सम्मान पद्मश्री देकर मरणोपरांत।
3: श्री विश्वबंधु वाज द फाउंडर ऑफ सुरंगन, वन ऑफ बिहार्स मोस्ट रिस्पेक्टेड कल्चरल इंस्टीट्यूशंस एंड रिमेन सो ओवर 6 डेकेड्स।
4: श्री भरत सिंह भारती कला लोक गायन।
2: भरत सिंह भारती 90 वर्ष की उम्र में भी आप सांस्कृतिक विरासत और खास तौर पर भोजपुरी गायन और भोजपुरी लोक शैलियों का अभी भी संरक्षण कर रहे हैं। आपने गुलाबी रंग का जैकेट पहना हुआ, सबका अभिवादन करते हुए और राष्ट्रपति जी के सामने जाते हुए गुरुजी का इन्हें संबोधन दिया जाता है।
3: श्री भरत सिंह भारती रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द सागर फेस्टिवल इन मॉरिशस इन 1987 व्हेयर हिज एल्बम पुरबिया तान वाज रिलीज्ड। He has also guided a new generation of artists as a judge and mentor.
4: Shri Tagaram Bhil Kala Algoza Vadan.
2: Jaisalmer ki Tagaram Bhil Algoza bajate hain, kitna sundar saaz jo ki sheesham aur kair ki sukhi lakdi se bana hota hai. Inhone Jaisalmeri pattu pehna hai aur upar Jaisalmeri safa chundri ka.
3: Shri Tagaram is the recipient of numerous awards and honors and appreciation certificates. He has received a Maharawal Girdhar Award in 2013 by Maharawal Girdhar Trust Jaisalmer and many, many other awards. He got many opportunities.
4: Harmanpreet Kaur Bhullar, Khel Cricket.
2: कौन नहीं जानता हरमनप्रीत कौर को, जिन्होंने राष्ट्र के लिए विश्व कप की ट्रॉफी उठाई थी। 37 वर्षीय हरमनप्रीत कौर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान, सुनहरे रंग का परिधान पहना हुआ राष्ट्रपति जी के सामने जाकर अपना पद्मश्री स्वीकार करती हुई।
3: Her achievements have not only strengthened India's presence in international cricket, but have also contributed significantly to the growth.
4: Shri Ratilal Mohanlal Borisagar, Sahitya evam Shiksha.
2: 88 साल के हैं रतिलाल मोहनलाल बोरीसागर, और गुजरात में कितने ही बच्चों के चेहरों पर इन्होंने मुस्कान पैदा की है, क्योंकि ये कॉमिक्स और हास्य लेखन के लिए मशहूर हैं।
3: Yes, he has received many awards and honors, and after 36 years, his students have established a foundation in 2011 for literary and educational activities. He's also written a biography, Raman Bhai Nilkant.
4: Shri Kumar Bose. कला तबला।
2: कुमार बोस तबले में एक बहुत बड़ा नाम है। आप 4 अप्रैल 1954 को जन्मे थे और पिता विश्वनाथ बोस से सीखा, लेकिन बाद में ये पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज के भी शागिर्द रहे।
3: श्री बोस's quiet dignity, ethical integrity and unwavering commitment to classical values have earned him top grade status in All India Radio, the Sangeet Natak Academy Puraskar and Pandit Dinanath Mangeshkar Award, along with immense respect within the artistic community.
4: Shri Janardan Bapurao Bothe, Samaj Seva.
2: मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता हैं बोथे जी, 77 साल के हैं, और पूज्य राष्ट्र संत टुकड़ो जी महाराज द्वारा स्थापित पवित्र गुरुकुंज आश्रम में आप सेवा दे रहे हैं।
3: श्री बोथे कंपनीड राष्ट्र संत श्री टुकड़ो जी महाराज ऑन सिग्निफिकेंट विजिट्स अक्रॉस इंडिया, इंक्लूडिंग गोवा, राष्ट्रपति भवन, मेजर कुंभ मेलास, साधु सम्मेलन एंड द फाउंडिंग मीटिंग ऑफ संस्था ऑफ द विश्व हिंदू परिषद इन मुंबई। He has also served as full-time personal secretary
4: Swami Brahmadev Samaj Seva.
2: Swami Brahmadev, 82 साल के हैं आप, श्रद्धे हैं, राजस्थान के श्री गंगानगर से आते हैं, और आपने राष्ट्र के कई अंचलों में आध्यात्मिक मार्गदर्शन भी दिया है और समाज की सेवा भी की है।
3: And during spiritual practice while completing bachelor degree at college in Amritsar, which was adjacent to a blind school, being compassionate with blind children, he decided to dedicate his life for upliftment of specially abled children. Swami Brahmadev.
2: केसरिया रंग का आपने साफा पहना है और केसरिया ही परिधान है। राष्ट्रपति जी के सामने उन्हें अभिवादन करते हुए ये संत पद्मश्री से सम्मानित होता हुआ।
4: श्री प्रोसेनजीत चैटर्जी, कला फिल्म अभिनय।
2: प्रोसेनजीत चैटर्जी, इन्हें बूम्बा दा नाम से ज्यादा जानते हैं, और भारतीय सिनेमा की एक अनूठी पहचान इन्होंने बनाई है, और खास तौर पर बंगाली सिनेमा में आपने बहुत काम किया है, और दूसरे के लिए आपको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला है।
3: In the digital era, Shri Chatterjee successfully reinvented himself through Hindi streaming projects like Jubilee, Scoop and Khaki.
4: श्रीमती देवकी अम्मा जी, समाज सेवा।
2: वन उत्पादक हैं आप, 82 साल की हैं, लेकिन रुकी नहीं है, वन दादी नाम से जानी जाती हैं। 3,000 से ज़्यादा पेड़ों और स्वदेशी औषधियों और दुर्लभ पौधों की प्रजातियों को बचाने का काम आपने किया है, और केरल के अलपुआ से आती हैं।
3: श्रीमती देवकी अम्मा relied on traditional knowledge and close observation of soil and climate conditions for growing plant saplings, and used mulching, organic manuring from home cattle, careful retention of leaf litter and

0: thoughtful water management. She was also conferred the Nari Shakti Puraskar in 2018.
1: डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले एवं श्रीमती सुनीता गोडबोले चिकित्सा।
2: डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले और उनके साथ सुनीता गोडबोले, आप एक
1: डॉक्टर सामाजिक
2: कार्यकर्ता हैं, 66 साल के हैं और आदिवासी समुदायों के लिए खास तौर पर छत्तीसगढ़ में आपने बहुत काम किया है।
0: In 1990, soon after their marriage, Dr. Godbole and his wife, Srimati Sunita Godbole, decided to move to Bastar to serve tribal communities medically.
1: Srimati Sunita Godbole.
2: ये भी कितना गौरव का क्षण है। उनके साथ आ रही हैं सुनीता गोडबोले। एक साथ दोनों को पद्मश्री मिलता हुआ। आपने भी समाज के लिए बहुत कार्य किया है और ख़ास तौर पर अपने पति डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले के साथ महाराष्ट्र में 12 साल और छत्तीसगढ़ में 30 सालों से आपने सेवा की है।
1: श्री तेची गुबिन, समाज सेवा।
2: अरुणाचल प्रदेश से आते हैं और वास्तुकार और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आपने बहुत ही कार्य किया वहाँ पर और पारंपरिक अरुणाचली परिधान पहनकर, जिसमें सिर पर पंख भी है हॉर्नबिल का, नमस्कार करते हुए तेची गुबिन 62 वर्षीय पद्मश्री प्राप्त करते हुए।
0: श्री गोबिन ऑर्गेनाइज्ड एंड लेड द सीमांत दर्शन यात्रा इन 2010 एंड 2021, विजिटिंग रिमोट विलेजेस बॉर्डरिंग चाइना, म्यांमार एंड भूटान। ही आल्सो लेड अ टीम ऑफ डेलीगेशंस टू मीट द वाइस प्रेसिडेंट टू रिपोर्ट ऑन द सिक्योरिटी।
1: डॉक्टर एच वी हांडे, चिकित्सा।
2: 99 साल के हैं आप और ध्यान रखिए 99 वर्षों से इस शख्स ने भारत की सेवा की है। मशहूर चिकित्सक हैं और साथ में राजनीतिज्ञ भी हैं, लेकिन इन सब के अलावा डॉक्टर हंडे ने संपूर्ण कंब रामायण, जो कि तमिल में है मूल रूप से, उसका अंग्रेजी गद्य में अनुवाद भी किया है। राष्ट्रपति जी के ADC उनका हाथ पकड़ कर ले जाते हुए उन्होंने हल्के हरे रंग का जैकेट पहना है और राष्ट्रपति जी का अभिवादन करते हुए आगे अपना पद्मश्री प्राप्त करने के लिए धीरे धीरे जाते हुए।
0: While Dr. Hande was the health minister of Tamil Nadu between 1980 and 1986, he brought the state into the first slot consecutively for 3 years in reducing infant mortality rate and maternal mortality rate, in drastically reducing the incidence of leprosy and other communicable diseases. Thereafter, he received the prestigious Dr. B.C. Roy Award.
1: Shri Ghafruddin Mewati Jogi, Kala, Bhapang Vadan.
2: राजस्थान में अलवर से गफरुद्दीन जी आते हैं। इन्होंने राजस्थानी साफा पहना है, नमस्कार करते हुए जाते हुए जोगी परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं और भपंग बजाते हैं, जिसे महादेव का वाद्य कहते हैं, और ख़ास तौर पर महाभारत और कृष्ण लीला अली बख्शी परंपरा जैसी कथाओं का वाचन करते हैं।
0: वेल थ्रू हिज सस्टेन्ड आर्टिस्टिक प्रैक्टिस, श्री गफरुद्दीन हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द प्रिजर्वेशन ऑफ नियरली 20 इंडेंजर्ड फोक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड ओरल नैरेटिव ट्रेडिशंस। हिज वर्क हैज सपोर्टेड एकेडमिक रिसर्च इंक्लूडिंग PhD लेवल स्टडीज।
1: हाजी कासम, कला, ढोलक।
2: 75 साल के मीर हाजी कासम, इन्हें हाजी रामकडू नाम से बुलाते हैं, आप जूनागढ़ के एक महान और मशहूर लोक संगीतकार हैं। 75 वर्ष के हो चुके हैं, लेकिन इन्होंने पूरा जीवन गुजरात के पारंपरिक संगीत को समर्पित किया है और ख़ास तौर पर बहुत अच्छी ढोलक बजाते हैं।
0: श्री कासम हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन कैरिंग गुजराती फोक म्यूजिक टू ग्लोबल ऑडियंसेस, परफॉर्मिंग अक्रॉस कंट्री सच एज द USA, UK, साउथ अफ्रीका, कनाडा, UAE, ओमान एंड सेवरल अदर्स। He has also received many state-level honors, including the Gujarat Gaurav Puraskar, Gujarat Rajya Sangeet Natak Academy Award, Gujarat Lokala Rashtriya Puraskar.
1: Shri Raghuveer Khedkar, Kala Theatre.
2: रघुवीर खेड़कर को महाराष्ट्र के लोग अच्छी तरह जानते हैं। आप एक मशहूर तमाशा कलाकार हैं और तमाशा की एक मंडली भी चलाते हैं और लोक कला और खास तौर पर मराठी लोक कला को संरक्षित करने के लिए कटिबद्ध हैं।
0: ड्यूरिंग द COVID-19 पैंडेमिक, व्हेन पब्लिक परफॉर्मेंसेस हॉल्टेड एंड मेनी आर्टिस्ट फेस्ड हंगर एंड अनएम्प्लॉयमेंट, श्री खेड़कर स्टूड अप एज अ स्टॉन्च एडवोकेट। He led appeals for financial support and leveraged solace and solidarity for folk artists.
1: Shri आर कृष्णन किटना।

0: मरणोपरांत कला कुरुम्बा ट्राइबल पेंटिंग उनकी पत्नी श्रीमती सुशीला कृष्णन।
1: आर कृष्ण किटना जिनका 20 मार्च 2025 को निधन हो गया था। आप तमिलनाडु से आते हैं और बचपन से ही चित्रकारी करते आए थे और दीवारों पर इन्होंने बहुत चित्र बनाए। सुशीला कृष्णन उनकी पत्नी पद्मश्री प्राप्त करती हुई।
2: श्री आर कृष्णन किटना इज नोन फॉर यूजिंग नेचुरल पिगमेंट्स इन हिज आर्ट फॉर्म एंड हिज स्किल्स एज अ स्टोरी टेलर। ही इज
0: प्रोफेसर डॉक्टर लार्स क्रिश्चियन कोच कला म्यूजिकोलॉजी।
1: एथनो म्यूजिकोलॉजिस्ट हैं आप, बंगाल से प्रेम करते हैं और ख़ास तौर पर गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के साथ इनका एक आत्मिक संबंध है। बॉन में टैगोर इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ाई की और शांति निकेतन पश्चिम बंगाल से भी जुड़े रहे।
2: प्रोफेसर कोच इज डायरेक्टर ऑफ द स्टेट एथनोग्राफिक कलेक्शंस इन द स्टेट आर्ट कलेक्शंस सैक्सोनिया इन ड्रेसडन जर्मनी सिंस अक्टूबर 2025।
0: प्रोफेसर मामीडाला जगदीश कुमार साहित्य एवं शिक्षा।
1: 66 वर्षीय जगदीश कुमार, आपने एनसीईआरटी में बहुत काम किया है, सुप्रसिद्ध शिक्षाविद है और राष्ट्र की जो शिक्षा नीति है उसमें भी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
2: वेल प्रोफेसर मामीडाला जगदीश कुमार फ्रेम्ड एंड ऑपरेशनलाइज्ड मॉडल्स अंडर एनईपी 2020 एंड द 4-year अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम विद फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर and the academic bank of credits.
0: Shri
2: as well.
0: Praveen Kumar, Khel Athletics Divyang.
1: Aur ab bari is 23 varshiya khiladi ki T44 unchi kood mein vishw mein aap number 1 hain aur para olympic padak jeetne wale sabse kam umr ke bharatiya para athlete hain Praveen Kumar.
2: Shri Praveen Kumar went on to claim gold at the World Para Athletics Grand Prix with a leap of 2.05 meters, setting an Asian record. At Tokyo Paralympics, he won a silver medal.
0: Shri K. Vijay Kumar, Civil Seva.
1: Vijay Kumar ji, CRPF के पूर्व महानिदेशक रहे हैं और संकटपूर्ण मिशनों में आपने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
2: As Commissioner of Chennai, Shri K. Vijay Kumar reformed crime control practices, cracked down on organized gangs and enhanced public safety and reduced road fatalities by 40%. As additional DG Law and Order, he strengthened public safety strategies.
0: Devba Lard, Dada Lard, Krishi.
1: देवा लाड किसानी खेती करते हैं और ग्रामीण विकास और स्थायी कृषि और सामाजिक कार्यों में बहुत योगदान दिया है। परभणी जिले के मालसोना गांव में आप जन्म हैं, 79 वर्ष के हैं।
2: श्रीरंग देवा लाड इन्वेंटेड न्यू टेक्नोलॉजी इन कॉटन कल्टीवेशन व्हिच वाज यूज्ड बाय फार्मर्स इन ऑल कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। ही हैड डन रिसर्च वर्क इन जवार एंड तूर एज वेल।
0: श्री अंके गौड़ा एम समाज सेवा।
1: 77 साल के अंके गौड़ा अब माननीय राष्ट्रपति जी से अपना पद्मश्री प्राप्त करने के लिए जाते हुए आपने अपना पूरा जीवन पुस्तकों के संरक्षण संग्रह और उसे लोगों तक पहुंचाने में दे दिया है।
2: श्री अंके गौड़ा जी हैज पर्सनली कलेक्टेड मोर देन 20 लाख बुक्स ओवर द लास्ट 50 ईयर्स यूजिंग हिज इंटायर पर्सनल अर्निंग्स फॉर दिस पर्पज एंड हिज कलेक्शन इंक्लूड्स बुक्स इन कन्नड़ा इंग्लिश हिंदी तमिल तेलुगु एंड सेवरल अदर इंडियन लैंग्वेजेस एंड डाइवर्स सब्जेक्ट्स सच एज लिटरेचर हिस्ट्री आर्ट कल्चर एंड फिलोसफी।
0: प्रोफेसर डॉक्टर सरोज मंडल चिकित्सा कार्डियोलॉजी।
1: 59 वर्षीय डॉक्टर मंडल इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं। आपने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश की खूब सेवा की है।
2: Professor Dr. Mandal has served over 6 lakh patients in OPD over 35 years and independently performed and supervised 50,000 coronary angiograms and 50,000 angioplasties.
0: Professor Buddh Rashmi Mani, Puratattva Vigyan.
1: Bharatiya Puratattva Vigyan ke ek mahatvapurna hastakshar Professor Buddh Rashmi Mani, Rashtriya Sangrahalaya ke महानिदेशक भी आप रहे हैं और कहां-कहां उत्खनन इन्होंने नहीं किया हमारी सभ्यता के अवशेष खोजने में।
2: While working in the Archaeological Survey of India, Professor Mani conserved about 150 centrally protected monuments in Maharashtra, Goa, Delhi and Jammu and Kashmir, and discovered 200 archaeological sites, and he directed 20 excavations.
0: Shri Nilesh Vinod
2: Ayodhya.
0: Chandra Mandlewala, Samaj Seva.
1: Organ Man के रूप में जाने जाते हैं और डोनेट लाइफ संस्थान के रूप में इन्होंने बहुत कार्य किया है, खास तौर पर गुजरात और भारत में शव अंगदान के बारे में जागरूकता फैलाई है।
2: श्री मांडलेवाला, he has a long term vision that by 2047 no citizen should lose life because of the non availability of organs. For that he has traveled extensively across India.
0: Dr. Mahendra Kumar Mishra, Sahitya एवं शिक्षा।
1: लुप्त प्राय जनजातीय आवाज़ों को आधुनिक शिक्षा शास्त्र में आपने शामिल किया है और आवाज़ों को संरक्षण करने में चार दशक से अधिक का समय दिया है डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्र ने।
2: Internationally, Dr. Mishra has advised Nepal's MLE policy, lectured at China's CAS, Hanyang University, South Korea, Thailand's Mahidol University, and Russia's Academy of Sciences.
0: Shrimati Tripti Mukherjee, Kala, Kantha Embroidery.
1: Kantha, ऐसी कढ़ाई है जो पूरे विश्व में भारत की पहचान है और उसे आगे बढ़ाने में, उसे नए स्वरूप देने में तृप्ति मुखर्जी का बहुत योगदान रहा है।
2: श्रीमती मुखर्जी इज द रेसिपिएंट ऑफ न्यूमरस अवार्ड्स सच एज द नेशनल अवार्ड सर्टिफिकेट इन 2010 एंड शिल्प गुरु अवार्ड इन 2016 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। शी इज आल्सो बीन एक्नॉलेज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल बाय कन्फरिंग ऑन हर द बंगाश्री अवार्ड।
0: हरि माधव मुखोपाध्याय कला थिएटर, उनके पुत्र श्री कृष्णेंदु मुखोपाध्याय।
1: आप मशहूर थिएटर निर्देशक, नाटककार और अभिनेता थे। 85 वर्ष की उम्र में 17 मार्च 2025 को आपका निधन हो गया। उनकी बिहाव पर पद्मश्री प्राप्त करने जाती हुई कृष्णेंदु उपाध्याय मुखोपाध्याय।
2: श्री
0: सत्य नारायण नंदलाल नुवाल, व्यापार एवं उद्योग।
1: 74 वर्षीय नुवाल सोलर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। आज इन्हें सम्मानित किया जा रहा है पद्मश्री से।
2: Under Shri Nawal's leadership, Solar became the first Indian company to design, develop and manufacture fully weaponized variants of the Nagastra loiter munition, which has
0: Shri K. Pajanivel, Khel, Silambam.
1: Silambam, 5000 साल पुरानी भारतीय मार्शल आर्ट है और युद्ध शस्त्र आधारित पद्धति है, इसे आगे बढ़ा रहे हैं के पजानीवेल।
2: Well, Shri Pajanivel was conferred the Academy Puraskar Award of Sangeet Natak Academy, presented by the Honorable President of India in 2023. And he also found the Mamalan Silambam and Folk Arts Development Club in Pondicherry. He has also trained youths who were interested in Silambam.
0: Shri Dharmik Lal Chunilal Pandya, Kala Man Akhyan.
1: 94 वर्ष के हैं आप, धार्मिक लाल चुनीलाल पंड्या, और गुजरात की प्राचीन मान भट्ट मान आख्यान परंपरा के सर्वश्रेष्ठ उस्ताद हैं। आपने पगड़ी पहनी है और व्हील चेयर पर जाते राष्ट्रपति जी खुद अपने आसपास आकर श्री पंड्या का सम्मान।
2: In addition to preserving classical repertoire, Shri Pandya has composed new akhyans on contemporary social themes like water conservation.
0: Shri Kailash Chandra Pant, Sahitya एवं शिक्षा।
1: प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक हैं कैलाश चंद्र पंत, मध्य प्रदेश से आते हैं और शुरू से ही पत्रकारिता और खास तौर पर निष्पक्ष पत्रकारिता में आपने अपना अनूठा नाम बनाया है।
2: In 1977, Shri Kailash Chandra Pant launched weekly Jan Dharam from November 1980s. As secretary of Madhya Pradesh Rashtra Bhasha Prachar Samiti, he revitalized Hindi Bhavan and upgraded the quarterly literary magazine Akshara.
1: Rashtrapati ji swayam ek seedhi utar kar niche aati hui aur Pant ji jo ki 90 saal ke hain unka samman karti hui aur ye kartal dhwani is baat ka prateek ki rashtra ऐसे सेवकों का ऋणी है।
2: His work earned him the विश्व हिंदी सम्मान.
0: श्री गरी मेला बाल कृष्ण प्रसाद मरणोपरांत कला गायन, उनके पुत्र श्री गरी मेला अनिला कुमार.
1: अनिला कुमार उनके ब्याह पर लेगी ये पुरस्कार. गली मेला बाल कृष्ण प्रसाद 78 वर्ष की उम्र में ये देह तो छोड़ गए, लेकिन अपने महत्वपूर्ण कार्यों को राष्ट्र के लिए सौंप गए. प्रतिष्ठित भारतीय शास्त्रीय और भक्ति संगीत गायक थे आप.
2: Over a career spanning 6 decades, Shri Prasad presented more than 6,000 concerts across India and internationally.
0: Professor Dr. Rajendra Prasad, Chikitsa, Tuberculosis.
1: 76 वर्षीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक सुप्रसिद्ध चेस्ट फिजिशियन है और क्षय रोग और खासतौर पर क्षय रोगियों की देखभाल और उनकी चिकित्सा में आपने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है.
2: प्रोफेसर डॉक्टर प्रसाद वाज द फर्स्ट इन इंडिया टू एस्टैब्लिश द एसोसिएशन ऑफ बीडी स्मोकिंग एंड द यूज ऑफ बायोमास फ्यूल स्मोक विद क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज ट्यूबरकुलोसिस एंड लंग कैंसर. He has worked on 35 research projects and supervised 185 MD, MS and DM.
0: Dr. students. Gunduru Venkat Rao, Chikitsa Gastroenterology.
1: अब एक और चिकित्सक का सम्मान होता हुआ 66 वर्षीय वेंकट राव एक प्रमुख सर्जरी गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं और आपने अपनी सर्जरी के जरिए कई लोगों की जान बचाई है.
2: Well, he has performed more than 12,000 complex gastrointestinal surgeries and nearly 16,000 advanced endoscopic procedures. He has also held several important
0: Deepika
2: Reddy, leadership positions.
0: Kala Nritya.
1: 60 वर्षीय दीपिका रेड्डी एक मशहूर कलाकार है, कोरियोग्राफर भी हैं और समर्पित गुरु और एक सांस्कृतिक राजदूत भी है. शास्त्रीय नर्तकों की तीन पीढ़ियों से आप ताल्लुक रखती हैं.
2: श्रीमती रेड्डी वाज द फर्स्ट वुमन चेयरपर्सन ऑफ तेलंगाना संगीत नाटक अकादमी, गवर्निंग काउंसिल मेंबर संगीत नाटक अकादमी दिल्ली एंड हैज रिसीव्ड प्रेस्टिजियस अवार्ड्स लाइक संगीत नाटक अकादमी अवार्ड एंड मेनी मोर.
0: डॉक्टर पलकोंडा विजय आनंद रेड्डी, चिकित्सा ऑन्कोलॉजी.
1: अगले चिकित्सक पद्मश्री प्राप्त करने जा रहे हैं डॉक्टर पलकोंडा विजय आनंद रेड्डी. 67 साल के हैं और आप मशहूर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं. इनकी यात्रा क्लिनिकल उत्कृष्टता से कहीं आगे जानी जाती है और हैदराबाद में आपने बहुत कार्य किया है.
2: Well, Dr. Reddy has delivered over 921 CME lectures, authored 112 plus publications and organized numerous international conferences to bring cutting edge technology to Indian practitioners. His advocacy efforts
0: Shri
2: have
0: Shri Haricharan Shaikia, Kala Satriya Nitya.
1: Satriya, Assam ki ek suprasiddh kala. और हरिचरण शैकिया जी जो कि 94 वर्ष के हैं, व्हीलचेयर पर जाते हुए आपने इस कला का न सिर्फ संरक्षण किया है बल्कि इसे लोगों तक भी पहुंचाया है और बहुत सारे लोगों को सत्रीय कला का प्रशिक्षण भी दिया है. माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी उनको नमस्कार करते हुए आगे जाते हुए और राष्ट्रपति जी आकर उन्हें पद्मश्री प्रदान करती हूँ.
2: श्री हरिचरण साइकिया परफॉर्म सत्रिया डांस बिफोर इंडिया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एंड सेकेंड प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन. ऑल्सो ही परफॉर्म द बरगीत विद मनीराम गायन मोक्तर एट ऑल इंडिया रेडियो इन 1948.
0: प्रोफेसर वेम्पटि कुटुंब शास्त्री,
1: 86 साल के शास्त्री जी,
0: साहित्य एवं शिक्षा
1: विद्वानों में से हैं. आपने अद्वैत वेदांत दर्शन और संस्कृत काव्य शास्त्र में बहुत सारे कार्य किए हैं. नमस्कार करते हुए, अभिवादन करते हुए अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का और अब मुड़कर अभिवादन करते हुए राष्ट्रपति जी का पद्मश्री प्राप्त करने जाते हुए.
2: प्रोफेसर वेम्पटि कुटुंब शास्त्री हैज ऑथर्ड एंड एडिटेड 15 बुक्स एंड मोर देन 50 रिसर्च पेपर्स. He has also guided numerous doctoral scholars and delivered hundreds of lectures.
0: Professor Shafi Shauk, Sahitya evam Shiksha.
1: 100 से ज्यादा किताबें आपने लिखी हैं और कश्मीर से आते हैं और कश्मीरी, अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू सब भाषाओं में आपने खूब लिखा है. प्रोफेसर शफी शौक.
2: His translations include his series of books under the title The Best of Kashmiri Literature. He has also written scripts for numerous TV serials and films.
0: Shri Baldev Singh Khel, hockey coach.
1: बलदेव सिंह जी ने बहुत सारे हॉकी खिलाड़ी इस राष्ट्र को दिए हैं। एक अनुभवी कोच है और आज इन्हें मिलता हुआ पद्मश्री और ये तालियां इस बात का प्रमाण कि उनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है।
2: श्री बलदेव सिंह जी इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड फॉर डेवलपिंग द शहबाग मारकंडा हॉकी नर्सरी इनटू वन ऑफ इंडियाज मोस्ट प्रोडक्टिव सेंटर्स फॉर हॉकी टैलेंट।
0: श्री युमनाम यात्रा सिंह मरणोपरांत कला नट संकीर्तन, उनके पुत्र श्री युमनाम बिशन भोर सिंह।
1: आप मणिपुर के पारंपरिक वैष्णव नृत्य और संगीत के प्रतिष्ठित प्रतिपादक थे और बीते वर्ष 11 अक्टूबर को हमारे बीच नहीं रहे, सम्मानित होते हुए युमनाम यात्रा सिंह मरणोपरांत।
2: His contributions to Nata Sankirtan are timeless. His efforts played a significant role in UNESCO's recognition of Sankirtan as an intangible cultural heritage in 2013.
0: Dr. Ashok Kumar Singh, Vigyan Evam Engineering.
1: अशोक जी ने भारत में बासमती चावल की खेती का कायाकल्प करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है और इस कंट्रीब्यूशन के लिए आज राष्ट्र उन्हें सम्मान दे रहा है पद्मश्री का।
2: डॉक्टर सिंह हैज गाइडेड 34 पीएचडी एंड 5 एमएससी स्टूडेंट्स मेकिंग सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशंस टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड मेंटरिंग न्यूमरस यंग प्रोफेशनल्स।
0: श्रीमती शिव शंकरी, साहित्य एवं शिक्षा।
1: अबारी श्रीमती शिव शंकरी जी की, आप 1942 में जन्मी हैं और चेन्नई में इन्होंने बहुत कार्य किया और ख़ास तौर पर लेखन में सभी भाषाओं में, खासतौर तमिल में बहुत सारा इन्होंने लिखा है। 30 से ज़्यादा उपन्यास, 40 से ज़्यादा लघु उपन्यास, 100 से ज़्यादा लघु कथाएँ, 16 यात्रा वृत्तांत बहुत लिखा है इन्होंने।
2: श्रीमती शिवशंकरी कंप्लीटेड हर बैचलर ऑफ साइंस डिग्री एज अ यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर रिफ्लेक्टिंग हर अर्ली एकेडमिक एक्सलेंस। शी वाज आल्सो सिलेक्टेड एज द वुमन ऑफ द ईयर 2000 बाय द इंटरनेशनल वुमेन्स एसोसिएशन। She was also one of the four writers who were recorded in her own voice for the archives of the U.S. Library of Congress.
0: Dr. R. Sridhar, Community Radio.
1: Sridhar ji, आकाशवाणी के उप महानिदेशक रहे और विज्ञान का एक लंबा सीरियल इन्होंने बनाया जो किसी भी देश में बना हुआ सबसे ज्यादा बड़ा सीरियल था, विज्ञान सीरियल।
2: Dr. Sridhar is in association with the National Council for Science and Technology Communication, Department of Science and Technology, developed the longest radio science serial for children titled The Human Evolution, Manav Ka Vikas, broadcast in 18 Indian languages simultaneously through 200 radio stations. He has also played a central role in launching Gyan Darshan group of channels, the first 24-hour educational television channel.
0: Professor Shyam Sundar, Chikitsa Kalazar.
1: आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय के Institute of Medical Sciences में medicine के मानद professor हैं। संक्रामक रोगों खासतौर पर visceral leishmaniasis कालाजार में आपने बहुत कार्य किया है।
2: Professor Sundar is ranked at the top in the world in the field of leishmaniasis and kala azar from the year 2013 to date. He has published extensively in academic journals including NEJM and
0: Dr.
2: The Lancet, etc.
0: Dr. S. G. Sushilamma, Samaj Seva.
1: 24 मई 1939 को आप कर्नाटक में जन्मी हैं और प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता और ख़ास तौर पर अपने सेवा आश्रम के जरिए बहुत समाज सेवा का आपने कार्य किया है। 5 दशक कोई कम समय नहीं होता लालिमा जी, 5 दशक से ज़्यादा इन्होंने समाज सेवा की है और अब हाथ पकड़कर आगे जाती हुई और सफ़ेद साड़ी इन्होंने पहनी और झुककर अभिवादन करती हुई माननीय गृह मंत्री जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का और अब माननीय राष्ट्रपति जी का अभिवादन करती हुई।
2: Dr. Sushilamma has also implemented extensive rural development and women empowerment programs across Karnataka, including adult literacy campaigns, formation of self-help groups and Mahila Mandals, and vocational and entrepreneurship training, microcredit initiatives, and panchayat leadership development. She has also worked closely with tribal communities through sustainable agriculture and livelihood projects.
0: श्री एन स्वामीनाथन कला भक्ति संगीत
1: तंजावुर से आते हैं और तमिल

0: संगीत के क्षेत्र के प्रतिष्ठित कलाकार हैं और आपने तमिल भाषा में भगवान शिव के भजनों का पारंपरिक एक प्रामाणिक भजन संग्रह भी निकाला है।
1: He became a master of the art and served as Othuvar in many temples of Tamil Nadu and later worked at Thiruthani Lord Murugan Temple for nearly 26 years. He has served as a teacher in VS Trust, a charitable trust to Lord Nataraja Temple in Chidambaram.
2: Dr. Keval Krishna Thakral, Chikitsa Ayurved.
0: Dr. Thakral, आयुर्वेदिक पद्धति के शल्य चिकित्सक हैं और भारत में क्षार सूत्र चिकित्सा के माध्यम से कई रोगों के उपचार और खासकर ब्रोंकियल अस्थमा के उपचार के लिए इन्होंने एक लघु शल्य प्रक्रिया कर्म वेदन भी आगे बढ़ाई है।
1: डॉक्टर केवल कृष्ण ठकराल मूव्ड टू सैन फ्रांसिस्को यूएसए इन 1976 एज अ रिसर्च सर्जन। ही हैज बीन इनवाइटेड टू ओवर 80 सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेस टू शेयर हिज नॉलेज and his profile has been part of international conferences also.
2: Dr. Gopal G. Trivedi, Marnoprant, Vigyan Evam Engineering, unke putra Shri Raman Kumar Trivedi.
0: Zyada din nahi hue, 12 Mai ko hi aapka nidhan ho gaya tha. Dr. Gopal G. Trivedi एक कृषि वैज्ञानिक थे और राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति रह चुके हैं। पुरस्कार प्राप्त करते हुए इनके पुत्र रमण कुमार त्रिवेदी।
1: डॉक्टर त्रिवेदी सिंस द लास्ट 5 इयर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल इनिशिएटेड अ प्रोग्राम टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ मेज।
2: श्री अरविंद वैद्य कला थिएटर
0: वरिष्ठ कलाकार हैं और 6 दशकों से ज्यादा समय से आपने गुजराती रंगमंच हिंदी टेलीविजन और फिल्मों के क्षेत्र में काम किया है। काले रंग का जोधपुरी सूट पहना हुआ।
1: श्री वैद्य फाउंडेड द नाट्य संपदा हिज ओन प्रोडक्शन कंपनी थ्रू व्हिच ही प्रोड्यूस्ड डायरेक्टेड एंड एक्टेड इन मोर देन 75 फुल लेंथ प्लेज। ईच वर्क कैरीड द क्वाइट वेट ऑफ डेडिकेशन गैदरिंग रिकॉग्निशन अलोंग द वे। In 1993, Mumbai beckoned him and opened a wider horizon. He's multilingual and
2: Professor
1: very adaptable.
2: Jusar Vasi, Vigyan Evam Engineering.
0: Professor Jusar Vasi, IIT Bombay mein Professor Emeritus hai. Aur aapne micro electronics aur semiconductor aur solar photovoltaic se kshetron mein bahut kaarya kiya hai.
1: Professor Vasi, throughout his career in both semiconductors and solar photovoltaics, he stressed the importance of interdisciplinary, collaborative and inclusive research, which he thought was necessary, especially on major national missions. He has published about 200 papers in leading journals and conferences.
2: Dr. Narayan Vyas, Puratattva Vigyan.
0: Dr. Narayan Vyas, विश्व के सुप्रसिद्ध पुरातत्वविदों में से एक है, खास तौर पर मध्य प्रदेश में भीमबेटका और सांची और गुजरात के रानी जीरी वाव सीढ़ी कुआं के योगदान में आपने बहुत ही योगदान दिया है।
1: Dr. Vyas was associated with the National Archives of Indian Historical Record Committee, domain expert member in National Screening and Evaluation Committee. He was awarded the prestigious Dr. Vishnu Sridhar Vakankar Award from the government of Madhya Pradesh in
2: 2019. Professor Gambir Singh Yonzan, Sahitya एवं शिक्षा।
0: गंभीर सिंह जी दार्जिलिंग पहाड़ियों के एक प्रतिष्ठित वनस्पति शास्त्री शिक्षाविद पर्यावरणविद और संस्थान के निर्माता हैं और खास तौर पर वनस्पति विज्ञान में आपने बहुत कार्य किया है।
1: प्रोफेसर योनजोन्स कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशनल एंड इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट ऑफ दार्जिलिंग हिल रीजन आर पायनियरिंग एंड फार रीचिंग। A passionate advocate of scientific temper and environmental awareness, he led a 6-year conservation movement that was a huge, huge success.
2: Shri Halley War, Samaj Seva.
0: अब बारी हैली वार जी की। आप पर्यावरणविद और खासी लोगों के स्वदेशी ज्ञान के लिए एक प्रतिष्ठित नाम है।
1: Shri War has spent more than 50 years nurturing and building the iconic living route bridges of the East Khasi Hills. Since the age of 10, he has meticulously guided the aerial roots of the Ficus elastica tree to create durable living structures. His most celebrated work, the Omkar Living Root Bridge, stands as a testament to his patience and profound understanding of natural ecosystems.
0: और अब सचिव महोदय आते हुए, क्योंकि ये अंतिम सम्मान था आज का, और
2: माननीय राष्ट्रपति महोदय आपकी आज्ञा हो तो समारोह की कार्रवाई समाप्त की जाए। धन्यवाद महोदय।

0: and we can see everybody's standing.
1: राष्ट्रपति जी इस वक्त धीरे धीरे दरबार इस गणतंत्र मंडप से प्रस्थान करती हुई सबका अभिवादन करती हुई उनके ठीक पीछे उपराष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी अभिवादन करते हुए ठीक पीछे अमित शाह जी और मनसुख मांडविया जी ये तमाम और अब आ रहे हैं ओम बिरला जी पीछे श्री वेंकैया नायडू जी तमाम गणमान्य अतिथि धीरे धीरे सबका अभिवादन करते हुए गणतंत्र मंडप से बाहर जाते हुए
0: And there is a palpable excitement in the hall, which was jam-packed with the awardees and their relatives who had come to receive the prestigious Padma Awards. It is indeed a moment of pride.
2: So please, pay your attention, please. I request all the award winners to move towards your right side. Second part of the ceremony.
1: आकाशवाणी से उसका आंखों देखा हाल भी सुनना ना भूले. तकनीकी टीम के सदस्य थे अशोक कुमार मिश्र कमल सिंह और हेमराज मीणा ओबी इंचार्ज हमारे साथ तुषार पराशर और इस कार्यक्रम के प्रोड्यूसर प्रमोद कुमार मैं महेंद्र सिंह लालस अपनी साथी कमेंटेटर लालिमा अनेजा डैंग के साथ अब आपको लिए चलता हूं आकाशवाणी के स्टूडियो वापस नमस्कार
3: अभी आप राष्ट्रपति भवन से भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित हुए नागरिक अलंकरण समारोह का सजीव विवरण सुन रहे थे विवरण दे रहे थे महेंद्र सिंह लालस और लालिमा अनेजा ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों को देश भर में सर्वश्रेष्ठ बनाया जाएगा और इसके लिए राज्य सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में व्यापक स्तर पर बदलाव किए हैं। उन्होंने आज हाल ही में स्तरोन्नत किए गए CBSE राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल छोटा शिमला में विद्यार्थियों के साथ संवाद किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री से CBSE प्रणाली को लेकर भी सवाल पूछे। मुख्यमंत्री ने कहा कि छोटा शिमला स्कूल में इस वर्ष 30 जून से पहले अध्यापकों के सभी खाली पद भर दिए जाएंगे और CBSE पाठ्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को अब अधिक विषयों का विकल्प मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों के शिक्षक मेहनती और सक्षम होते हैं और उनकी नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से होती है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विद्यार्थियों से 5 जून को शिमला में होने वाली एंटी चिट्टा रैली में भाग लेने का आह्वान किया। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के पहले चरण के चुनाव के तहत कल 1293 पंचायतों में वोट डाले जाएंगे। मतदान सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। पंचायत प्रधान, उप प्रधान और वार्ड सदस्यों के लिए डाले गए वोटों की गिनती मतदान के तुरंत बाद शुरू होगी और कल शाम तक इनके नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। इसके अलावा जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए डाले गए वोटों की गिनती 31 मई को की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्वाचन अधिकारी संजीव महाजन ने आज शिमला में बताया कि 8198 अधिकारियों और कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी पर तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कुल 21678 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पंचायती राज संस्थाओं के लिए दूसरे चरण में 28 मई जबकि तीसरे चरण में 30 मई को वोट डाले जाएंगे।
1: टोटल पूरे हमारे 21678 मतदान केंद्र हमने स्थापित किए हैं, जिसमें से हमारे 16539 मतदान केंद्र जो बिल्कुल सामान्य हैं, लगभग 3554 संवेदनशील हैं और 1585 मतदान केंद्र जो है वो अति संवेदनशील हैं और उनके ऊपर वेबकास्टिंग की जा रही है, लाइव वेबकास्टिंग होगी। तो टोटल हिमाचल में 50,80,000 मतदाता है, जिसमें से हमारे 25,08,000 पुरुष हैं और 25,12,000 महिलाएं फर्स्ट टाइमर वोटर हैं। वो हमारे 52,350 वो नए वोटर हैं जिनमें ऐड हुए हैं बच्चे 18 साल वाले। ग्राम पंचायत भाटा वाली विकास खंड पौंटा साई में 4,623 मतदाता हैं इसमें, और सबसे कम जो है वो पूहू की ग्राम पंचायत सुमरा में है, वहाँ पे केवल 178 मतदाता है।
0: सोलन जिला में पहले चरण के तहत कल 87 पंचायतों में मतदान होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी मनमोहन शर्मा ने बताया कि जिला में कुल 3,52,901 मतदाता पंजीकृत हैं। उन्होंने बताया कि संवेदनशील व अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर CCTV से निगरानी की जाएगी और इन्हें वेबकास्टिंग से जोड़ा गया है।
2: जिला सोलन में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव 26 तारीख से शुरू हो रहे हैं। पहले फेज में 87 पंचायतों में चुनाव होंगे और प्रशासन द्वारा जो संवेदनशील मतदान केंद्र है और जो हाइपर सेंसिटिव है उनके लिए CCTV लगाने की व्यवस्था की है। 549 पोलिंग पार्टीज है पूरे जिला में, जो कि 3 चरणों में निर्वाचन के कार्य को पूरा करेंगे। मतदाताओं से मैं यही अपील करूंगा कि इस अवसर पर अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें।
0: प्रदेश भाजपा ने राज्य सरकार पर आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज शिमला स्थित लोकभवन में राज्यपाल कविंद्र गुप्ता से भेंट की और उन्हें इस बारे में एक ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल सहित अन्य वरिष्ठ नेता भी शामिल रहे। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने चुनाव आचार संहिता के बीच मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई और कई ऐसे फैसले लिए जिनका असर पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों पर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि नगर निगमों और नगर पंचायतों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनावों को प्रभावित करने के लिए नियमों में बदलाव लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ है। भाजपा ने इन सभी मुद्दों पर राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग की है।
3: चुनाव को प्रभावित करने के लिए प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी कोई कसर नहीं छोड़ रहे। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन बहुत बड़े स्तर पर हुआ है। कॉर्पोरेशन के चुनाव में जाते हैं, पार्टी के सिंबल पर चुनाव हो रहा है और आचार संहिता लगी हुई है। मुख्यमंत्री जाते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस का काउंसलर चुन करके भेजिए, मैं 50 लाख रुपए आपके लिए विकास के लिए दूंगा। ये सीधी सीधी आचार संहिता के उल्लंघन की खुलेआम जो है जिसको शुरुआत की गई, और आचार संहिता के बीच में कैबिनेट के फैसले लिए जाते हैं। ऑफिशियल ब्रीफिंग ना करके मीडिया को जो है वो सारे के सारे फैसले बता दिए जाते हैं और फैसले के लिए जो चुनाव को प्रभावित कर।
0: इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं।

0: शाम 7:45 पर। नमस्कार।
1: FM बैंड 103.4 MHz पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए सदाबहार संगीत कार्यक्रम में। सबसे पहले लीजिए सुनिए फिल्म गाइड से ये गीत। इस गीत को गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। संगीत है एच टी बर्मन का और गीत को लिखा है

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म हीरा पन्ना से। इस गीत को गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। संगीत है आर डी बर्मन का और गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी का मनोरंजन संसार छुए सबके दिल के तार।
0: सुबह से रात तक रहता है हमारे अंग संग, इसीलिए तो रंगे हैं हम इसके रंग। मेरे

0: कहानी छूटे ना हर दिन कोई जानकारी, इसीलिए तो है हर किसी को प्यारी।
1: भक्ति संगीत के साथ करता है भाव विभोर, बांधे हुए है सबके दिल की डोर।
2: ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।
0: सदाबहार गीतों का संगम थामे है हर दिल की धड़कन।
1: फिर आती युवाओं की बारी, मनोरंजन के साथ मिलती हर जानकारी।
0: किसानों का तो नाता जुड़ा इससे, सुनते जानकारियां और नए नए किस्से।
1: महिलाओं का भी अपना संसार, लेकर आती हैं घर परिवार।

अभी आप सुन रहे थे सदाबहार संगीत FM बैंड 103.4 MHz पर। यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 6:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम मौजा ग्राइंदियाँ।

0: कार्यक्रम मौजा कराई सुनने वाले सारे ही किसान बागवान कने श्रोता साथियों जो देर उताई दी तरफा ते दो हथ जोड़ी करी राम राम कने आज भाई मिंजो सोगी मेरी ये भाई भैन है
1: केसरो।
0: हाँ जी केसरो जी तुसा जो भी राम राम
1: जी देर उताई तुझे भी राम राम कने किसान मौजा कराई कार्यक्रम सुनने वाले किसान जो भी केसरो जी दो हथ जोड़ी करी राम राम है कने दिखा अज बड़े दिनों बाद देर उताई जड़े से मिंजो मिले कने हाँ गप्पा मार दिया ओ दिया थी तो मिल लिया देर उताई अज चलते कने ठंडी ठंडी हवा खाते टियाले दी
0: टियाले पर आंदी ध्याड़ी मैं नहीं आंदी कने ध्याड़ी
1: जल मैं आंदी तल तू हम जो मिल देनी कने आज दिखा टाकरा हो इतने दिन बाद इतने महीने बाद कने आज ता अहां दोनों सोगी आई है कने दिखा ट्याले पर इस टाइम बड़ी अच्छी हवा चली ठंडी ठंडी कने दिखा अजकल दी गर्मी च ने ये जो समय होंदा ने इस टाइम में घरे ते बाहर निकला थोड़ी दी दुनिया दिखा खेत खलियान दिखा कने ट्याले दी हवा भी खाई लिया है ना जी।
0: जी कने दिखा भई हवा असा ताई खाई सकते जे पेड़ पौधे होने है ना जी, जे पेड़ पौधे नहीं होन तो हवा भी क्या दिखानी है ना जी। ताई तो बोलदे भई प्रकृति दी शोभा जेड़ी है ना से पेड़ पौधे ने है ना जी। जितने भी पेड़ पौधे होंगे ताई प्रकृति हरी भरी कने सारियां गुणा ते भरपूर होनी है ना जी।
1: तो मुझे लगा था देर ताई आज तू कुछ ना कुछ पौधे दे बारे ची जानकारी लेके आयो ताई आज बहुत बहुत ज्यादा बोला दे तू है ना जी।
0: जी बिल्कुल दिखा भाई आजकल साढ़े जेडे फलदार पौधे ना जी अंब लीचियां नाशपाती है ना जी तिना सारे च फल पे ही है ना ता मतलब तिना दी देखभाल ताई असा कुछ जेडे जानकारियां से होना जरूरी है ना जी।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल
0: ता दिखा भाई फलदार पौधे दी जेडी मतलब अगर अच्छी हां फसल लेनी है तिना दे फल अच्छा होए पौधा बड़े साल चलने तो तिस ताई असा कुछ चीजा दा ध्यान जेड़ा है से जरूरी रखना चाहिदा क्योंकि अगर असा कई बारी पौधा लगाई दे कने फिर दिख सुन नहीं करदे ना जी। लगाई ते एक बारी ता लगाई ता ना ते तिसते बाद दिख सुन नहीं करदे ता पौधा जेड़ा तिसी ग्रोथ तो होंदी बड़ा तो ही आंदा पर तिस च क्या होंदा कि तिसदा या तो फल मिठा नहीं होना या जेड़ा फलां दा साइज होंदा से छोटा रहंदा है ना जी।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल तुहां बिल्कुल ठीक गल गला दे ना देर उताई जी ता तुहां बड़ी अच्छी जानकारी जेड़ी दे देन ता मैं सोचा कि तुहां इस जानकारी जो होर खरे कित्ते दे आ ताकि साढ़े जेड़े किसान हैं से भी तिसदा सुन।
0: जी इयां दा भाई पंज जेड़ियां मुख्य गल्लां से हैं जी आ सही मात्रा बिच पानी दा होना पौधे ताई बड़ा ही जरूरी है। इस बिच ये कि ना ज़्यादा पानी होना चाहिए पौधे कने ना ही बिल्कुल सुखा होना चाहिए कि नमी रहना चाहिए ये नहीं हो कि भाई असा इतना पानी देता कि पानी खड़ोई है जितू है ना कने तिसने के होंगे कि जल पानी खड़ोई रहा जो पौधे दड़ा होंगे से गली आदि है ना जी खराब हो जाता है ना जी। ये नहीं भाई कई बार दिता नहीं कने दिता तो खूब सारा देता है ना तो यह चीज़ा का असें ध्यान रखना पौना कने दूजा कि जल फुल आने का समय होंगे जल पौधे च फुल आते ताली असें थोड़ा घट मतलब पानी जड़ा असें देना चाहिए क्योंकि ज्यादा पानी देने कने फुल जड़े से झड़ी आते भाई है ना तो इस चीज़ा का भी असें कई बार अहम ध्यान नहीं रखनी है कई बार जानकारी नहीं हो असा दे पौधे अहम सोचते फुल तो बड़े लगे हे पर झड़ी जड़े सारे है ना जी।
1: सही गल होंगी ना कई बार अहम पानी ज्यादा मात्रा च दे देते अहम सोचते कि अहम खरा करा थे पर कई बार इसे समझो
0: रखना पौंदियां जियां कि छोटे छोटे फल जालू लगदे बनना ताली अहां नियमित तौर पर पानी देना चाहिदा मतलब रोजाना पानी देना चाहिदा ताकि फलां दा साइज जेहड़ा है ठीक रहे है ना जी। कने चलो असां इस पर जानकारी और जेहड़ी
1: है पर मुझे लगा था दिखा कार्यक्रम मौजा कराई दी लग गया कने साढ़े किसान भाई जड़े इन सब ने आपा बैठे होंदे कि आहा प्यारा दे लोक गीत भी सुनना है ना जी।
0: जी तो सुन दे कने सुनांदे ने प्यारा दे लोक गीत।

0: स्टेशन। मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
3: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just ₹9.72 lakhs.
2: Yes, ₹9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just ₹8,999 per month.
3: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display, and 6 airbags as standard.
2: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
4: Nexa. किसान साथियों दिखा संजय दे वेला कार्यक्रम मौजा ग्राएं दिया चि तुहां सुने प्यारा दिया लोक गीत कन्ने लोक गीत ते पहले देरो ताई जड़ी ऐसे सांजो आज दिया दी थी जानकारी फलदार पौधियां दी ता देरो ताई तुहां अपनी जानकारी जड़ी से जारी रखा उन
5: जी गल कर करदे थे असा कि जेडे फलदार पौधे ने तिना दी देखभाल असा जो कियां करना चाहिदी
4: जी
5: ता असा पानी दे बारे च गल करी थी कने दिखा हुण पोषण दी गल करन ता पोषण कने खाद बिच पौधे जो साले बिच दो वरी यानी कि जनवरी ते फरवरी कने अगस्त ते सितंबर बिच खाद देना चाहिए क्योंकि बरसात ते बाद पौधे जो खाद दी बड़ी ज्यादा जरूरत होंदी क्योंकि देखा भाई पानी आंदा ना पराए ते बनाया जांदा पानी ता जेड़े पोषक तत्व होंदे से
4: इसने
5: रुड़ी आंदे ते इसने ता फिर इखो पौधे जो खाद दी बड़ी ज्यादा जरूरत होंदी ता असां यो ए दो जेड़े महीने हैं इन्हां च असें खाद जेड़ी है जरूरी देना चाहिए क्योंकि जनवरी फरवरी च होंदा कि पौधे च फुल आने होंगे नहीं कौंपलां निकलनिया होंदियां फिर मतलब फुल वगैरह आने होंगे तो ताली तीजा खाद की जरूरत होंगी कि बरसाती बाद वैसे पोषक तत्वों की कमी हो जाती तो खाद की ज्यादा जरूरत होंगी कने खाद बिच जी जैविक खाद होइए सूक्ष्म पोषक तत्व होइए जैविक खाद जो तुह जी गला साड़ा गोबर वगैरह होइए है ना
4: जी
5: ये खाद तुम दे सकते कने सूक्ष्म पोषक तत्व भी खादा कने देना जरूरी होंगे क्योंकि ये जड़े हैं पोषक तत्व जड़े हैं फलों का स्वाद बढ़ाने कने उन्हें जो झड़ने या मतलब जिया कई बार होंगे ना कि छोटे छोटे दिखे होना हाँ जल्द छोटे छोटे फल लगे होंगे तो असर झड़ना शुरू हो जाते हैं
4: जरा ही लगते
5: है ना छोटे छोटे जलू लगे होंगे फल ताली ज्यादा होआ लगे तो असर चढ़ी आते ना तो कई बार कुछ जेडे पौधे के फल से अपने आप झड़ी आते इस ताई इसका कारण ही होंगे कि तिना पौधे बिच पोषक तत्वों की कमी होती तो पोषक तत्व जड़ा असा साले बिच दो बारी बोन मील या सरों की खड़ी जड़ी होंगी तो पानी का छिड़काव जड़ा है असें देना चाहिए पानी इन्हें दूनी का पानी असा पौधे जो जरूर साले च दो बारी देना चाहिए है ना जी,
4: जी।
5: इस दे बाद गल करते हैं कटाई छंटाई क्योंकि कटाई छंटाई भी बड़ी ज्यादा जरूरी है ना जी ज्यादातर पौधे की कटाई छंटाई जी जनवरी महीने बिच होंगी
4: है
5: जालू की पौधे अपनी सुप्त अवस्था बिच होंदे ने बीमार कने जेड़े आपस बिच उलझी टहनियां ने तिना जो अहें कट्टी देना चाहिदा ताकि
4: पौधा जे खरे किते जेड़ा ऐसे उसरी सके
5: है ना जी है ना क्योंकि तिस कने जालू अहां बड़े जेड़ा पौधा झाड़ी नुमा बनी जांदा तीसियो जलू कटिंग अहां करी दे तो इसकने पौधे ते अंदरे तक धुप्प भी कने हवा जेड़े से अच्छे तरीके ने चली जांदी इसने कने पौधे दे जेड़ी विकास है पौधे जेड़ा ग्रोथ है से अच्छी तरह ते होंदी है ना जी
4: बिल्कुल जी बिल्कुल
5: कने कीटा कने जेड़े साड़ी बीमारियां ने तिना दा बचाव भी बड़ा ज्यादा जरूरी है क्योंकि सारे काम तो अहां कर ले लेकिन बाद जलू अहां पौधे बीमारी है कीट लगी पौन तो फिर भी असां दी मेहनत जेड़ी है सारी खराब हो जाती है ना जी तो नीम तेल दा स्प्रे जेड़ा से 15-20 दिन बिच कीड़िया कने इन्हें बीमारियों वास्ते जड़ा से छिड़काव करना चाहिए है ना जी कने फंगस के बचाव तै क्योंकि बरसात के बाद देखा भाई साढ़े पौधे दखे बखे बड़ा ज्यादा घा कने जड़ा धां तू दे जड़ा मिट्टी मट्टी रुड़की होंगी है पौधे डके जमा हो जाती तो असं बरसात खत्म होने से तुरंत बाद जी असें पौधे के आखे बखे गुड़ाई करके सफाई जी अच्छी तरह से करी देना चाहिए इस कने तने की जी पुताई जी है जी जे भी बड़ा सा पेड़ है तिसके तने बिच अहें नीचे की तरफ जी नीचे की तरफ अहें चूना लगाई देना चाहिए ताकि जो जमीना से फंगस जी साढ़े पौधे लगते है ना हाँ जी हाँ जी फंगस लगती सैनी लगे कि सोगी कि कीड़े जड़े होंगे सह भी तिसने उपरे नहीं चढ़ने ताकि साड़ा पौधा जरा बचे रहे कि सालों साल हाड़े तो मिठे मिठे फल दिता रहे है ना जी असा है ना इन्ह चीजा का जरूर ध्यान रखना है ताकि मतलब असा दे पौधे ताई जेडे जीवन है तिना का काल सब बधिया है कने असा ज्यादा ते ज्यादा तिसदा आनंद ले सकना ना जी
4: बिल्कुल देरो ताई तुहां बड़ी अच्छी जानकारी दित्ती क्योंकि जल भी कोई किसान जड़ा है से फल या कोई पौधा लगांदा अगर से अच्छे तरीके ने नहीं होगा तो नुकसान सांझो होंदा कने किसान जो बड़ा बुरा लगता क्योंकि मेहनत करी के हाँ कोई काम कर देन कने तिसदा फल अगर सांझो ना मिले तो बुरा लगता है तो तुहां बड़ी अच्छी जानकारी दित्ती कि पौधों की रख रखाव सांझो करना चाहिए पानी थोड़ा देना ज्यादा भी नहीं देना कई बार अहां सोचते कि पौधा ठीक हो ही पौगा इस वास्ते हाँ पानी ज़्यादा दे देंगे तो जानकारी तुम बड़ी अच्छी दी कने उन जानकारी के बाद दिखा फिर तो टाले पर अहां चलना है कने लोग जानकार जी पुजानी है किसान साथियों तक
5: जी बिल्कुल जी।

0: इसी लोकगीत कन्नै साढ़े कार्यक्रम का समय इत्थे मुक करदा ता जाने ते पहले दसी दिए इस कार्यक्रम जो तुहां तक पहुँचाने ताई तकनीकी सहयोग रहा बिपिन कुमार होरां दा कन्नै कार्यक्रम प्रस्तुत करता जितेंद्र पाल सिंह हुण अपने टियाले दे साथी देरो ताई कन्नै
1: केसरो जुद्या अनुमति
0: अच्छा जी जय हिंद।

0: 103.4 MHz पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। अभी आपने सुना कार्यक्रम मौजा ग्राएं दिया, तो अभी तो कुछ ही पल में आप सुनेंगे 7 बजे हिंदी में समाचार और 7:05।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा।

0: किया। वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, शतावधानी डॉक्टर आर गणेश, उदय सुरेश कुमार और डॉक्टर कलीपट्टी रामास्वामी पाईस्वामी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। जिन प्रतिष्ठित हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है उनमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर भुल्लर, तागाराम भील, रतिलाल मोहनलाल बोरीसागर, स्वामी ब्रह्मदेव और कुमार बोस शामिल हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में और तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही
1: कि रिफाइनरी प्रोडक्शन एलपीजी का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले चार दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले चार दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के कुशल मंगल के लिए लगातार उनके संपर्क में हैं।
2: Several key agreements were signed.
3: यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिली है, विशेष रूप से एलपीजी की आपूर्ति सुनिश्चित करने और देश के पेट्रोलियम भंडार को सुदृढ़ करने में इन समझौतों की अहम भूमिका रहेगी। इसके साथ ही निवेश से जुड़े समझौते भी किए गए। इससे संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसरों का प्रभाव बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी के लिए एक रूपरेखा समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए।
0: उर्वरक विभाग की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को मनोरंजन और हॉस्पिटैलिटी से जुड़े संस्थानों में बाल श्रम पर और ज्यादा सख्त रोक लगाने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार को 18 साल से कम उम्र के बच्चों को ऑर्केस्ट्रा, डांस बार, मसाज पार्लर, स्पा और सैलून में काम करने या परफॉर्म करने पर रोक लगाने के निर्देश दिए जाने की मांग की है। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इनमें ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता आज से नॉर्वे के ओस्लो में शुरू हो रही है। टूर्नामेंट भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे शुरू हो जाएगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. President Draupadi Murmu today conferred Padma Awards to 66 eminent personalities for the year 2026 at an investiture ceremony held at Rashtrapati Bhavan. Of them, 2 were conferred with Padma Vibhushan, 6 with Padma Bhushan and 58 personalities were conferred with Padma Shri. Noted film actor Dharmendra Singh Deol has been honoured with Padma Vibhushan posthumously for his contribution in the field of art. The actor's wife and Lok Sabha MP Hema Malini received the award. The legendary Indian violin maestro Dr. N. Rajan also

0: कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सारे ही किसान कन्ने बागवान साथियों जो मेरी तरफ ते राम राम एक बारी फिरी ते कन्ने दिखा बई जियां तुहां जानदे अज टियाले पर न देरो ताई कन्ने केसरो है ना जी।
1: बिल्कुल जी, अज दिखा दोना हां दोनों मिलियन कन्ने गपशप मारा दिया कन्ने अज टियाले पर मजा बड़ा हुआ था क्योंकि एक तो ठंडी ठंडी हवा चली होंदी कन्ने सोगी क्या होंदा कि वैसे तो साझू कन्ने कई बार किसान मित्र बैठे होंगे पर अज दो सखियां बैठियां तो बई गपश खड़ाका जिहड़ा ऐसा तुहानू पता घरे दी भी लगी आंदियां गप्पां शप्पां तो मजा आई आंदा
0: जी। कहने दिखा भाई केसरो जी मैं तो जो दिखा दी है बड़ी देर है तुसा खाऊं खाऊं है लाई हो कने
1: बिल्कुल
0: बड़ी देर बाद दिखा दे भाई हां ताई तो मेरे बखे दिखा दी है मैं मुंह में बुझी लांदी है
1: कने
0: मेरी बात ही हो याद ही तो फिर खाऊं खाऊं करी दे आदी भाई
1: क्या क्या तो जो पता गर्मी है दा मौसम है कने दिखा हां ना मंडे नहीं है ना कई बारी बड़ी गर्मी होंदी कने घरे जाए के फटाफट फ्रिज खोलना कने बोतल लेनी ठंडे पानी दी सह गड़की लेनी पर तिसते बाद जड़ी खंग है ना से जांदी नहीं है कने आज मुझे बड़े दिन
0: फिल्टर हो कने ठंडा पानी है ना जी ये दिखा हुई क्या बोलते है दाड़िए का मेला होया हाँ मिंजो लग मैं तो सोचे कड़ा खरीदे मैं शैल कड़ोलू नीता इथू ते इतना ठंडा पानी
1: गई पर सही गल ना क्या बोलते देर ताई हूं आदत कुछ सुधारनी घड़ा तो

0: है, पर फिर से हाथ चली जाता फ्रिजे पासे। हुण क्या करिए, थोड़ा टाइम लगना सुधरने च, कने सांझो अपने आप जो सुधारने का। कने दिखा घड़ा तो मैं भी लेके आई दाड़िए दे मेले, तो तुहां मैनूं दस्सिया है ना, तो थोड़ा घड़ा दिखी के मैं संजय चली आई मेले, मैं भी एक छड़ी के दो घड़े लेके आई मैं भी फ्री।
1: ठीक है कहने देखो भाई खंग है तो हाँ से काड़ू कुड़ू बनाना, तुलसी पत्ते
0: अजी
1: लाची है ना जी, ये
0: आजकल
1: जो
0: बड़ा कुछ
1: अजवाइन
0: होंगे
1: पाई के ना तो हाँ काड़ू बनाना से पीना कहने है
0: जी
1: ना,
0: जी
1: इसने तो
0: जी
1: अंजू पे ही आना फर्क।
0: तो देर उताई तो मेरा हाल चाल तो पूछ ही लिया। दिखा हूँ किसान भाई जड़े ने सब बोला दे होने कि आज जानकारी क्या देनी होगी ना, तो उन जानकारी पासे भी चल दिया ना।
1: जी अज असा जानकारी देनी है मुर्गी पालन दे बारे च है ना
0: जी
1: जी,
0: जी
1: कने मुर्गी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिस विच मुनाफा ज़्यादा है, कने
0: बिल्कुल
1: पैसे घट लगते, कने समय भी जड़ा से घट लगता है ना जी,
0: जी
1: कने भी घट जगह बिच हाँ शुरू भी करी सकते इस जो है ना जी। इस
0: जी
1: व्यवसाय जो मुख्य तौर पर दो कम्मा ताई रखते हैं है ना जी,
0: जी
1: जियाँ कि इसका उत्पादन जड़ा से अंडा उत्पादन वास्ते किया जाता है या फिर मांस वास्ते है ना जी,
0: बिल्कुल
1: जियाँ लेयर फार्मिंग हुई है, फ्लोरल फार्मिंग वास्ते इसका जड़ा से व्यवसाय किया जाता है ना।
0: जी
1: मुर्गी पालन शुरू करने से पहले कुछ मुख्य गल्लां दा ध्यान आंजो रखना पौंदा है, जियाँ कि जलू अह मुर्गियाँ खरीदनियाँ पालन वास्ते तो मुर्गी दे भी कई तरह के प्रकार हैं, जियाँ कि ब्रॉयलर है ना फार्मिंग है,
0: जी
1: इन्हों का पालन केवल मांस ताई किया जाता है, ये
0: जी जी
1: लगभग 40 से 50 दिनों विच तैयार हो जाता है ना जी, क्योंकि जिन्हें मुर्गी पालन करना कने सिर्फ मांस बेचने ताई ही मुर्गी पालन करना था, इन्हों
0: तिना
1: ताई
0: वास्ते
1: ये
0: वाली जड़ी
1: किस्म जड़ी है से अति
0: ज्यादा
1: उत्तम
0: अच्छी
1: है
0: है।
1: ना जी,
0: बिल्कुल
1: कने जे लेयर फार्मिंग यानी कि अंडे वगैरह बेचने ताई करना है तो इन्हों ताई चा मतलब इस मुर्गियां जड़ियाँ तो 4 से 5 महीने की उम्र बिच जड़े से अंडे देना शुरू करी दिंदियां, कने 1 साल तक अंडे जड़ियाँ से दिंदियां रहिंदियां, तो असां ये मतलब निर्णय कर लेना कि असां कुण दे काम जड़ा करना, कई साढ़े साथियों तिना दोनों चीज़ा जड़ियाँ से रखियां ना जी।
0: बिल्कुल मिला जुला जड़े किस्मान से तुहां पाली सकते हैं और बड़ी अच्छी आमदनी कमाई सकते हैं। कहीं सोगी देर ताई दिखा, वैसे तो साड़ा जड़ा किसान है आजकल बड़ा जागरूक हो चुके हैं ये सब काम जो करता है, पर कई बार यहाँ क्या करते कि एक दूए दिखी करी काम शुरू करी देंदे ना, तो इसने सांझो पता नहीं होंगे, पूरी जानकारी नहीं होंगी। तो हाँ ये गलाना चाहेंगे कोई भी काम जल तुहां शुरू करना है तीसरी पहले खरी किते सीख ही लिया, या कोई जानकार माणू है जिन्हें से काम कित्या हो तीसरी मुनाफा हो अदा हो, तो तिस्ते जरूर जानकारी ले लेना चाहिए।
1: जी कने विभाग भी दिखा जालू भी अहाँ तो हाँ कोई भी अपना व्यवसाय शुरू कर देने, चाहे कृषि संबंधित है या मुर्गी पालन है भेड़ पालन है
0: पशुपालन
1: ना
0: जी।
1: डेयरी का काम कर दें, तो जड़े साढ़े संबंधित विभाग हैं से इस पर हाँ जो जानकारी ट्रेनिंग कने मदद जड़ी है से सारी चीज़ें जड़ी है से उपलब्ध करवाता है, तो दिखा
0: बिल्कुल
1: भाई मुर्गी पालन ताई दिखा देसी मुर्गी पालन भी है, इस बिच दिखा इन्हां दी बाजार बिच कीमत कने जड़ी मांग ऐसे दोनों ज़्यादा रहिंदी,
0: जी
1: कने देसी किस्मा बिच बीमारियां भी कम होने दी संभावना होंदी, कने इन्हां जो आ खुले बिच भी पाली सकदे हैं ना जी, कने
0: जी
1: इन्हां दियां प्रमुख नस्लां जड़ियां जियां कड़कनाथ है, सोनाली, RIR है ना जी,
0: जी
1: तो ये किस्मा भी हाँ तो हाँ पाली सकदे जिन्हें भी व्यवसाय करना है, कने जालू अहाँ इन्हें दे रहने की व्यवस्था करनी है, दी सेड जड़ा बनाना है तो इस ताई
0: जगह
1: अहाँ
0: का
1: ऐसी
0: चुनाव
1: जगह का
0: जड़ा
1: चुनाव
0: ऐसे
1: ऐसी जगह करना है मतलब सेड ऊंचे जगह बनाना है ताकि जियाँ बर्खा वगैरह होए तो पानी
0: पानी
1: है
0: तो
1: ना,
0: बची जाए से ना,
1: हाँ
0: कने
1: पानी
0: हवादार अच्छा होना चाहिए है ना जी।
1: बिल्कुल पानी नहीं रुके कने मतलब हवा वगैरह से ठीक आती रहे ना जी,
0: जी
1: कने
0: जी
1: सेड जड़ा तिदी लंबाई हमेशा पूर्व ते पश्चिम दिशा दी तरफ जड़ी है से करनी ताकि मुर्गियां जो सीधी धूप कने तेज हवा ते जड़ा से बचाई सकदे हैं, बची जान भाई सीधी धूप नहीं पहुंच देना है
0: बिल्कुल
1: जी।
0: कने जेड़ा शेड है से भी तुहां कोशिश करा कि सड़कां दे कंडे होए ताकि तुहां जो मुर्गियां जो तां तू लेके जाने दी कोई समस्या ना होए, है ना जी।
1: जी कने मुर्गी इतनी भी नहीं कि बिल्कुल भीड़ियां भीड़ियां पाई
0: पीड़ियां
1: देनी है, वे
0: पीड़ियां जी
1: बड़ियां
0: जी
1: थोड़े थोड़ी जगह च बड़ियां मुर्गियां पाई देन, इसने भी मुर्गियों
0: हाँ
1: का स्वास्थ्य जो बड़ी गर्मी लगती तो भी खराब हो जाती है ना
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: स्वास्थ्य देना, तो मुर्गी वास्ते ना एक ते लेके 1.5 वर्ग फुट की जगह जी से एक मुर्गी वास्ते जी से
0: होना
1: होना ही चाहिए है
0: चाहिए।
1: ना,
0: बिल्कुल
1: तो इतना भी नहीं कि असा बिल्कुल मतलब थोड़ी जगह से ज़्यादा मुर्गियां रख देनी है, तो असा तिन्हां दी जगह का खुले का भी ध्यान जड़ा से रखना है ना जी।
0: बिल्कुल तो देर ताई तुहां बड़ी अच्छी जानकारी जी साढ़े किसान भाइयों ने दी है, कने जरूरी ना जरूर सोचे होना है मुर्गी पालन के बारे च, तो यह जानकारी तिना वास्ते जरूर कारगर साबित होनी है। कने हुण ट्याले पर समय है लोक गीत का, तो चलते हैं अहां भी सुन लेन सोगी सुनांदे अपने किसान भाइयों जो प्यारा दिया लोक गीत।
1: जी।

0: किसान साथियों तुहां सुने है प्यारा दिया लोक गीत और दिखा इस गीत च गगरी दी भी गल कीती होती तो गगरियां जिहड़ियां इंदे ताईं से हुण अजकल थोड़ा जिहा लुप्त होआ दियां क्यों कि दिखा ब्याह कारजां च कुत्ती कुत्ती गगरियां जिहड़ियां इनसे सूझदियां है ना जी
1: जी
0: पर दिखा अपनी जी परंपरा से भूलना नहीं चाहिए है अपने रीति रिवाज जो चलाए रखने चाहिए कने किसान साथियों तुम्हें पता है ट्याले पर हाँ तो दिन जानकारियां और जानकारियां की कड़ी चुना हाँ चलना है अगे कने साडे जो किसान मित्र हैं तिन्होंने गलबात की हो जानकारी लेके आए तो जानकारी जी से हाँ सुन देन
1: जी
2: भेंट वार्ता की कड़ी में जिंया कि तुहां जो पता है हर दिन अहां दा प्रयास रहिंदा एक नित नोई ते नोई जानकारी अहां तुहां तकर पुजाइए। मैं किसान मित्र अज अहां दे टियाले पर आए हो ना अज दे खास प्रोहणे जड़े कि हैं डॉक्टर केर सिंह ठाकुर कन ए विज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र चंबा च कार्यरत हैं। तो डॉक्टर साहब जी टियाले पर तुहां दा बहुत बहुत स्वागत है जी।
3: धन्यवाद जी, बहुत बहुत आपका आभार।
2: तो डॉक्टर साहब जी गलबात करदे ने जिंया कि अज दा जड़ा अहां दा विषय है सह है सुगंधित पौधे कने औषधीय पौधे दी खेती जो करी के किन्या अहां दे किसान साथी बागवान साथी अपनी आर्थिकी जो मजबूत बनाई पान। ता अहां दे सुनने आले तुहां सबसे पहला ए दसा कि ए जड़े सुगंधित पौधियां विच जड़े से कुण-कुण पौधे आंदे कने औषधीय पौधियां दी श्रेणी च कुण-कुण पौधे आंदे ने।
3: बिल्कुल, बड़ा बढ़िया तुहां प्रश्न कीता। सारे ते पहले तां मैं तुहां ए दसणा चाहदा कि ए जड़े चाहे से औषधीय पौधे होन चाहे सुगंधित पौधे होन इन्हां दा जिक्र अज ते नहीं है।
2: हाँ जी,
3: बड़े पुराने समय थे है कने यहाँ जेड़े ऋषि मुनि जेड़े थे सह इन जड़ी बूटियां ते ही दवाइयां बनाते थे कने अहां दा जेड़ा सह आदमी होन चाहे जानवर होन तिन्हां दा इलाज करदे थे।
2: जी डॉक्टर साहब जी, तो हाँ बिल्कुल जेड़ा सह एक पते दी गल जेड़ी से दसी है कि पुराने समय च दिखा अज दी अहां गल करन दा कितनी सारियां मशीनां आई हैं चाहे अहां दे एक्सरे होने सीटी स्कैन होने या होर, लेकिन उस जमाने विच दिखा एक वैद नाड़ी दिखी के दसीन दे कि तुहां जो ए बीमारी है अगर तुहां ए खाद्य है ना।
3: बिल्कुल
2: जी डॉक्टर साहब जी, हां जी
3: बिल्कुल बिल्कुल कने
2: हां जी
3: हुण जेड़ा समय है से एलोपैथी दा युग बोलदे सी ओ
2: जी।
3: पर तुहां मैं एक चीज दसना चाहंदा कि इस च जितने भी दवाइयां बनदियां
2: हैं हां जी
3: तिस विच कुथी ना कुथी जेड़ा ना
2: हां जी
3: से अहां दा जेड़ा आयुर्वेदा है आयुर्वेद दे जेड़े प्रोडक्ट हैं या जड़ी बूटियां हैं
2: जी
3: तिस दा इस्तेमाल होंदा।
2: हां जी
3: कने सारे ते बड़ी हैरानी दी गल है कि अज दे समय पर भी ज्यादातर जेड़ी अहां दी जड़ी बूटियां हैं से जंगले ते आउंदियां।
2: बिल्कुल
3: ठीक है
2: हां जी,
3: तेना दा अगर तुहां देखन तां वैज्ञानिक तौर पर सह जिहड़ी जड़ी बूटियां ने सह हाले भी अहां दे जिहड़े किसान बागवान भाई जिहड़े सह अपनी जमीनां पर नहीं उगा दे। तां सारे ते पहला प्रश्न जिहड़ा सह ए ही है कि भई किसान जो कियां जे तिन्हां अगे लान कने तिन्हां प्रोत्साहित करन कि भई तुहां अगे आ कने इन्हां चीजां दी खेती बाड़ी करा कने ए भी इक जिहड़ा तुहां दा अतिरिक्त आय दा जिहड़ा साधन है सह बणी सकदा।
2: हां जी,
3: समय समय पर ए नहीं है कि सरकारां प्रयास नहीं करा दी या जिहड़े अहां दे विश्वविद्यालय सह प्रयास नहीं करा दे, प्रयास हर तरफ ते होंदा
2: जी,
3: पर कुथी ना कुथी जेड़ा से गैप रही जांदा कुथी ना कुथी हां दी कमजोरी रही जांदी तिस दी वजह ते जेड़ा हां तिस चीजा जेड़े से अग्गे नहीं लैन जांदे।
2: हां जी,
3: हुण मैं तुहां दसना चाहंदा कि अगर तुहां सरकारी तौर पर भी अगर कोशिश करना ता पूरे हिंदुस्तान च गल करना ता कम से कम 100 जेड़ी जड़ी बूटियां दे ही है ना
2: कि
3: जेड़े बड़े बड़ी ज्यादा जरूरत जिन्हां दी आयुर्वेद च होंदी।
2: बिल्कुल
3: ठीक है, कने जेड़ा अहां दा राष्ट्रीय जेड़ा पादप बोर्ड है इसदा सह होए चाहे अहां दा इत्थों दा राज्य सरकार पर जेड़ा मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है तो तिना भी कुछ जिहड़ी अहां दी प्रजातियां से चिन्हित कीतियां कि ए ए जिहड़ी ज्यादा बिकने वाली ज्यादा व्यापार इन्हां दा हुंदा कने इन्हां इन्हां जिहड़ी जड़ी बूटी इना जो तुहां उगा कने इस ते जेड़ा से तुहां ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सकता। ता 100 जेड़ा मैं तुहां दसा दा कि पूरे भारत वर्ष च 100 जेड़ी प्रजातियां जड़ी बूटियां दे सहित दे न कि जिन्हां दा व्यापार विच ज्यादा ते ज्यादा जेड़ा महत्व है
2: जी,
3: कने तिना विच 32 जेड़ी प्रजातियां ने हिमाचल च हो सकदी है पैदा
2: जी। दिखा भाई इस ते जेड़ी से बेहतर गल और क्या हो सकदी है कि इतनियां प्रजातियां जेड़ी से अहां दे हिमाचल विच जेड़ी से उगाई जा सकदी है ना।
3: बिल्कुल बिल्कुल, सारे ते बड़ी बढ़िया गल अहां दी हिमाचल प्रदेश दी है कि हिमाचल दे प्रदेश जड़ा से बड़ा खूबसूरत अहां दा प्रदेश है कने हिमालय दी गोद दे च बसया से।
2: बिल्कुल,
3: कने जलवायु इत्थू दी इतनी अनुकूल है जेड़ी भी अहां कोई गल करा दे कि जड़ बूटी है तिस वास्ते चाहे इत्थू दी मिट्टी होए चाहे इत्थू दा तुहां दा जलवायु होए जेड़े आवा हवा है सारी अनुकूल है
2: जी।
3: पर कोशिश जेड़ी जड़ी है से सिर्फ जरूरत क्या है, जरूरत यही है कि अहां जो क्षेत्र दे हिसाब पर अहां कुछ कुछ जड़ी चीजन से जड़ी बूटियां से अहां चिन्हित करना पौनी तिना पर काम करने की जरूरत है।
2: जिया सुगंधित पौधों के उपर अहां गलबात करा करते हैं सोगी औषधीय पौधों के उपर, अगर सुगंधित पौधों की गल करिए डॉक्टर साहब तो जिया की रात राणी होगी, गुलाब है, लैमन ग्रास हो इसके अलावा जिया पुदीना हो पावड़ी हो भी क्या सुगंधित पौधों की श्रेणी ची आते
3: दोनों काम करते औषधीय गुण भी ने इन्हें।
2: हाँ जी
3: कहने औषधीय गुण होने दे सौगी सौगी इन्हें सुगंधित तेल या बाकी चीजें भी हैं। तो हाँ कुछ गणाए मैं तो हाँ और हाँ रोजमेरी है
2: जी जी
3: सह खुशबूदार पौधा है।
2: हाँ जी
3: फिर तो हाँ दा लवेंडर आई गया।
2: हाँ जी
3: जरेनी में आई गया।
2: हाँ जी मधुकामिनी।
3: हाँ मधुकामिनी बैबूना आई गया।
2: जी जी
3: फिर तो हाँ एक वाइल्ड मैरी गोल्ड होंदा।
2: हाँ जी
3: जंगली गेंदा ये सारे सुगंधित है ना। ज्यादातर अगर तो हाँ देखा तो ये प्राकृतिक तौर पर ही जी है ना जंगले ही मिलते कने।
2: हाँ जी
3: इसकी खेती बाड़ी जी बड़ी घट करते भी है ना तो बड़े इको दिको कने बड़े भी बड़ी घट संख्या च करते
2: जी
3: है ना।
2: हाँ जी
3: ये नहीं बोली सकते हाँ कि इसका स्कोप नहीं है।
2: हाँ जी
3: हाँ मैं तो हाँ एक उदाहरण देना चाहता कि कहां दे पवन जी है भटियात दे किसान ने।
2: अच्छा
3: तो तेना आपू सो की कम से कम ढाई किसान जेड़े से आपू कने जोड़े जंगली गेंदे पर।
2: अच्छा
3: और जंगली गेंदे दे क्या कर दे सह तेल कर दे।
2: हाँ
3: कने सह तेल जेड़ा सह आज दी डेट पर अगर मैं तो हाँ वो करना चाहा तो मार्केट विच 9,000 ते लेकर 12,000 पर किलो दे जेड़ी ते तिसदी कीमत है।
2: अच्छा। ठीक है
3: हाँ पर कम करने की जरूरत है ना सह भी करा दे और भी करा दे। और इन्हें जेड़ा प्रोत्साहन शुरू शुरू विच दित्ता था जेड़ा अहां दा IHBT पालमपुर है इथों दा एक प्रोजेक्ट था तिसदे माध्यम ते चाहे सह तो हाँ दा मुस्कबाड़ा हो गया।
2: हाँ जी
3: या फिर ये जंगली गेंदा हो गया।
2: हाँ
3: इस पर जेड़ा सा काम करा देता इस दे माध्यम ते तिना जो जेड़े तिथु डिस्टिलेशन यूनिट जिस विच तेल कट देना।
2: हाँ
3: मशीन भी तिना किसान दिते गई कने तिना बड़ा अच्छा रिस्पांस देता।

0: किसान कने बागवान साथियों, इस प्यारे दे लोक भजन कने साडे कार्यक्रम किसान वाणी दा समय इत्थों ही मुका करदा है। जाने ते पहले दसी दिए कार्यक्रम च तकनीकी सहयोग रहा सुरेंद्र कपूर होरां दा, कने कार्यक्रम प्रस्तुति जतिंदर पाल सिंह होरां दी। हुण अपने टियाले दे साथियों जो दिया अनुमति।
1: अच्छा जी, जय हिंद।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 7:45 होने को हैं। अब आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: हिमाचल के युवाओं, अब सिर्फ सोशल मीडिया पर ओपिनियन देने का नहीं, वोट देने का भी वक्त आ गया है।
1: इस पंचायत इलेक्शन में 50 लाख से ज्यादा वोटर्स अपने मत का अधिकार इस्तेमाल करेंगे और हजारों फर्स्ट टाइम वोटर्स भी बनेंगे इस बदलाव का हिस्सा। 26 मई, 28 मई और 30 मई, याद रखिए ये तारीखें।
0: आपकी एक वोट आपके गाँव की सोच, विकास और लीडरशिप को तय करेगी। तो निकलिए घर से और बनिए जिम्मेदार नागरिक। पंचायत चुनाव 2026, वोट जरूर करें।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, प्रदेश के सरकारी स्कूलों को बनाया जाएगा देश भर में सर्वश्रेष्ठ। सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को मिलेगा अधिक विषयों का विकल्प। पंचायती राज संस्थाओं के पहले चरण के चुनाव में कल 1293 पंचायतों में डाले जाएंगे वोट। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी लोगों से जनगणना कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लेने का किया आग्रह। 16 जून से शुरू होगा जनगणना का पहला चरण। प्रदेश भाजपा ने राज्य सरकार पर आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का लगाया आरोप। राज्यपाल से की हस्तक्षेप की मांग। और डीडी न्यूज की महानिदेशक ममता वर्मा ने दूरदर्शन केंद्र शिमला में नए पॉडकास्ट स्टूडियो महारा हिमाचल का किया शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों को देश भर में सर्वश्रेष्ठ बनाया जाएगा और इसके लिए राज्य सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में व्यापक स्तर पर बदलाव किए हैं। उन्होंने आज हाल ही में स्तरोन्नत किए गए सीबीएसई राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल छोटा शिमला में विद्यार्थियों के साथ संवाद किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री से सीबीएसई प्रणाली को लेकर सवाल भी पूछे। मुख्यमंत्री ने कहा कि छोटा शिमला स्कूल में इस वर्ष 30 जून से पहले अध्यापकों के सभी खाली पद भर दिए जाएंगे और सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को अब अधिक विषयों का विकल्प मिलेगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विद्यार्थियों से 5 जून को शिमला में होने वाली एंटी चिट्टा रैली में भाग लेने का आह्वान किया। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के पहले चरण के चुनाव के तहत कल 1293 पंचायतों में वोट डाले जाएंगे। मतदान सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। पंचायत प्रधान, उप प्रधान और वार्ड सदस्यों के लिए डाले गए वोटों की गिनती मतदान के तुरंत बाद शुरू होगी और कल शाम तक इसके नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। इसके अलावा जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए डाले गए वोटों की गिनती 31 मई को की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्वाचन अधिकारी संजीव महाजन ने आज शिमला में बताया कि 8,198 अधिकारियों और कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी पर तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कुल 21,678 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पंचायती राज संस्थाओं के लिए दूसरे चरण में 28 मई जबकि तीसरे चरण में 30 मई को वोट डाले जाएंगे।
3: टोटल पूरे हमारे 21,678 मतदान केंद्र हमने स्थापित किए हैं, जिसमें से हमारे 16,539 मतदान केंद्र जो बिल्कुल सामान्य है, लगभग 3,554 संवेदनशील हैं और 1,585 मतदान केंद्र जो है वो अति संवेदनशील हैं और उनके ऊपर वेबकास्टिंग की जा रही है, लाइव वेबकास्टिंग होगी। तो टोटल हिमाचल में 50,80,000 मतदाता है, जिसमें से हमारे 25

0: 28,000 पुरुष हैं और 25,12,000 महिलाएं फर्स्ट टाइमर वोटर हैं। वो हमारे 52,350 वो नए वोटर हैं जिनमें ऐड हुए हैं बच्चे 18 साल वाले। ग्राम पंचायत भाटा वाली विकासखंड पौंटा साई में 4,623 मतदाता हैं इसमें, और सबसे कम जो है वो पूहू की ग्राम पंचायत सुमरा में है, वहां पर केवल 178 मतदाता है।
1: प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा में भी पंचायत चुनावों को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। पहले चरण में जिला में 287 पंचायतों में मतदान होगा। दुर्गम क्षेत्र बड़ा भंगाल पंचायत में मतदान के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी हेमराज बैरवा ने आज धर्मशाला में बताया कि बड़ा भंगाल पंचायत में डाले गए वोटों की गिनती 31 मई को की जाएगी।
2: हमारी 287 पंचायतें इसमें शामिल हैं। हमारा बड़ा बंगाल की एक पंचायत है, उसकी मतगणना कल नहीं हो पाएगी। वहाँ पर पोलिंग पार्टी मतदान संपन्न करवा कर वापस यहाँ पर आएंगे। उनकी जो मतपेटियाँ हैं उनको हम स्ट्रांग रूम में सील करके रखेंगे, और 31 तारीख को जिस दिन हमारी जिला परिषद और BDC की काउंटिंग होनी है, उनके साथ साथ बड़ा बंगाल की पंचायत की मतगणना भी की जाएगी।
1: सोलन जिला में पहले चरण के मतदान कल 87 पंचायतों में होंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी मनमोहन शर्मा ने बताया कि जिला में कुल 3,52,901 मतदाता पंजीकृत है। उन्होंने बताया कि संवेदनशील व अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर CCTV से निगरानी की जाएगी और इन्हें वेबकास्टिंग से जोड़ा गया है।
3: जिला सोलन में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव 26 तारीख से शुरू हो रहे हैं। पहले फेज में 87 पंचायतों में चुनाव होंगे, और प्रशासन द्वारा जो संवेदनशील मतदान केंद्र है और जो हाइपर सेंसिटिव है उनके लिए CCTV लगाने की व्यवस्था की है। 549 पोलिंग पार्टीज है पूरे जिला में, जो कि 3 चरणों में निर्वाचन के कार्य को पूरा करेंगे। मतदाताओं से मैं यही अपील करूंगा कि इस अवसर पर अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें।
1: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के सभी लोगों से जनगणना कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग लेने का आग्रह किया है। जनगणना निदेशालय की निदेशक दीप शिखा शर्मा ने आज शिमला में मुख्यमंत्री से भेंट की और उन्हें जनगणना 2027 के विभिन्न पहलुओं से अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में जनगणना का पहला चरण 16 जून से 15 जुलाई के बीच करवाया जाएगा। लोगों को इस बार स्वगणना का विकल्प भी दिया गया है और पहली से 15 जून तक स्वगणना पोर्टल पर जानकारी दर्ज करवाई जा सकती है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश भाजपा ने राज्य सरकार पर आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज शिमला स्थित लोकभवन में राज्यपाल कविंद्र गुप्ता से भेंट की और उन्हें इस बारे में एक ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल सहित अन्य वरिष्ठ नेता भी शामिल रहे। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने चुनाव आचार संहिता के बीच मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई और कई ऐसे फैसले लिए जिनका असर पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों पर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि नगर निगमों व नगर पंचायतों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनावों को प्रभावित करने के लिए नियमों में बदलाव लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ है। भाजपा ने इन सभी मुद्दों पर राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग की।
4: चुनाव को प्रभावित करने के लिए प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी कोई कसर नहीं छोड़ रहे। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन बहुत बड़े स्तर पर हुआ है। कॉर्पोरेशन के चुनाव में जाते हैं, पार्टी के सिंबल पर चुनाव हो रहा है और आचार संहिता लगी हुई है। मुख्यमंत्री जाते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस का काउंसलर चुन करके भेजिए, मैं 50 लाख रुपए आपके लिए विकास के लिए दूंगा। ये सीधी सीधी आचार संहिता के उल्लंघन की खुलेआम जो है जिसको शुरुआत की गई, और आचार संहिता के बीच में कैबिनेट फैसले लिए जाते हैं ऑफिशियल ब्रीफिंग ना करके। मीडिया को जो है वो सारे के सारे फैसले बता दिए जाते हैं और फैसले के लिए जो चुनाव को प्रभावित करते हैं।
1: दूरदर्शन समाचार नई दिल्ली की महानिदेशक ममता वर्मा ने आज दूरदर्शन केंद्र शिमला में मारा हिमाचल नाम से नए पॉडकास्ट स्टूडियो का शुभारंभ किया। DD न्यूज हिमाचल में संचार व संवाद की दिशा में एक नवाचार किया है। मारा हिमाचल की टैगलाइन अपने लोग अपने किस्से रखी गई है। ममता वर्मा ने इस नवाचार की सराहना करते हुए कहा कि इससे दर्शक समाज के कई जाने अनजाने लोगों की उपलब्धियों के बारे में जान सकेंगे। इस मौके पर दूरदर्शन व आकाशवाणी के क्लस्टर प्रमुख व उप महानिदेशक कश्मीर सिंह, दूरदर्शन केंद्र शिमला की समाचार प्रमुख नंदिनी मित्तल, आकाशवाणी शिमला के समाचार प्रमुख रितेश कपूर, आकाशवाणी के कार्यक्रम प्रमुख अनिल वर्मा और दूरदर्शन के कार्यक्रम प्रमुख विकास कुमार सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी भी मौजूद रहे। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने छठी से बारहवीं कक्षा तक के पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करने की कवायद तेज कर दी है। बोर्ड के सचिव विशाल शर्मा ने धर्मशाला में बताया कि स्कूली विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक व डिजिटल शिक्षा से जोड़ने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में AI शिक्षा की आवश्यकता बढ़ने वाली है और इसी उद्देश्य से स्कूल शिक्षा बोर्ड ने AI को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने का निर्णय लिया है। विशाल शर्मा ने बताया कि इस बारे में राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है।
5: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय में ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। पूरे वर्ल्ड की जो AI लिटरेट संख्या है उसमें 17% जो है वो हिंदुस्तान में, हम इस पाठ्यक्रम को लागू नहीं कर पाए थे, तो इसमें हम भी पीछे नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए हमने एक पाठ्यक्रम छठी क्लास से लेके बारहवीं क्लास तक जो है यहाँ पे हमने दो कार्यशालाएं की थी। राज्य सरकार से हमने सेक्रेटरी एजुकेशन को अनुरोध किया कि आप हमें प्रेजेंटेशन के लिए समय दें, किस तरीके से इस पाठ्यक्रम को लागू करना है, कब लागू करना है, इसके बारे में फिर राज्य सरकार जैसा निर्णय लेगी वैसा हम आगे करेंगे।
1: राज्य सरकार ने प्रदेश में ईद उल जुहा के अवकाश में बदलाव किया है। आज जारी अधिसूचना के अनुसार प्रदेश में अब 27 की बजाय 28 मई को ईद उल जुहा पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय में 21 से 23 अगस्त तक विशेष लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा, जिनमें सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों का निपटारा किया जाएगा। इसका उद्देश्य लंबित मामलों का सुलह और आपसी सहमति से निष्पादन करना है। सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों को विशेष लोक अदालतों में शामिल करने के लिए एक गूगल फॉर्म तैयार किया गया है। ये गूगल फॉर्म सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट www.sci.gov.in पर उपलब्ध है। गूगल फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 31 मई तय की गई है। धर्मशाला के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच IPL का पहला क्वालिफायर मैच कल खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मैच को जीतने वाली टीम IPL के फाइनल में पहुंचेगी। इस मैच को लेकर HPCA ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और इस मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला के लोकभवन में राज्यपाल कविंद्र गुप्ता से भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के साथ प्रदेश में विकास व जन कल्याण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। बैठक के दौरान सुशासन और प्रदेश में चलाई जा रही विकासात्मक पहलों पर भी संवाद किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, प्रदेश के सरकारी स्कूलों को बनाया जाएगा देश भर में सर्वश्रेष्ठ। CBSE पाठ्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को मिलेगा अधिक विषयों का विकल्प। पंचायती राज संस्थाओं के पहले चरण के चुनाव में कल 1293 पंचायतों में डाले जाएंगे वोट। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी लोगों से जनगणना कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लेने का किया आग्रह। 16 जून से शुरू होगा जनगणना का पहला चरण। प्रदेश भाजपा ने राज्य सरकार पर आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का लगाया आरोप। राज्यपाल से की हस्तक्षेप की मांग। और DD News की महानिदेशक ममता वर्मा ने दूरदर्शन केंद्र शिमला में नए पॉडकास्ट स्टूडियो मारा हिमाचल का किया शुभारंभ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
6: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला, धर्मशाला, हमीरपुर केंद्र के साथ ही FM शिमला पर भी एक साथ रिले किया गया। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। आकाशवाणी शिमला और FM शिमला पर आइए सुनते हैं देशगान।

0: देशगान अभी आपने सुना
1: FM बैंड 103.4 MHz पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी का मनोरंजन संसार छुए सबके दिल के तार।
2: सुबह से रात तक रहता है हमारे अंग संग, इसीलिए तो रंगे हैं हम इसके रंग।

0: कहानी।
1: छूटे ना हर दिन कोई जानकारी, इसीलिए तो है हर किसी को प्यारी।
2: भक्ति संगीत के साथ करता है भाव विभोर, बांधे हुए है सबके दिल की डोर।
3: ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।
1: सदाबहार गीतों का संगम, थामे है हर दिल की धड़कन।
2: फिर आती युवाओं की बारी, मनोरंजन के साथ मिलती हर जानकारी।
1: किसानों का तो नाता जुड़ा इससे, सुनते जानकारियां और नए नए किस्से।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना।
2: श्रोताओं कार्यक्रम में लीजिए, सुनिए सोनू निगम का गाया हुआ ये गीत।

FM बैंड 103.4 MHz पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 8:17 हुए हैं और आप सुन रहे हैं विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस। और कार्यक्रम में आगे लीजिए, सुनिए ये गज़ल। इस गज़ल को गाया है पंकज उदास ने।

अभी आप सुन रहे थे विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 8:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए देशगान।

FM बैंड 103.4 MHz पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार और रात्रि 9 बजे अंग्रेज़ी में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिवंगत धर्मेंद्र और जानी मानी वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पहलों का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार प्रणाली में तकनीकी खराबी के बाद फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए संयुक्त अभियान जारी। सेना और SDRF की टीमों ने अब तक 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री कल नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया। और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय धेरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया।
1: पद्म विभूषण श्री धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी।
0: वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।
1: पद्म विभूषण
2: डॉक्टर श्रीमती एन राजम कला वायलिन।
0: पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। एक रिपोर्ट।
3: पद्म भूषण श्रेणी में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को सार्वजनिक क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, जबकि भाजपा नेता विजय कुमार मल्होत्रा को मरणोपरांत लोकसभा श्रेणी में ये पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा शतपथधानी डॉक्टर आर गणेश को कला क्षेत्र में और विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे को मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला। उद्योगपति उदय सुरेश कुमार कोटक को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वहीं डॉक्टर कलीपति रामास्वामी स्वामी को चिकित्सा क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार मिला। पद्मश्री से सम्मानित होने वालों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर बुल्लर, तागाराम भील, रतिलाल मोहनलाल भूरी सागर, स्वामी ब्रह्मदेव और कुमार बोस शामिल हैं। वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति ने 131 पद्म पुरस्कार को मंजूरी दी है। शेष पद्म पुरस्कार विजेताओं को बाद में आयोजित होने वाले समारोह के दूसरे चरण में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आनंद कुमार के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के अतिरिक्त उर्वरक की कीमतें अप्रत्याशित स्तर पर पहुंच गई हैं।
4: हाई इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस
5: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
4: फ्यूल, फर्टिलाइजर एंड फॉरेन एक्सचेंज।
0: सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही
6: कि रिफाइनरी प्रोडक्शन एलपीजी का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले चार दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले चार दिनों में लगभग 196,000 सेल हुए हैं।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के कुशल मंगल के लिए लगातार उनके संपर्क में है।
7: Several key agreements were signed.
8: यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिली है, विशेष रूप से एलपीजी की आपूर्ति सुनिश्चित करने और देश के पेट्रोलियम भंडार को सुदृढ़ करने में इन समझौतों की अहम भूमिका रहेगी। इसके साथ ही निवेश से जुड़े समझौते भी किए गए। इससे संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसरों का प्रभाव बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी के लिए एक रूपरेखा समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए।
7: Which is again given a boost to our defense partnership with UAE.
0: उर्वरक विभाग के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है।
9: Against the assessment of
5: इस वर्ष के लिए निर्धारित 390.54 लाख मीट्रिक टन के अनुमानित लक्ष्य की तुलना में वर्तमान में उपलब्ध भंडार 200.12 लाख मीट्रिक टन है। ये कुल अनुमान का 51% से अधिक है, जो सामान्यतः रहने वाले 33% के स्तर से काफी अधिक माना जा रहा है। देश में अब तक लगभग 95 लाख मीट्रिक टन का घरेलू उत्पादन हुआ है, जबकि करीब 22.60 लाख मीट्रिक टन आयातित सामग्री भी देश में पहुंच चुकी है।
9: Like metric tons of imports have reached our shores.
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार में तकनीकी खराबी के बाद सेना और राज्य आपदा मोचन बल बचाव अभियान चला रहे हैं। बेस स्टेशन और पहले चरण के बीच सेवाएं आज अचानक बंद हो गईं और कई पर्यटक फंस गए। सेना ने कहा कि बुटापथरी बटालियन के जवानों ने मार्ग पर 3 सहायता दल तैनात किए हैं और दुर्गम इलाके में बचाव कार्य में सहायता के लिए एक ऑल टेरेन व्हीकल भी लगाया है। सेना के अनुसार तकनीकी खराबी के कारण कुल 65 केबल कारें प्रभावित हुई हैं। बचाव दल अब तक 46 केबल कारों में 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाल चुके हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटकों को निकालने के लिए बचाव दल जुटे हुए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया है। श्री प्रधान ने देश भर के सभी मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों और आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। एक रिपोर्ट।
2: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है जिसमें स्वास्थ्य, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री मोटेगी तोशिमित्सु से बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। जापान के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 2 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। ईरान के शीर्ष वार्ताकार अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण वार्ता के लिए दोहा पहुंच गए हैं। संभावित समझौते को लेकर आशा का माहौल है। वार्ता होर्मुज जल डमरू मध्य ईरान के उच्च संवर्धित यूरेनियम भंडार सहित प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित होगी। एक रिपोर्ट।
3: ईरान और अमेरिका के बीच जारी कूटनीतिक वार्ता में एक नया मोड़ सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने कतर में लगभग 12 अरब डॉलर की अपनी जब्त संपत्तियों को तत्काल जारी करने की मांग की है। माना जा रहा है कि यही मुद्दा दोनों देशों के बीच संभावित समझौते की दिशा में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मध्यस्थों के जरिए हुई वार्ताओं में कई मुद्दों पर प्रगति हुई है, लेकिन अब भी दोनों पक्षों के बीच कई बड़े मतभेद बने हुए हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत से जुड़ी नई शर्तें सामने रखी हैं। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वार्ता सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय तानाजी धीरे ने पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल वर्ग में अक्षय ने येलामन अमानगेल्डी को 4-2 से हराया। वहीं 97 किलोग्राम वर्ग में विक्की ने शेरजोत पोयोनोव को 7-5 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू चलने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन अशतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी ढाकाटे परिचर्चा में भाग लेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिवंगत धर्मेंद्र और जानी मानी वायलिन वादिका डॉक्टर एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पहलों का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार प्रणाली में तकनीकी खराबी के बाद फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए संयुक्त अभियान जारी। सेना और SDRF की टीमों ने अब तक 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री कल नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सायरम मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। The headlines. President Draupadi Murmu presents Padma Awards 2026 at Rashtrapati Bhavan. Noted film actor late Dharmendra and legendary violin maestro Dr. N. Rajam honored with Padma Vibhushan. Finance Minister Nirmala Sitharaman launches initiatives aimed at strengthening MSMEs and accelerate modernization of rural industries. Joint operation underway to evacuate stranded tourists at Gulmarg following technical fault in cable car system. 286 tourists rescued so far. Foreign ministers of India, Australia, Japan and US to participate in Quad meeting in New Delhi tomorrow. IMD forecasts severe heatwave conditions over Haryana, Delhi, Punjab, Uttar Pradesh and Rajasthan during next 2 to 3 days. And in wrestling, Indian grapplers Vicky and Akshay Dhere clinch gold in men's freestyle category at Asian Under 23 Championships in Vietnam. And now the news in detail. President Draupadi Murmu today conferred the Padma Awards to 66 eminent personalities,

श्रोताओं, MM करीम ने अपने संगीत के करियर की शुरुआत दक्षिण भारतीय फिल्मों से की थी और धीरे धीरे पूरे भारत में अपने अलग पहचान बनाई। उनके संगीत की खासियत भावनात्मक धुनें, भव्य ऑर्केस्ट्रा और भारतीय शास्त्रीय संगीत का सुंदर मिश्रण है। उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में संगीत दिया, जिनमें प्रमुख हैं बाहुबली, जिस्म, क्रिमिनल और साया, RR आदि कई प्रमुख फिल्में हैं।

श्रोताओं, फिल्म आरआर के गीत नाटू नाटू ने इतिहास रच दिया था। इस गीत को 2023 में ऑस्कर अवार्ड मिला और एमएम करीम विश्व भर में चर्चित रहे। उन्हें कई राष्ट्रीय पुरस्कार, फिल्मफेयर अवार्ड और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। भारतीय सिनेमा में उनका योगदान बेहद ही महत्वपूर्ण है।

चोरी चोरी चोरी हर कोई तुझे देखता है, दूर से नजारा करके आंखें सेकता है। क्यों ना तुझे चाहें, क्यों ना तुझे देखें, तू चीज है गजब की।

FM बैंड 103.4 MHz पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 9:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए हिमाचली गीत और लोकगीतों का कार्यक्रम में लीजिए सुनिए ये माता की भेंट, जिसे गाया है करनैल राणा ने।

श्रोताओं कार्यक्रम में आगे लीजिए, सुनिए रोशन अली और साथियों को।

श्रोताओं, ये माता की भेंट आपने सुनी संजीव कुमार की गाई हुई FM बैंड 103.4 MHz पर। यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 10 बजे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। नमस्कार दोस्तों, कार्यक्रम फिल्म संगीत में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपका साथी गौरव राय। श्रोताओं, रात की इस खूबसूरत महफिल में आपका दिल से स्वागत है। दिन भर की थकान के बाद अब वक्त है कुछ सुकून भरी बातों का, कुछ मधुर गीतों का और कुछ ऐसी शायरियों का जो सीधे दिल तक पहुंचाए। तो अगले एक घंटे तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये रात होगी एहसास की, यादों की और आपके साथ जुड़े रहने की।

रात खामोश ज़रूर होती है, लेकिन हर खामोशी के पीछे हज़ारों जज्बात छुपे होते हैं। सफ़र वही खूबसूरत लगता है जहां बातें दिल से और संगीत सुकून से भरा हो।

रूठ कर बैठे हो किस बात पर, दिल आज भी तुम्हें मनाने को तैयार है, तुम बस एक बार मुस्कुरा दो, बाकी हर गलती मानने को तैयार हैं।

वो आंखों से यूं मुस्कुराए कि दिल ने धड़कना भूल गया। हमने तो सिर्फ एक नज़र देखा था और पूरा ज़माना भूल गया। तेरी आंखों का मौसम बड़ा सुहाना है, जिसे देखो वही तेरा दीवाना है।

वो पाकीज़ा सी मुस्कान और आँखों में हल्की सी शर्म, ऐसे लोग हर रोज़ नहीं मिला करते। कुछ चेहरे सिर्फ खूबसूरत होते हैं और कुछ लोग पाकीज़ा, जिन्हें देखकर दिल साफ़ होने लगता है।

ये दौलत, ये शोहरत, ये महलों की दुनिया, दिलों की तड़प के बिना सब अधूरी कहानी है। जहाँ प्यार ना हो, जहाँ सुकून ना मिले, वो सारी हकीकत भी बस एक वीरानी है। ये चांद सितारे भी झूठे लगने लगते हैं यहाँ, जब आँखों में अपने ही ख्वाब टूटने लगते हैं यहाँ। जिस दुनिया में इंसान इंसान से दूर हो जाए, वो पूरी होकर भी बस एक नादानी है।

किस्मत के खेल भी अजब होते हैं, जो चाहो वो अक्सर कम होते हैं। मिलती हैं राहें कुछ और ही मोड़ पर, जहाँ ख्वाब थे वहाँ ही गम होते हैं।

पुकारते रहे हम तुझे हर मोड़ पर तू रहा किसी और ही दौड़ पर। आवाज़ मेरी हवा में खोती रही और तुम रहे खामोशी की ओट पर।

जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते, पर उनकी यादें हर पल साथ निभाती हैं। वक्त भले ही सब बदल दे दोस्त, कुछ लोग दिल से कभी नहीं जाते।

तेरे ख्याल आते ही मुस्कुरा उठता हूँ, जैसे वीराने में भी फूल खिला उठता हूँ। तू दूर से ही मगर एहसास पास रहता है, मैं हर पल बस तुझे ही जीता रहता हूँ।

कभी सुलझा दूँ तो कहानी बन जाए, कभी उलझा दूँ तो निशानी बन जाए। तेरी जुल्फों की ये शरारत ही तो है जो हर बार मुझे दीवाना बना जाए।

मेरा साया भी अब मुझसे सवाल करता है, क्यों तू हर मोड़ पर तन्हा सा चलता है। मैं साथ हूँ फिर भी तू अकेला क्यों है, ये रिश्ता भी अब खुद से ही सवाल करता है।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पद्म पुरस्कार से सम्मानित सभी विशिष्ट हस्तियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म पुरस्कारों को समाज के जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाले लोगों को सम्मानित करने का माध्यम बनाया है। गृहमंत्री अगले कुछ दिनों में भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे और सुरक्षा से संबंधित बैठकें करेंगे। सूत्रों ने बताया कि वे आज देर रात राजस्थान के बीकानेर पहुंचेंगे और कल सुबह बीएसएफ की सांचू सीमा चौकी का दौरा करेंगे, जहां वे सुरक्षा बलों के साथ बातचीत कर उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है।
1: High international crude prices and
2: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों, ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन

0: उनको होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया। श्री प्रधान ने देश भर के सभी उपराज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी से बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान के बीच एक विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। श्री जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 केबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। नेपाल में मौसम विभाग ने तराई क्षेत्रों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी तराई और लुम्बिनी क्षेत्र में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। नेपालगंज में भेरी अस्पताल में गर्मी से जुड़ी बीमारियों से करीब 100 मरीज रोज पहुंच रहे हैं। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू चलने की आशंका है। वियतनाम के दानांग में एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय तानाजी धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन।
1: This is Akashvani, the news read by Kiran Jha. President Draupadi Murmu today conferred Padma Awards to 66 eminent personalities for the year 2026 at the Civil Investiture Ceremony held at Rashtrapati Bhavan. Of them, 2 were conferred with Padma Vibhushan, 6 with Padma Bhushan, and 58 personalities were conferred with Padma Shri. Noted film actor Dharmendra Singh Deol has been honored with the Padma Vibhushan posthumously for his contribution in the field of art. The actor's wife and Lok Sabha MP Hema Malini received the award. The legendary Indian violin maestro Dr. N. Rajam were also honored with Padma Vibhushan. During the ceremony, Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Union Ministers Amit Shah, Gajendra Singh Shekhawat and H.D. Kumaraswamy were also present on the occasion. In Jammu and Kashmir, all tourists stranded in cabins of the Gulmarg Gondola ropeway were rescued safely after a major technical snag halted operations at the famous tourist resort. Officials today said more than 300 tourists were trapped inside 65 cabins of the cable car, some hanging nearly 500 feet above the ground, triggering panic among tourists, including women and children. Emergency evacuation protocols were activated immediately. A massive 7-hour rescue operation was launched jointly by teams of NDRF, SDRF, Jammu and Kashmir Police, Army's Chinar Corps and local administration. All passengers were brought to safety without any injuries. Jammu and Kashmir Lieutenant Governor Manoj Sinha said he monitored the rescue operation continuously and directed senior officials, including the DGP, to oversee rescue efforts on the ground. Chief Minister Umar Abdullah announced a probe into the malfunction and said actions would be taken if any lapses were found. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has launched a set of strategic portals and initiatives aimed at strengthening the MSME ecosystem, enhancing last-mile credit delivery and accelerating the modernization of rural industries. Speaking at an event in Mumbai to mark the 37th anniversary of the Small Industries Development Bank of India, SIDBI today, Mrs. Sitharaman called for increased focus on the 3 Fs. Fuel, fertilizer and forex amid the ongoing West Asia crisis, while asserting that the Indian economy remains resilient.
2: The West Asia crisis not only is a diplomatic or a geopolitical issue. For businesses and common people, it can mean higher fuel cost, delayed cargo, costlier shipping, shortage of inputs, pressure on working capital, and uncertainty in export.